0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुप्रभात श्रोताओं, घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।

सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के रेडियो चैनल RM1 का आज एक साल पूरा हो गया। कूल FM को रिब्रांड करके इसे RM1 का नाम और रूप दिया गया था। पूरे उत्साह के साथ आज इस रेडियो चैनल की टीम इस पहले साल की खुशियां मना रही हैं। अपने प्रसारण की शुरुआत के एक साल बाद राष्ट्रीय रेडियो चैनल इस खास अवसर को पूरे दिन खास कार्यक्रमों के साथ मना रहा है। वित्तीय साल 2026-2027 का बजट पेश किए जाने में अब केवल 3 दिन बचे हैं। ऐसे में भूमि एवं आवास मंत्रालय ने समाप्त हो रहे वित्तीय साल का ब्यौरा पेश किया। शकील मोहम्मद ने इस दौरान किए गए कई महत्वपूर्ण सुधारों पर प्रकाश डाला। इनमें योग्यता के लिए आय सीमा को बढ़ाना, परिवारों को दी जाने वाली सहायता को और मजबूत बनाना आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय बजट 2026-2027 की प्रस्तुति नज़दीक है। मंत्री अरविंद बुलेल ने प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं पर आधारित एक प्रेस सम्मेलन लगाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने होंगे। उनके अनुसार राष्ट्रीय कोष, राजकोष और मौद्रिक नीतियाँ वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित होनी चाहिए। वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफिकेशंस जारी हैं। आज सुबह सऊदी अरब की टीम का सामना उरुग्वे के साथ हुआ। ये मैच ड्रॉ रहा 1-1। अभी के लिए न्यूजीलैंड की टीम ईरान से टकरा रही है और रात 11 बजे फ्रांस खेलेगा सेनेगल के खिलाफ। और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि इस समझौते पर पूरी जानकारी जल्द ही आम की जाएगी। इस बीच शुक्रवार को जिनेवा में समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसी दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल आज सुबह स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। आज सुबह पूर्वी और दक्षिणी इलाकों तथा सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। दोपहर बाद धूप खिली रहेगी। रात को पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरा सकते हैं और बारिश की भी संभावना है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी और आज दोपहर बाद से 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज दोपहर बाद से पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों तथा दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 18 से 20 और अधिक

0: अधिकतम 23 से 25 जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 24 अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:43 पर और सूर्यास्त 5:38 पर होगा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, and NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Radio Mauritius.
3: 819 kilohertz par ye hai Radio Mauritius.
2: Radio Mauritius.
3: Radio Mauritius.
4: सुप्रभात श्रोताओं, ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम 819 किलोहर्ट्ज़ पर हमारा ये प्रसारण जारी हो रहा है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:04:25। आज की तारीख 16 जून 2026 का वर्ष, मंगलवार का दिन, और माइक पर आप सभी का साथ दे रही है रत्ना। हमारा सुप्रीम नमस्कार स्वीकार करें। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज का दिन सभी के लिए सकारात्मक रहे, ऊर्जाजनक रहे, स्वास्थ्यवर्धक रहे। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं आज के सुविचार के साथ। वैसे आपको याद दिला दें, अभी थोड़ी ही देर में मानस मोती कार्यक्रम के साथ हम जुड़ेंगे और ये कार्यक्रम रामायण सेंटर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात ठीक 6:20 पर आप सुन पाएंगे एक विशेष कार्यक्रम सत्यार्थ प्रकाश मास पर आधारित। और आज का ये कार्यक्रम मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य डॉक्टर आचार्य सुनील। आइए आज के सुविचार के साथ जुड़ते हैं। सबसे संक्षिप्त उत्तर है करके दिखाना। अपना कार्य करते रहें पूरी लगन और मेहनत के साथ। श्रोताओं, आपको याद दिलाते चले, ठीक 6:30 हम जुड़ेंगे समाचारों के साथ और समाचारों के उपरांत हम सुबह का नजराना कार्यक्रम को जारी रखेंगे। तो आइए कार्यक्रम मानस मोती के साथ जुड़ते हैं। और ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है डॉक्टर वीनू अरुण द्वारा। आइए उनका स्वागत करते हैं।
5: सुनिए मानस मोती रामायण सेंटर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम।

रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मोती कार्यक्रम में मैं वीनू अरुण आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज जो चौपाइयाँ मैं रामचरितमानस से मोती रूप में चुनकर लाई हूँ, उनमें शूर्पणखा रावण को श्री राम और लक्ष्मण के विरुद्ध भड़काती है और क्रोध में कहती है कि तूने देश और खजाने की सुध भुला दी है। तू शराब पी लेता है और दिन रात सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। वह रावण को नीति की घुट्टी पिलाते हुए कहती है, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए, संगते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान में लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगी नीति अस सुनी। हे रावण सुन, नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते।

श्रोताओं, इन चौपाइयों में शूर्पणखा रावण को नीति की शिक्षा देते हुए 10 बातें बताती है। रावण को वो ये बताना चाह रही है कि तुम सचेत नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है कि श्री राम और लक्ष्मण बहुत जल्दी तुमसे युद्ध करेंगे। तुम निश्चिंत हो और तुम एक राजा के रूप में ये समझ ही नहीं रहे हो कि काल तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है, क्योंकि तुम अनीति का आचरण कर रहे हो। और नीति क्या है तो 10 बातें बताती है कि नीति के बिना राज्य नहीं चल सकता। राजा का कर्तव्य क्या है कि वह नीति का पालन करे। और नीति क्या है, यानी सत्य का आचरण करे, अपनी प्रजा को प्रेम करे, सबके साथ बराबर व्यवहार करे। तो जो भी राजा के जो कर्तव्य हैं, यदि राजा अपने राज्य में उनका पालन नहीं करता है तो उसका नाश हो जाता है। दूसरी बात वो कहती है कि धर्म के बिना धन प्राप्त करने से नाश हो जाता है। हमारे यहाँ जो 4 पुरुषार्थ बताए गए उसमें एक है अर्थ। अर्थ का मतलब धन कमाना। धन हर मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन राजा के लिए तो बिना धन के वह अपना राज्य चलाएगा कैसे। तो राजा के लिए तो धन का होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि धन को धर्म के बिना कमाया जाए, चाहे वो मनुष्य हमारे जैसा मनुष्य हो, चाहे वो कोई राजा हो, कोई कितना भी बड़ा महान व्यक्ति हो, सबके लिए धन कमाना तो आवश्यक है, लेकिन उसके लिए नियम क्या बनाया गया, धर्म के साथ धर्म का आचरण करते हुए अच्छे साधनों से धन कमाया जाए। लेकिन हे रावण, तुम धर्म के बिना धन कमाते हो, इसलिए तुम्हारा नाश अवश्य ही होगा। तीसरी बात, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से। जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम कमाते हैं, जो भी हम जीवन में करते हैं, उसे भगवान को समर्पित किया जाए। हमारा स्वभाव क्या है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसका श्रेय स्वयं लेते हैं, और हमारे जीवन में जब कुछ बुरा होता है तो हम भगवान को दोष देते हैं। लेकिन जो मनुष्य अपने हर श्रेष्ठ कार्य को भगवान को समर्पित करता है, जो भोजन भी भगवान को समर्पित करने के बाद खाता है, और जो हर काम करने से पहले भगवान को कहता है कि मेरे सारे कर्म आपको समर्पित हैं, ऐसे व्यक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। लेकिन जो ऐसा नहीं करता उसका नाश होता है। चौथी बात वो कहती है, विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। यानी विद्या का सुफल क्या है, विनय। जो जितना विद्वान होता है वो उतना विनम्र होता है। लेकिन यदि हम बहुत ज्ञान प्राप्त कर लें और अहंकारी बन जाएं, अपने को सबसे श्रेष्ठ मानने लगें, तो इसका मतलब है जो विद्या हमने प्राप्त की थी वो व्यर्थ हो गई। और पांचवी बात वो बताती है कि विषयों के संग से सन्यासी का नाश हो जाता है। सन्यासी का जीवन कैसा होना चाहिए, विषय वासनाओं से उसका जीवन बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। सन्यास का मतलब ही है कि अब जो सांसारिक बुराइयां हैं, जो सांसारिक विकार हैं, जो सांसारिक आसक्ति है, उससे दूर हो जाना। लेकिन कोई व्यक्ति सन्यासी बन करके भी यदि विषयों में अनुरक्त है तो ऐसे सन्यासी का नाश हो जाता है। बुरी सलाह से राजा, राजा को क्या करना चाहिए, जो उसके मंत्री हैं, मंत्री का अर्थ ही है जो मंत्रणा करने वाला है, जो सलाह देने वाला है। तो राजा के जो मंत्री हैं वे उचित सलाह देने वाले होने चाहिए। राजा को ऐसे मंत्रियों का साथ नहीं करना चाहिए जो

राजा की या तो चाटुकारिता करें या राजा को अच्छी सलाह नहीं दें। तो इस प्रकार जो राजा अपने मंत्रियों की बुरी सलाह लेकर के काम करता है उसका नाश हो जाता है। मान से ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाए तो वह ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी व्यक्ति

0: बिना मर्यादा के हम यदि जीवन जिएंगे तो हमें पग पग पर लज्जित होना पड़ेगा। हो सकता है हमें मालूम है कि जीवन में मर्यादा क्या है, हमें कैसा आचरण करना चाहिए, लेकिन वही व्यक्ति यदि मदिरा पान कर लेता है तो उसका अपने ऊपर से नियंत्रण हट जाता है। मदिरा क्या कराती है? हमें उन्मत्त बना देती है। मदिरा पान करने से मनुष्य का विवेक भ्रष्ट हो जाता है, वो भूल जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए मदिरा पान करने से मनुष्य लज्जा को भूल जाता है, लज्जा यानी मर्यादा को लांघ जाता है, उसे पता ही नहीं होता है कि उचित क्या है अनुचित क्या है, क्योंकि उसका अपने विवेक पर अब कोई नियंत्रण नहीं रहता। आगे वे कहते हैं, नम्रता के बिना प्रीति, प्रेम में भी नम्रता होनी चाहिए। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम जिससे प्रेम करें प्रीति करें उसके लिए हम कठोर शब्दों का प्रयोग करें, बल्कि जो प्रेम का संबंध है उसमें मधुरता का होना, विनम्रता का होना बहुत आवश्यक है। और अहंकार से गुणवान व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, अर्थात कोई कितना भी गुणी क्यों ना हो, गुणों का भंडार हो उसके अंदर, हर श्रेष्ठ गुण यदि किसी व्यक्ति के अंदर है वो गुणी है, लेकिन यदि अहंकार उसके अंदर आ गया है तो ऐसे व्यक्ति का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। इस प्रकार है तो वो शूर्पणखा जिसने स्वयं बुरा आचरण किया है, जिसका नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा है, वही शूर्पणखा रावण को जाकर के इतनी सुंदर नीति की शिक्षा देती है। और ये जो नीति वचन है, कहे तो है शूर्पणखा ने रावण को, लेकिन ये नीति वचन हम सबके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 10 बहुत श्रेष्ठ बातें बताई गई हैं कि नीति के बिना राज्य, धर्म के बिना धन प्राप्त करना, भगवान को बिना समर्पित किए कोई भी श्रेष्ठ काम करना, और विद्या पढ़ लो लेकिन विवेक प्राप्त नहीं हो तो इससे हमारा श्रम व्यर्थ हो जाता है, यानी हमने जो भी कार्य किया है उसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। और विषयों का संग करने से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणी व्यक्ति भी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। और श्रोताओं, आज रामचरितमानस से ली गई इन चौपाइयों में जिनमें नीति वचन कूट कूट करके भरे हैं, मैं आपसे विदा चाहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस मोती।

0: फिल्म 2 आंखें 12 हाथ से लिया हुआ ये गीत 1957 के दौर की मूवी रही लता जी की प्यारी सी आवाज। और चलिए इसी के साथ 6:21 हो चुके हैं कार्यक्रम सत्यार्थ प्रकाश मास पर आधारित इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। डॉक्टर आचार्य सुनील जी का ये स्वागत करते हैं।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
2: ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर नमन। सत्यार्थ प्रकाश प्रचार मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रवि वेद प्रचारिणी सभा की ओर से प्रस्तुत हैं विशेष कार्यक्रम। महर्षि दयानंद ने चौथे समुल्लास में धर्म संचय और दुराचार से दूर रहने का उपदेश दिया है। वे कहते हैं, धर्म शनै संचिनुयाद बल्मीकमीव पुत्तिकाः परलोक सहायार्थं सर्वभूतानि अपीडयन्। स्त्री पुरुष को चाहिए कि वे किसी भी जीव को पीड़ा दिए बिना धीरे धीरे धर्म का संचय करें। धर्म का संचय कैसे करें? तो उत्तर मिलता है कि दीमक के समान, जैसे दीमक मिट्टी के कणों से धीरे धीरे अपना घर बना लेती हैं, इसी प्रकार अगले जन्म के लिए धर्म इकट्ठा करना चाहिए। चौथे समुल्लास में ही महर्षि दयानंद ने धर्म को जीव का सच्चा साथी बताते हुए पाप कर्म से दूर रहने का उपदेश दिया, दुराचार से दूर रहने का उपदेश दिया। महर्षि जी ने महाभारत के उद्योग पर्व से एक श्लोक प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया कि पाप कर्म का मुख्य कर्ता ही दोष व पाप का भागी बनता है। एकाह पापानि कुरुते फलम भुंगते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेन लिप्यते।

एक व्यक्ति पाप करता है परंतु उसका फल पूरा परिवार या समूह भोगता है। भोगने वाले तो बाद में मुक्त हो जाते हैं, परंतु पाप करने वाला मुख्य कर्ता ही दोष का प्रमुख भागी बनता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति पाप करता है वही पाप का मुख्य भोगता होता है, परंतु जो पाप करने वाले के साथ होता है तो उस पाप का कठोर प्रभाव साथ रहने वाले को भी प्रभावित करता है, उन्हें भयभीत और दुखी करता है। चौथे समुलास में ही आगे महर्षि दयानंद बताते हैं कि जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भी अकेला ही भोगता है। मृत्यु के पश्चात जीव के साथ क्या जाता है? मृत शरीर को मिट्टी के ढेले के समान माना गया है। मृत्यु उपरांत जीव का परम सहायक कौन है? इस पर महर्षि जी वर्णन करते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके सगे संबंधी उसके शरीर को मिट्टी के ढेले की तरह मृत शैया अर्थात चिता पर छोड़कर अंतिम संस्कार के बाद लौट जाते हैं। कोई भी उसके साथ नहीं जाता, केवल उसका संचित कर्म व किया हुआ धर्म ही उसका एकमात्र साथी होता है। इसलिए कहा गया है कि जो जैसा बोता है वह वैसा ही फसल काटता है। परलोक में केवल धर्म ही मित्र और रक्षक के समान होता है। संसार में एक धर्म ही मित्र है जो मृत्यु के पश्चात भी साथ जाता है। महर्षि दयानंद ने स्पष्ट कहा है कि कभी अधर्म का आचरण न करें। किया हुआ अधर्म कभी निष्फल नहीं होता। अधर्म का परिणाम एक दिन भोगना ही पड़ता है। जैसे गाय की सेवा का फल दूध आदि सात्विक आहार तत्काल प्राप्त नहीं होता, वैसे ही किए हुए पाप व अधर्म का फल भी तुरंत प्राप्त नहीं होता, किंतु धीरे धीरे अधर्मी के सुखों को रोकता हुआ सुख की जड़ों को काट देता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महर्षि दयानंद ने मनुस्मृति का प्रमाण प्रस्तुत किया है। अधर्मेण एधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान् जयति समूलस्तु विनश्यति। छल कपट और बेईमानी करने वाला अधर्मी मनुष्य शुरुआत में उन्नति करता हुआ दिखाई देता है। वह सुख सुविधा और ऐश्वर्य भी प्राप्त कर लेता है और अपने शत्रुओं पर विजय भी पा लेता है। अंत में वह जड़ से कटे हुए वृक्ष समान समूल नष्ट हो जाता है। धर्म के कार्यों में प्रवृत्त होने से घर समाज और राष्ट्र में शांति बनी रहती है और अधर्म के कार्यों में प्रवृत्त होने से घर समाज और राष्ट्र की शांति नष्ट हो जाती है। अतः चौथे समुलास में स्पष्ट किया गया है कि अधर्मी मनुष्य जड़ समेत पूरी तरह उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे जड़ कट जाने पर एक हरा भरा पेड़ नष्ट हो जाता है। सत्यार प्रकाश के चौथे समुलास में समझाया गया है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और हिंसक क्रूर या दुराचारी लोगों की संगति से दूर रहता है वह सच्चा धार्मिक है। संसार के सभी व्यवहार वाणी पर ही निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति छल कपट और मिथ्या भाषण द्वारा अपनी वाणी को दूषित करता है वह सब पापों का भागी बनता है। चौथे समुलास में ही बुरे आचरण के दुष्परिणामों को रेखांकित किया गया है। पहला दुष्परिणाम है सामाजिक निंदा। दुराचारी व्यक्ति समाज और सज्जनों के बीच हमेशा निंदा व अपमान का पात्र बनता है। दूसरा दुष्परिणाम है दुख और रोग। दुराचारी व्यक्ति जीवन में निरंतर दुखों का भागी बनता है और सदैव कमजोरियों और बीमारियों से घिरा रहता है। तीसरा दुष्परिणाम है अल्पायु।
कुसंस्कारों और गलत आदतों के कारण दुराचारी मनुष्य की

0: आयु क्षीण हो जाती है, वह अल्पायु अर्थात कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्यों को दुराचार से बचने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। सत्यार प्रकाश के चौथे समुल्लास में महर्षि दयानंद का स्पष्ट कथन है कि सदा धर्मयुक्त कार्यों में लगें, सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन करें, अधर्मयुक्त कर्मों का हमेशा त्याग करें। धर्मयुक्त कार्यों में पुण्य की वृद्धि होती है और अधर्मयुक्त कार्यों में पाप की वृद्धि होती है। आज की वार्ता यहाँ विराम लेती है। अब आचार्य सुनील को अनुमति दीजिए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
2: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: घड़ी मिला लीजिए, सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। सभी को नमस्कार। सुबह के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। MBC के रेडियो चैनल RMA को आज 1 साल पूरा। इस विशेष अवसर पर आज दिन भर कई कार्यक्रम निर्धारित। वित्तीय साल 2026-2027 का बजट पेश किए जाने में अब मात्र 3 दिन बाकी। ऐसे में भूमि एवं आवास मंत्रालय ने समाप्त हो रहे वित्तीय साल का ब्यौरा पेश किया। कल एक प्रेस सम्मेलन लगा राष्ट्रीय बजट के लिए। मंत्री अरविंद बुलेल ने प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं पर अधिक जानकारी दी। विदेश की खबरों में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर। शुक्रवार को जेनेवा में समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। उसी दिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोला जाएगा। इस बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। पेश समाचार विस्तार से। मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के रेडियो चैनल RMA को आज 1 साल पूरा हो चुका है। कूल FM की ओर रिब्रांड करके इसे RMA का नाम और रूप दिया गया। पूरे उत्साह के साथ आज इस रेडियो चैनल की टीम इस पहले साल की खुशियां मना रहा है। अपने प्रसारण की शुरुआत के 1 साल बाद राष्ट्रीय रेडियो चैनल इस खास अवसर को पूरे दिन खास कार्यक्रमों के साथ मनाने जा रहा है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में। RMA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर विशेष कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। कार्यक्रम सुबह 10 बजे तक चलेगा। इसके लिए एक अतिरिक्त घंटे का समय भी रखा गया है, जिसमें खास मेहमान, कलाकार और लाइव प्रस्तुतियां होंगी। बात यही खत्म नहीं होती। आज पूरे दिन सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक RMA के स्टूडियो उन आवाज़ों के लिए खुले रहेंगे जिन्होंने मॉरिशस के रेडियो जगत को अपनी पहचान दी है। साथ ही कई कलाकार हमारे स्टूडियो से सीधे लाइव प्रस्तुति देंगे और संस्कृति, अर्थव्यवस्था, नागरिक समाज से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियां भी इस विशेष आयोजन का हिस्सा बनेंगे। साक्षात्कार, खास कार्यक्रम, पर्दे के पीछे की रिपोर्ट्स के माध्यम से श्रोताओं और दर्शकों को उस रेडियो, उसकी टीम और उस द्वीप की कहानी सुनाई जाएगी जिसकी झलक वह अपने प्रसारण में पेश करता है। संगीत प्रेमियों के लिए भी खास इंतजाम किया गया है। कई मॉरिशन कलाकार, कुछ बेहद लोकप्रिय और कुछ ऐसे जिनसे आप शायद पहली बार रूबरू होंगे, हमारे स्टूडियो से लाइव प्रस्तुति देंगे। कुल मिलाकर ये एक ऐसा खास दिन है जिसे मिस नहीं किया जाना चाहिए। RMA अपने पहले साल का जश्न मना रहा है और आपके लिए अभी और भी कई सरप्राइज लेकर आएगा। वित्तीय साल 2026-2027 का बजट पेश किए जाने में अब केवल 3 दिन बाकी हैं। ऐसे में भूमि एवं आवास मंत्रालय ने समाप्त हो रहे वित्तीय साल का ब्यौरा पेश किया। मंत्री शकील मोहम्मद ने इस दौरान किए गए कई महत्वपूर्ण सुधारों पर प्रकाश डाला। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
4: वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट के बाद NHDC और

0: एनएसएलडी के सामाजिक आवासों के लिए योग्यता की मासिक आय सीमा 40,000 रुपये से बढ़ाकर 48,000 रुपये कर दी गई है। इसी तरह निर्माण सामग्री पर मिलने वाली सब्सिडी सहित अन्य सहायता योजनाओं में भी इसी प्रकार का संशोधन किया गया है। अब तक प्राप्त 1,464 आवेदनों में से लगभग 79% को निपटाया जा चुका है, यानी 1,157 परिवारों को लाभ मिल चुका है, जिस पर 11 करोड़ 32 लाख रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। नवंबर 2025 में रेंट टू ओन नामक एक नई परियोजना भी शुरू की गई। इसके तहत वे परिवार जिन्हें बैंक ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता, 5 वर्षों तक 4,000 रुपये मासिक किराए पर घर में रह सकते हैं और बाद में उसे खरीदने का विकल्प भी उनके पास होगा। भूमि से जुड़े मामलों में भी कई कर रियायतें लागू की गई हैं। खासकर 5 मिलियन रुपए तक मूल्य वाले एनएसएलडी आवासों पर पंजीकरण शुल्क और संपत्ति हस्तांतरण कर यानी ट्रांसफर टैक्स में छूट प्रदान की गई है। आवास निर्माण परियोजनाओं पर काम लगातार जारी है। सऊदी फंड की सहायता से फाइनेंस की गई 4 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 262 नए आवासों का निर्माण कार्य जारी है। वहीं एनएसएलडी 10 विभिन्न स्थलों पर अब तक 2,466 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा कर चुकी है। अब तक 250 से अधिक परिवार अपने नए घरों में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले महीनों में ये संख्या और बढ़ सकती है। अंत में विश्व बैंक के सहयोग से एक नई कार्य योजना तैयार की जाएगी। सामाजिक और किफायती आवास परियोजनाओं के लिए लगभग 20 नए स्थलों की पहचान पहले ही की जा चुकी है। साथ ही इन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की भी इच्छा व्यक्त की गई है। और मंत्री अरविंद बुलेल ने प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं पर आधारित एक प्रेस सम्मेलन लगाया। मंत्री अरविंद बुलेल ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने होंगे। उनके अनुसार राजकोष और मुद्रा नीति वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं तय की जाएंगी। जरा विस्तार आस्था गोविंद दे रही है।
1: कृषि उद्योग मंत्री ने सबसे पहले यूके द्वारा दुनिया भर से आयात होने वाली चूना मछली पर सीमा शुल्क हटाने के फैसले पर बात की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का मॉरिशस पर भी असर पड़ना तय है। डॉक्टर अरविंद बुलेन ने बताया, चूना हमारे लिए सफेद सोना के समान है। हम हर वर्ष लगभग 14 बिलियन रुपए के चूना उत्पादों का निर्यात करते हैं। हमने ब्रिटिश उच्चायुक्त को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि ये एक अनुचित निर्णय है। यूनाइटेड किंगडम किसी ऐसे देश के खिलाफ ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिसके प्रति वो पहले ही औपचारिक प्रतिबद्धताएं कर चुका है। इसके बाद डॉक्टर अरविंद बुलेल ने अपने मंत्रालय से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति और योजनाओं का उल्लेख किया। चीनी उद्योग के लिए उनका लक्ष्य है कि अगले 3 वर्षों में चीनी और स्पेशल शुगर का उत्पादन बढ़ाकर 2.5 लाख टन पहुंचाया जाए, साथ ही अनुसंधान पर अधिक ध्यान दिया जाए। वहीं अगले 2 वर्षों में कृषि उत्पादन में 20% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है और किसानों को उचित दाम पर बीज उपलब्ध कराने की बात कही गई है। लैंड बैंक की स्थापना के साथ साथ रिन्यूएबल ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। कामगारों की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। हम इस समय भारत सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। विदेशी श्रमिकों की भर्ती का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है और ये श्रमिक भारत, नेपाल तथा मारागास्कर से आएंगे। इस प्रक्रिया में किसी भर्ती एजेंट को शामिल नहीं किया जाएगा। निकट भविष्य में लगभग 300 भारतीय श्रमिक मॉरिशस के कार्य बल में शामिल होंगे। मंत्री अरविंद बुलेल ने मछुआरों से भी एकजुट होकर देश के ईईजेड का अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। बजट को लेकर उन्होंने कहा कि कृषि, पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए उचित मांगे रखी गई हैं।
0: मॉरिशस में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है।

नेशनल लैंड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा 8 जून को जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मई 2026 के दौरान 1,101 नए वाहनों का पंजीकरण किया गया। मोटरसाइकिल की संख्या भी बढ़ रही है। इसी अवधि में 3,206 मोटरसाइकिल्स का पंजीकरण भी किया गया। कुल मिलाकर सभी जनवरी से मई 2026 तक 12,962 नए और पुराने वाहनों का पंजीकरण किया गया है, जो देश के ऑटोमोबाइल बाजार की मजबूती को दर्शाता है। वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफिकेशंस जारी हैं। आज सुबह सऊदी अरब की टीम का सामना उरुग्वे के साथ हुआ। ये मैच ड्रॉ रहा 1-1। अभी के लिए न्यूजीलैंड की टीम ईरान से टकरा रही है और अभी के लिए स्कोर हैं 2-2। रात 11 बजे फ्रांस खेलेगा सेनेगल के खिलाफ। और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक प्रारंभिक समझौता तय किया गया है और उस पर पहले से ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि समझौते पर पूरी जानकारी जल्द ही आम की जाएगी। इस बीच अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी समझौते के कुछ प्रमुख पहलुओं की जानकारी दी है। शुक्रवार को जिनीवा में समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसी दिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोला जाएगा। जानते हैं मौसम का हाल। दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को आज सुबह प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह पूर्वी दक्षिणी इलाकों सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिरे रहेंगे, बारिश होगी। रात तक को भी पूर्वी इलाकों पर बादल घिराएंगे और ऊंचाइयों पर भी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 18 से 20, अधिकतम 23 से 25। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी और दोपहर बाद 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों में न जाने की सलाह। आज सुबह सूर्योदय 6:43 पर, शाम को सूर्यास्त 5:38 पर होगा।

देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन यहीं पर समाप्त हो चला है। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर कादर का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। बाची गांव गोब में 9 साल के 9 इयर्स ओल्ड के कुमार अविनेश कृष्णा चंदू जो अविनेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनके पिता आतिश चंदू के मकान बाची घोंगोब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंगोब की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। लामाहिवाक्वा में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री राजन गोहिया जो 10 गोहिया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2:15 बजे उनकी पत्नी कमला गोहिया के मकान लामाहिवाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:15 PM। महात्मा गांधी रोड फोंजूसाक में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रुकमीन पौगास पैदाशी नाम राजवंती और जो कुमारी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2 बजे उनके पति धनेश्वर पौगास के मकान महात्मा गांधी रोड फोंजूसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फोंजूसाक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। कॉन्स्टेंटिन कास्टेल में 75 साल

75 years old के जनाब महमूद रेशाद बचू, जनाब महमूद रेशाद बचू जो ऑरी मौशों बाजा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा सुबह 10 बजे उनके मकान कोस्टों तैलिन कास्टेल से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए कास्टेल की मस्जिद और दफनाने के लिए पाइका कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। शिवालालीन कौंजाबल में, शिवालालीन कौंजाबल में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री कौपानेन मोगन, श्री कौपानेन मोगन जो चीनो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 12 बजे उनकी पत्नी दैवेगी कौपानेन के मकान शिवालालीन कौंजाबल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट नून। पृथ्वीराज गुडलैंड्स में 21 साल के 21 ईयर्स ओल्ड के श्री विघ्नेश सुकन जो विगू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी दोपहर 2 बजे उनके पिता धर्मराज सुकन के मकान पृथ्वीराज गुडलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बाहोश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। किनू लेन कौन दे जोंबोवाद पेटी ट्रिविया में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री नंदन किनू जो साधु के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और टोबैको बोर्ड के पूर्व कर्मचारी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2 बजे उनके बेटे कुनाल किनू के मकान किनू लेन कौन दे जोंबोवाद पेटी ट्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंट जॉर्ज पेची त्रिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन 8 PM। सैंकिया मेल बेलवेदिया बोबासे में 84 साल के 84 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती केशवरी भैरू जो शांता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और फ्लैक अस्पताल में पूर्व लिनन अफसर थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी दिन के 1 बजे उनकी बेटी रागिनी लक्ष्मण के मकान सैंकिया मिल बेलवेडिया बोबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबैल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन 8 PM। मुसलमान ब्लूप्रिंट यूनियन पार्क में 19 साल की 19 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती नैनिका कायरा अकालू कुमारी नैनिका कायरा अकालू जो निका के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2 बजे उनके पिता विकी अकालू के मकान मोसलमा ब्लूप्रिंट यूनियन पार्क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन 8 PM। डोडो स्ट्रीट बोवालो मेबर्ग में 84 साल के 84 ईयर्स ओल्ड के श्री मुतु कपेन जो गासेन सियाडॉ के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सपहर 3 बजे उनके बेटे राजेन मुतुकोपेन के मकान डोडो स्ट्रीट बोवालो मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टुडे 8 PM। सी ट्वेंटी फोर एन एच डी सी ऑरिएटावाकुआ में 48 साल की 48 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चांदनी माता दिन पैदाशी नाम तो को और जो पिंकी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुबह 10 बजे उनकी बेटी अश्विनी सुराजी के मकान C24 NHDC ऑरिएटावाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेगिनो नंबर 5 वाकुआ से की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 10 AM। रॉय रोड वालिता में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री विक्रम सिंह मंगरा जो जेनजों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11 बजे उनके मकान रॉय रोड वालिता से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोस्टांस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 11 AM। रामगुलाम रोड प्लेंडे पापाई में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्रीमती

सत्यावती ब्रिजमोहन श्रीमती सत्यावती ब्रिजमोहन पैदाशी नाम सुजीवन और जो बहन जी ब्रिजमोहन के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1 बजे उनके पति धनेश्वर ब्रिजमोहन के मकान राम गुलाम रोड प्लेंडे पापा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन एट 1 PM। सिवसा गौले नेपास अशोका घोंबुआ में पैंसठ साल के 65 years old के श्री अनंत अचहास जो अशोक के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और SBM रुसपेल के पूर्व कर्मचारी थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1 बजे उनके मकान सिवसागौली नेपास अशोका घोंबुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड नोवेल फ्रांस में रॉयल गेट स्टोर के पास 77 साल की 77 years old की श्रीमती देविका सामल पैदाशी नाम बिहारी और जो इंदिरा के नाम से ज़्यादा जाने जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुबह 9:30 उनके बेटे कमल सामल के मकान रॉयल रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9:30 AM। बोनेस्पोरो रिविया डी क्रियोल में 82 साल के 82 years old के श्री राजेंद्र लखन की मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 12 बजे उनके बेटे मन लखन के मकान बोनेस्पोरो रिविया डी क्रियोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबोलेन में की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट नून। कालीचरण लेन काहोलालियान वाकवा में 42 साल की 42 years old की कुमारी रितिशाह राम साहा जो अनुषा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11 बजे उनके मकान कालीचरण लेन काहोलालियान वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। रॉ रोड पालमाओ में 54 साल के 54 years old के श्री संजय बुद्धि जो मनोज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 12 बजे उनकी पत्नी आशा देवी बुद्धि के मकान रॉ रोड पालमाओ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट नून। फॉरेस्ट लेन लामारी वाकवा में 56 साल के 56 years old के श्री स्वराज अपादू जो संजीव मैकेनिशियन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 3 बजे उनके मकान फॉरेस्ट लेन लामारी वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामामेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। नंबर 82 गुदबा सिंह काथोबोन में 73 साल के 73 years old के श्री शाहानंद की रोदा जो साहा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुबह 10 बजे उनके मकान नंबर 82 गुदबा सिंह काथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामामेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। एनएचडीसी कॉम्प्लेक्स मोडालबेया में 73 साल के 73 years old के श्री महावीर मानिक की मृत्यु हो गई है। अर्थी सुबह 10 बजे उनके बेटे विशाल मानिक के मकान एनएचडीसी कॉम्प्लेक्स मोडालबेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पृथ्वी बेलिया में बग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। सेंट अंतोन कॉन्फुक्रो में 75 साल के 75 years old के श्री नंद कुमार केदन जो कृष्णा सादौ के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 3 बजे उनके मकान सेंट अंतोन कॉन्फुक्रो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। रेजिडेंस ओतेंसिया 606 मॉडल बेमे 50 साल के 50 years old की श्रीमती मीतू देवी अजुदा
श्रीमती मीतू देवी अजोदा, जो प्रिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी सुबह 10 बजे उनके पति रामलोल सूरज के मकान, रेजिडेंस ओ तौसिया।

0: 06 मौला अल्बिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: मंगलवार 16 जून को सत्यार्थ प्रकाश प्रचार मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में बोआडवाजो महिला समाज शाखा नंबर 5 एक यज्ञ और सत्संग का आयोजन कर रहा है। सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस मंगलवार 16 जून को लावोचिया आर्य समाज में 4 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे।

0: Sports News. सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। वर्ल्ड कप 2026 में कल की रात ड्रॉ मैचों की रात रही और अभी इसी समय जो मैच खेला जा रहा है वो भी ड्रॉ पे चल रहा है। स्पेन, बेल्जियम और यूरुग्वे तीनों फंसे। केप वर्दे, इजिप्ट और सऊदी अरब के खिलाफ दो स्कोर 1-1 रहे और स्पेन अपने स्टार खिलाड़ियों के साथ भी एक गोल स्कोर नहीं कर पाया। 2026 वर्ल्ड कप में एक नया सरप्राइज। पहली बार वर्ल्ड कप में खेल रही केप वर्दे की टीम ने फेवरेट स्पेन को रोका। बहुत पेन स्पेन के लिए। काबिले तारीफ लाजवाब डिफेंस केप वर्दे की ओर से। मैच ड्रो गया 0-0। अभी तक इस वर्ल्ड कप में ये सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट है। थर्ड स्मॉलेस्ट नेशन केप वर्दे ने यूरोपियन चैंपियन स्पेन को रोका। स्कोर 0-0। मैच के बाद केप वर्दे के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे जैसे वर्ल्ड कप जीत गए और स्पेन निराश हताश जैसे वर्ल्ड कप हार गए। बेल्जियम को एक ऑन गोल ने बचाया, नहीं तो इजिप्ट जीत जाती। इजिप्ट के लिए फर्स्ट हाफ में इनान आशूर ने स्कोर किया मोहम्मद साला के पास पर। ब्रेक के बाद मोहम्मद हेनरी का ऑन गोल इजिप्ट को वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच जीतने से रोका। बेल्जियम 1, इजिप्ट 1। यूरुग्वे बाल बाल बचा सऊदी अरेबिया के खिलाफ। पिछले वर्ल्ड कप की तरह इस बार भी सऊदी अरब अपना पहला मैच जीतने के करीब था। फर्स्ट हाफ में सऊदी अरेबिया के लिए अब्दुल्ला अल अमरी का गोल। मैच समाप्त होने से केवल 10 मिनट पहले मैक्सी अरोयो ने यूरुग्वे को बचाया। सो इस ग्रुप एच में सबके पास 1-1 अंक हैं। यूरुग्वे का अगला मैच केप वर्दे के खिलाफ, सऊदी अरेबिया खेलेगा स्पेन के खिलाफ। ग्रुप जी में ईरान वर्सेस न्यूजीलैंड। फर्स्ट हाफ में जस्ट ने न्यूजीलैंड के लिए खाता खोला। फर्स्ट हाफ में ही रिजाइन ने इक्वलाइज किया। सेकंड हाफ में एलिया जुस्ट ने अपना दूसरा गोल स्कोर किया। जुस्ट कहे या जस्ट, न्यूजीलैंड का है, जस्ट होना चाहिए। न्यूजीलैंड के दोनों गोल क्रिस वुड के असिस्ट पर बने। फिर अभी कुछ समय पहले मोहेबी ने ईरान के लिए इक्वलाइज किया। मैच अभी जारी है। फाइनल स्कोर आपको RM2 पर देंगे 7:40 पर। आज के फिक्स्चर्स, ग्रुप आई में 11 बजे फ्रांस वर्सेस सेनेगल और कल सुबह 2 बजे इराक वर्सेस नॉर्वे। खतरनाक ग्रुप है ये। प्रीमियर लीग की बात करें, क्रिस्टल पैलेस का नया मैनेजर बना पियर साज। ओलिविये ग्लासनर का स्थान लेगा फ्रांसीसी कोच साज जो लॉन्स का मैनेजर था। वहां वो लीग मैनेजर ऑफ द ईयर भी बना। वुल्व्स में भी नया मैनेजर आया है, पोर्टुगल का सेजार पिक्सोटो हेड कोच बना। वुल्व्स इस सीजन चैंपियनशिप में है। ऑफिशियल हो गया, मार्क कुकुरेला रियल मैड्रिड का हो गया। स्पेन के मैच से पहले उसे साइन किया गया। 51.8 million pounds स्टर्लिंग का सौदा हुआ चेल्सी के साथ। योजे मोरिनो की पहली साइनिंग खबर है। एंजो फर्नांडेज भी आ सकता है। क्रिकेट, इंडिया ए टीम कल श्रीलंका ए टीम के खिलाफ सुपर ओवर में हार गई। मैच टाई हुआ। सुपर ओवर में श्रीलंका की टीम 16 रन बना पाई। जवाब में सूर्यंश शेगरे पहले 3 गेंदों में केवल 3 रन बना पाया। वैभव सूर्यवंशी पहले 2 गेंदों में 6 रन बना पाया पर आखिरी गेंद में 9 रन। मैच पूरा होने पर सूर्यवंशी और श्रीलंका के खिलाड़ी हलामबाजे के बीच हाथापाई भी हो सकती थी पर नहीं हुई। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आगे दीजिए नमस्कार। आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:04 हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई कुछ विज्ञप्तियों पर हम नजर डालते हैं।

0: चले, और ये विज्ञप्ति है जुकमा यूनियन सेंचुबे साथ ही साथ स्टाफ क्वार्टर्स यूनियन सेंचुबे के निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 18 जून को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही साथ आलबियों के कुछ इलाके जिनमें है मौसलमा गाफ़े, मौसलमा बियाजीगास, मौसलमा बेलव्यू एवेन्यू, ओगगान Avenue Victory, Avenue Saint-Gérard, Avenue Chebec, Avenue Brick Empire, Avenue Bounty, Avenue Albatros, Avenue Dahlia, Avenue Tulip, Avenue Frangipane, Avenue Rose और Avenue Ollier के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज मंगलवार 16 जून को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्तियां जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
1: 24 hours a day. My, this is Radio Marxist.
2: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर

0: सुबह के 7:06 हो चुके हैं। सुबह का नजराना कार्यक्रम लेकर पुनः हम उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी का साथ दे रही है रत्ना। हमारा सुप्रीम नमस्कार स्वीकार करें। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम रहेंगे आपका साथ देने के लिए, आपके मनोरंजन में बिल्कुल हम रहेंगे उपस्थित। तो चलिए आज के इस दिन की एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं। बेशक आज के इस कार्यक्रम को हम कुछ ऐसे अनसुने मज़ेदार गीतों के साथ सजाएंगे और आशा करते हैं कि आप भी दिलचस्पी से हमारे इस कार्यक्रम में हमारा साथ देंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए चिंतन के साथ जुड़ते हैं, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर शांति मोहाबिया। आइए उनका स्वागत करते हैं।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: कोयला अगर जल रहा हो तो हाथ जला देता है, और अगर ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। ठीक इसी प्रकार दुष्ट की संगति होती है, वह हर स्थिति में हमें हानि ही पहुंचाती है। इसीलिए बुरे लोगों की संगति त्यजिए और अच्छों की संगति में रहिए।

0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
0: झलकियां,
1: झलकियां,
2: रेडियो मॉरिशस।
1: सात बजकर दस मिनट और भाई हर सुबह एक वादा जरूर कीजिए, अपना दिल हंसते हुए गुजारा कीजिए। मंजिल की धुन में बस गाते चले चलो, अनोखी अदा का ये गाना हमने अभी भी सुना मुकेश साहब की आवाज़ में। 1948 के ज़माने का ये गीत था और इसमें संगीत दिया था नौशाद साहब ने और शकील बादायुनी के शब्द सजाए हुए थे। क्या लाजवाब गाना, और बिल्कुल इस गीत के हर बोल में कितनी एनर्जी, कितना जादू है। चलिए इसी के साथ आपको बताते चले, एनर्जी से भरपूर रेडियो मॉरिशस आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहता है और आपके मनोरंजन के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्यक्रम को सजाने की हमारी कोशिश जारी रहती है। तो इस वक्त आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम, बेहतरीन गीतों से हम सजाएंगे इस सफ़र को। 8 बजे हम जुड़ेंगे भोजपुरी समाचारों के साथ और 8 बजे के बाद यानी 8:15 पर आपकी मुलाकात आज एक ऐसे कलाकार के साथ करवाएंगे जो कि एक लेजेंड है और बिल्कुल अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अब कौन है उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और बिल्कुल 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम में जहां किरण जानकी हमारा साथ देंगी और एक भोजपुरी गीत के साथ हम आगे बढ़ेंगे 9 बजे के समाचारों के साथ जुड़ते हुए। उसके तुरंत बाद आज की चर्चा का कार्यक्रम जारी रखा जाएगा और हर मंगलवार को हम जहां पर एक सामाजिक पहलू पर बात करते हैं, जहाँ आज के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी बेशक सुमिता सरकार। और आपको ये भी बताते चले कि आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे बड़े बुजुर्गों के नाम होगा, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। और इस कार्यक्रम की अतिथि होंगी श्रीमती नवीनी रामन्याल। तो जरूर आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुनिएगा रेडियो मॉरिशस के लहरों पर और इसी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे MBC के तीसरे चैनल पर, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी आप इसे फॉलो कर पाएंगे। और यही कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। और उसके तुरंत बाद यानी 10 बजे के समाचारों के बाद पुनः मैं उपस्थित रहूंगी भक्तिमय यात्रा, भक्ति धारा में, जहां पर भक्तिमय भजनों के साथ हम जुड़ेंगे और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन पाएंगे आचार्य सुदेश बद्री जी को वेद सुधा कार्यक्रम में। और साथ ही साथ 11 बजे तक बिल्कुल हमारा और आपका साथ रहेगा 11 बजे के समाचारों के बाद। विविध भाषाओं का गुलदस्ता सजाया जाएगा आप लोगों के लिए, जहां पर शम्मे फरोजा ये कार्यक्रम होगा 11 बजे के समाचारों के बाद और ये कार्यक्रम होगा उर्दू भाषा में, पेशकश होगी सैयदा सुबाई की। 12 बजे तेलुगु भाषा का कार्यक्रम लेकर आएंगी वर्षा। 12:30 बजे सीताबाई दरमिया का साथ होगा मराठी गीतों के दरमियान। और इसी के साथ 1 बजे तमिल भाषा का कार्यक्रम सुन पाएंगे RSE की प्रस्तुति में। 2:15 बजे मनोरंजन होगा गीतों के गुलदस्ते, गुजराती गीतों के गुलदस्ते के साथ रंगारंग कार्यक्रम जिसे सजाएंगे अमिता। ठीक 2 बजे मैंडरीन का कार्यक्रम होगा डेविड की प्रस्तुति में। 2:30 बजे

आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद प्रस्तुत किया जाएगा और इस कार्यक्रम को सजाएंगी रोशनी। ये चलेगा शाम के 4 बजे तक। 4 बजे एक बार फिर तमिल भाषा का कार्यक्रम होगा। मंगलवार है आज और मंगलवार के दिन तमिल भाषा का कार्यक्रम चलता है 4 बजे से 5 बजे के बीच, जिसे सजाएंगी कलाईवानी। शाम 5 बजे भूले

आपका मनोरंजन किया जाएगा विविध भाषाओं के कार्यक्रम के साथ। मैंडरीन का कार्यक्रम लेकर आएंगी हॉन्ग हॉन्ग। शाम 7 बजे युवरा सेन का साथ होगा तमिल भाषा के कार्यक्रम में। 7:30 बजे कृतिका की प्रस्तुति में तेलुगु भाषा का कार्यक्रम। 7:50 पर शिरीष रामा के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा गीत गंगा मराठी गीतों का ये कार्यक्रम। 8:10 पर भक्ति में यात्रा भजले प्रभु का नाम, जिसे सजाएंगी देवीना। महफिल शब उसके तुरंत बाद यानी 8:40 पर महफिल शब उर्दू भाषा का ये कार्यक्रम पेशकश होगी निसार अख्तर की। 9:00 से 11:00 के अंतर्गत भोजपुरी तड़का कार्यक्रम, जिसे लेकर आएंगी उषा। और 11:00 से 12:00 के बीच पुराने गीतों का सफर सुनहरे पल, जिसे सजाएंगी नीतुषा। 12:00 से कल सुबह 6:00 के अंतर्गत आप सुन पाएंगे ओवरनाइट प्लेलिस्ट, जो हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट द्वारा सजाई जाएगी। तो चलिए, यही थी सूची आज के हमारे रेडियो मॉरिशस के कार्यक्रमों को। वैसे आपको याद दिला दे, हमारी और आपकी मुलाकात पुनः होगी 2:00 से 3:00 के बीच रेडियो मनोरंजन पर उड़ान की कहानी में। और आज की उड़ान की कहानी होगी एक ऐसी नवयुवती की जो कैमरा वुमेन है और बिल्कुल हमारे MBC के साथ ही जुड़ी हुई है, आयशा बालक। तो जरूर उनकी कहानी जरूर सुनिएगा उड़ान की कहानी कार्यक्रम में रेडियो मनोरंजन पर 2:00 से 3:00 के बीच, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर भी। और इसी के साथ अनसुने गीतों का ये सफर हम जारी रखते हैं। भाई, पहले के जमाने में ऐसा कहते थे कि हर आंगन में अगर कौआ आकर बोले तो हो सकता है कि दिन में किसी मेहमान के आने के आसार लगते थे, पर आज के जमाने में कौवे कहाँ दिखाई देते हैं। खैर, चलिए आपको ले चलते हैं 1950s के जमाने की ओर, फिल्म आंखें का ये गाना मीना कपूर की आवाज में।

भाई जो कम में खुश होते हैं उनकी खुशी में कमी कभी नहीं आती। लाइफ में सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है भाई, हर दिन सेम नहीं होते, कभी कुछ ज्यादा कभी कुछ कम, पर ना करे कभी कोई गम क्योंकि हम हैं आपके हमदम। तो चलिए मिलकर तुम और हम सुनते हैं ये अगला गीत, फिल्म फैशन से लिया हुआ, गीता दत्त और हेमंत कुमार साहब की प्यारी सी आवाज़, 1957 के दौर का ये गाना।

वही हमसे किसी ने कहा, दुनिया वालों से दूर तो हम जा सकते हैं पर एमबीसी से दूर बिल्कुल नहीं जा सकते, जाना भी नहीं है। किसी ने कहा है ना, हमारे नवीन भाई हमेशा कहते हैं एमबीसी यानी माय बेस्ट कंपेनियन, तो बस इस बेस्ट कंपेनियन को बेस्ट बनाते रहें, क्योंकि आपका साथ नहीं हो तो भाई हम कैसे अब बेस्ट बने। चलिए इसी के साथ प्यार भरे गीतों का ये सफर है। भाई कहते हैं कि अगर अपना नाम बनाना है तो फैसले भी खुद लेने होंगे। लाइफ में कई बार डिसीजंस बहुत जरूरी होते हैं, सही समय पर सही डिसीजन लेना। चलिए इसी के साथ लाजवाब गीतों का ये गुलदस्ता और दो आंखें बारह हाथ। 50s के जमाने के कुछ ऐसे अनसुने गाने हम लेकर आए हैं बस आपके लिए, आपका दिल खुश करने के लिए, आपको उस जमाने में पहुंचा देने के लिए जहां पर आपने बहुत हसीन समय बिताया। और बिल्कुल हमें अफसोस होता है कई बार कि वो समय वापस लौट कर नहीं आता, पर गाने, पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें उस जमाने की यादों को फिर से ताजा करते हैं। चलिए लता जी की प्यारी सी आवाज को एक बार फिर सुनते हैं।

सुबह का नजराना कार्यक्रम के बीच रखा हुआ आपका सबसे फेवरेट सेगमेंट, जी हाँ, छोटी सी बात जिसका आपको रहता है हमेशा बेसब्री से इंतज़ार। और आज के इस छोटी सी बात को हम लेकर आए हैं। दोस्तों, कभी कभी हमने सोचा भी होगा कि कई बार हम दूसरों के काम में बहुत सारी गलतियाँ निकालते हैं। ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, तुमसे तो कभी होगा नहीं। या फिर जो काम हमारा नहीं होता उसको लेकर हम हमेशा टिप्पणी करते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि वो व्यक्ति, वो इंसान जो ये काम कर रहा है, उसके लिए कितनी ज्यादा मुश्किल है? चलिए, इस पर आधारित आज की ये छोटी सी कहानी, हो सकता है कि ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दे। और ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक मेहनती किसान की, जिसके पास एक घोड़ा और एक बैल था। किसान दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, लेकिन घोड़ा अपनी कमजोरी के लिए बहुत ज़्यादा, काम चोरी के लिए, जी हाँ, काम चोरी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था। वो हमेशा आराम करता और बैल पर हमेशा मजाक करता रहता। एक दिन जब बैल थक कर घर लौटा तो घोड़ा उसे देख कर हंसा और बोला, तुम हमेशा खेतों में काम करते रहते हो और देखो मैं कैसे आराम से अस्तबल में बैठा रहता हूँ, तुम मेरे जैसे आराम से क्यों नहीं रहते? बैल ने शांतिपूर्ण ढंग से उत्तर दिया, हम सबकी जिम्मेदारियाँ अलग अलग होती हैं। मेरी जिम्मेदारी है खेत जोतना और किसान की मदद करना। काम चोरी करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि मेहनत से संतोष और खुशी प्राप्त होती है। घोड़ा बैल की बातों को हल्के में लेता रहा।

और अपनी आरामदायक जिंदगी का आनंद लेता रहा। बैल ने कई बार घोड़े को समझाने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा नहीं मानने वाला था। आखिरकार बैल ने उसे सबक सिखाने का ठान ही लिया। अगले दिन किसान ने बैल को हल खींचने के लिए तैयार किया, लेकिन बैल ने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि वो बहुत बीमार हो गया है और काम करने में असमर्थ है। किसान ने तुरंत ही घोड़े को बुलाया और कहा, आज तुम्हें बैल का काम करना होगा। घोड़ा हिचकिचाया, पर कोई और विकल्प तो था नहीं। उसने भारी मन से हल खींचने की कोशिश की। वो जल्दी ही समझ गया कि ये काम मुझसे नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल काम है। दिन भर मेहनत करने के बाद घोड़ा पूरी तरह से थक गया और पसीने से तरबतर हो गया। उसकी टांगों में दर्द हो रहा था और शरीर टूट रहा था। शाम को जब किसान ने काम खत्म किया तो घोड़ा थकान से चूर था। बैल ने घोड़े को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कैसा रहा भाई तुम्हारा दिन? अब तुम्हें समझ में आया कि काम चोरी का कोई फायदा नहीं होता और मेहनत की क्या कीमत होती है। घोड़ा सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दो भाई, अब मैं समझ गया हूं कि हर किसी का काम कितना महत्वपूर्ण होता है। मैं अब से मेहनत करूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। बैल ने उसे माफ कर दिया और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। भाई, ये कहानी की सीख तो यही हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी ही असली संतोष और खुशी का रास्ता है। वैसे अगर आज के जीवन में हम देखें तो कई बार होता है ना कि भाई हमने पढ़ लिख लिया, सूट बूट टाई पहनकर ब्यूरो में काम करते हैं, बड़ी आमदनी बड़ी पगार प्राप्त करते हैं, और हमसे जो छोटा काम करते हैं, वैसे काम कोई छोटा नहीं होता, पर हमारे से जो छोटे ओहदे के लोग होते हैं उनको हम बहुत ही अजीब नज़र से देखते हैं। और कई बार हमारे मन में वो एक ईर्ष्या, वो एक घमंड रहता है कि भाई हमने पढ़ लिख लिया, हम आगे निकल चुके हैं और तुम्हारा जो काम है वो बहुत ही तुच्छ काम है। लेकिन मैं सच बताऊं, उन लोगों के लिए मन में इज्जत रखें। उदाहरण के तौर पर जो लोग आपके आसपास है, जो लोग साफ सफाई का काम करते हैं, जो लोग आपके लिए चाय वगैरह का इंतजाम करते हैं, उनके लिए ज्यादा इज्जत दें, क्योंकि ऐसे लोग अगर ना हो तो हमारे समाज का कह सकते हैं ना कि पांव भी आगे ना हिल पाए। इसीलिए हमेशा जो लोग जैसा काम करते हैं उनकी वहाँ ज़रूरत ज़्यादा है, और इसके लिए हमें उनको इज्जत देनी है। कोई काम छोटा नहीं होता। सोच को बड़ी रखिए। सोच बड़ी होगी तो ओहदा भी बड़ा ही मिलेगा आपको। पर अगर ओहदा बड़ा मिल गया और सोच छोटी रही तो भाई राम ही भला करे आपका।

साथ ही हाथ बढ़ाना, और बिल्कुल नया दौर का ये बहुत ही मज़ेदार सा गीत आशा जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में 1957 के दौर का ये गाना था। तो चलिए इसी के साथ डेडिकेशन टाइम, आप सभी के नामों को जोड़ने का समय हो चला है। हमेशा की तरह आप लोगों के प्यार भरे मैसेजेस, प्यार भरे फ़ोन कॉल्स हमेशा आते रहे हैं, और बस आप यूं ही आपका प्यार हम पर बरसाते रहें, क्योंकि यही तो हमें हिम्मत देता है। यही तो कहते हैं ना कि हमारी गाड़ी की पेट्रोल है जो हमारी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बिल्कुल फ़ायदेमंद है, बहुत काम लगता है। और इसी के साथ हमें प्रोत्साहन मिलता है आपके मैसेजेस से, आपके फ़ोन कॉल से। और इसी के साथ काट्रबोन से हमेशा की तरह माला सुमारू जी, आपका प्यारा सा मैसेज हमेशा आ जाता है। थैंक यू सो मच इतना प्यार बरसाने के लिए सुबह सवेरे। बिल्कुल हमारे लिए ये एक बहुत ही बड़ा डोज़ है।

फ्लोरियाल से माधुरी जी, आप भी हमेशा हमारा प्यार से साथ दे रही हैं, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ हैं। और घोंगोप से श्यामा जी भी हमेशा की तरह साथ जुड़ जाती हैं, श्यामा रघुनंदन, और आपके प्यारे भैया जयप्रकाश, भाभी है नम्रता, केशव और युधीश साथ दे रहे हैं, साथ ही साथ विश्वानी जी, वीना रामफल, आपकी दोनों प्यारी सखियाँ, साथ ही साथ नंदिनी उकलू, जिनका आप हमेशा जिक्र करती हैं, बहुत बहुत प्यार उनको। नोवेल्फोंस से गायत्री जी, आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेटा अजय, मामी कल्याणी मोहन, भाभी हैं सतवंती जो रहती हैं मोताइलोंग, और साथ ही साथ माफ़ कीजिएगा भाभी आपकी शकुंतला, जी हाँ मुझसे गलती हुई नाम लेने में, शकुंतला, और बिल्कुल आपकी प्यारी सखी गीता बाई जो हमेशा साथ देती हैं नोवेल्फोंस से ही। और बिल्कुल गीता जी हमसे कहती हैं, दुनिया वालों से दूर ये गाना आपको आपके पति की याद दिलाता है, तो चलिए बस उनकी याद में हम भी हैं आपके साथ जुड़े हुए, आपके प्यारे बेटे शिवाजी, बहू है श्वेता बाई, साथ है आपकी प्यारी बेटी सुधा बाई। आज हमने बात की बिजवी बाई और दिया बाई से, जो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो रही थी, बहुत बहुत प्यार आपको, आपने इतना प्यार से हमें आतो कहा, हाय दिल से, मतलब बहुत सारी झप्पियाँ और पपियाँ आपके नाम, और प्यारा सा मल्हार, साथ ही साथ बस आप साथ देते रहिएगा। और यहाँ पर शोभा जी वाकवा से जुड़ी हुई हैं, साथ है अनुषा, शर्वीना, अवनीश, अर्णवी, आपकी प्यारी बहन प्रेमिला जयमंगल और वीना जी, साथ ही साथ आपकी प्यारी सखी राधा बाल गोविंद जो मोचिदा से हमेशा साथ देती हैं। कौंदमा से इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं प्रेमिला जी, और बिल्कुल प्रेमिला जी आज आपका जन्मदिन है, प्रेमिला सी गुलाम, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी दोनों प्यारी बहनों की ओर से, तीनों प्यारी बहनों की ओर से, रागिनी, साधना जो है रिश्मा फ्लक से, सभी बेचू परिवार की ओर से, और अनसुया राम के लावन जो है त्रियोले से, और आपके सभी बच्चों की ओर से, खासकर आपके बेटे हैं प्रकाश, बहुएँ हैं स्वधा और रेणुका, साथ हैं आपके नाती निवेश, निहाल और भविष, और कौंतमास के काली माता मंदिर की सभी मंडली की ओर से, सभी सदस्यों की ओर से आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपनों का प्यार आप सदा पाएं। यहाँ पर गीता जी भी पोंफिया से हमेशा की तरह साथ जुड़ी हुई हैं, और आदित्य का जन्मदिन कल मनाया, 11 वर्ष का हो चुका है आदित्य, साथ ही साथ उसके प्यारे भैया आरव, प्यारी छोटी सी बहन परी जानवी की ओर से, और तनिष की ओर से, दो चाचा, दो चाची, मम्मा पापा की ओर से, सभी परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार, और खासकर आपके दादा रोहित की ओर से। और इसी के साथ शिवरानी जी घोंबुआ से जुड़ी हुई हैं सभी सोनाही परिवार के साथ, यहाँ पर जन्मदिन मना रही हैं आपकी प्यारी नाती नातिन है यशनी दीपचंद, दादा है पंडित उमाकांत दीपचंद, और दादी ललिता की ओर से ममा सिद्धि, पापा रवि, और भाई है अनिकेत, सभी फूफू फूफा और सिबारा दीपचंद और सुनाही परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार जाता है यशनी को। और बिल्कुल यहाँ पर विजय बंधन जी भी हमेशा क्लाविट से हमारा साथ देते हैं, उनकी प्यारी पत्नी रेखा, साथ है उनकी बहनें चंदनी, बिंदु, कुमारी और सभी दोस्तों के साथ, बिल्कुल आप हमेशा साथ देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ उषा जी भी हमारे साथ ब्रह्मस्थान से जुड़ चुकी है, कहती है प्लीज़ मेरा नाम भी लिस्ट में डाल दीजिए, चलिए डाल दिया। और मोडालविया से अनीता लाल जी, आप भी जुड़ चुकी हैं, लाल जी गोगा इतू और नागेश्वर परिवार के साथ, साधना जी रिव्या दिखयोल से आपका भी प्यार भरा मैसेज आ पहुंचा है, बहुत बहुत धन्यवाद। लीला जी बॉशेरी से है, और आज अक्षी जन्मदिन मना रही हैं जो हैं लामारी से, पर अभी फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया में हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। ममा प्रीति, भाई हैं अक्षय और सभी बापू परिवार की ओर से, साथ ही साथ ऋषि, विकी, करण, सभी लोचन परिवार, और खासकर आजा और आजी की ओर से उनको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। और बस साक्षी, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें और जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ती जाएं, हमेशा प्रगति करें, यही आशीर्वाद आपके परिवार की ओर से। सूरज शर्मा सुजादा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं त्रियोले से, उनके बेटे के साथ हमेशा की तरह। दीपिनी से है शीला जी, और बस आज बहुत ज़्यादा मिस करती हैं अपने बेटे को, जिसको 6 वर्ष हो चुके हैं गुजरे हुए,

चलिए दिल से हम आपकी आपके साथ हैं, आपके सुख दुख के साथ ही। मोका से इस वक्त सुदेवी जी भी हमारा साथ दे रही हैं, आपकी प्यारी नातिन जिसका का जन्मदिन है 19 तारीख को जो रहती है ब्रिजवैजिया, तो आपको एडवांस में जिसका जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपके सभी परिवार की ओर से। स्वस्ती जी आप भी हमारा साथ दे रही है काटोबोन से, और लेखानी और सुमित आपके दो प्यारे बच्चों की ओर से। बच्चों का नाम ज़रूर आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं और यहाँ पर हमारा साथ दे रही हैं प्रेमिला जी काट्रबोन से, और कहती है जो लोग जन्मदिन मना रहे हैं उनको वे विश करना चाहती हैं। बिल्कुल ये हुई ना बात। चलिए यहाँ पर आशा जानू आप हमारे साथ है कॉटेज से। आज आपके माता पिता की शादी की सालगिरह को 52 वर्ष हो चुके हैं। मामा कुमारी साथ है आपकी, दीदी आरती, जीजू राज, शुभम और ऋषभ और सभी जानू परिवार की ओर से आपका ये डेडिकेशन हम तक आ पहुंचा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इंदिरा लॉटन आपका भी प्यारा सा मैसेज, पेपे दीक्षा कृष्णा लंदन से है, सुंदरपाल सिंह और लॉर्ड परिवार। कमला जी आप भी हमारा साथ दे रही है एकाध कुकु से, और आज आपके बेटे अजय का जन्मदिन है। मामा कमला की ओर से बहुत सारा प्यार, पत्नी रेनू, बेटा है जैविन, बेटी है जानवी, सभी सिपोल परिवार, रामेन परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार। उषा जी हाईलैंड से जुड़ी हुई हैं कुंज बिहारी और मोहन सिंह परिवार के साथ, और प्लेन मायों से नानी हमारा साथ दे रही है, कहती हैं गीतों का ये सफ़र हमें अपने दिनों में पहुंचा देता है। बिल्कुल प्यार से साथ देते रहिएगा नानी। और नुवर फॉन्स से हमेशा की तरह गीता बाई, साथ ही साथ सेंट जूलियन विलार से जुड़ी हुई हैं नीता खेदनी, आपकी प्यारी सखी है स्वाधिका। गाँव बुआ से है लीलो जी और आपकी प्यारी बहन मानती। गाँव गोप से सुनीता जी आपकी चार प्यारी बहनों के साथ, विमला, अमृता और वीना जी के साथ। काठबोन से सरिता जी भी साथ दे रही हैं, और आपकी प्यारी नातिन अदिति को 1 वर्ष हुआ है, तो अदिति को बहुत सारा प्यार देते हैं पापा आकाश, मामा है करिश्मा, मामू कविश और दादी ललिता की ओर से ढेर सारा प्यार। माला जी इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं बोबासन से, और नलिनी जोखन जुड़ी हुई हैं वाकवा की ओर से। व्यडन से अमृता गंगू भी साथ दे रही हैं, पिचित्रित्रेट से हमारा साथ दे रही हैं माला जही, साथ है लेस्पेरांस ट्रेबुशे से किरण बारोट और उनकी प्यारी पत्नी नम्रता, बेटा मयूर, बेटी नियति, दामाद सर्वेश और दो प्यारी नातियों के साथ। अमृता जी ओकुले से आपने भी कॉल किया पर हम आपका फ़ोन नहीं उठा पाए, और इसी के साथ बिल्कुल आपका भी नाम हम जोड़ते हैं। यहाँ पर शीला बेमाना पालमा से जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ सेंट जूलिया दुतमा से हैं प्रेमा सन्यासी, आपका मैसेज आप अभी भी टाइप कर रही हैं पर हम चलिए फ़िलहाल के लिए इतने नामों को जोड़ पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेजेस के लिए, और जितने लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं हमारी ओर से आपके नाम करेंगे ये प्यारा सा गीत। ज़िंदगी में आशीर्वाद, दिल से निकला हुआ सच्चा प्यार, इससे बड़ा तोहफा और कोई हो नहीं सकता, और ये गाना दिल से आपके लिए। चलिए मिलते हैं समाचारों के बाद थोड़ी ही देर में।

0: हजर के आठ बजल बा। सबको एक नमस्ते। संक्षिप्त समाचार सुना जा। मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के रेडियो चैनल RMA के आज एक बरिस पूरा हो गल बाटे। पुल FM के रिब्रांड करके एकरा RMD कर देवल गल रहल। पूरा उत्साह संगे आज ई रेडियो चैनल यानी RMA के टीम ई पहला बरिस के खुशी मनावत बाटे। अपन प्रसारण के शुरुआत के एक बरिस बाद राष्ट्रीय रेडियो चैनल ई खास अवसर के पूरा दिन खास कार्यक्रम संगे मनावत बटे। वित्तीय बरिस 2026-2027 के बजट पेश करे जाए में अब खाली तीन दिन बचल बाटे। ऐसे में भूमि आरी आवास मंत्रालय समाप्त हुए होला वित्तीय बरिस के ब्यौरा पेश करलक मंत्री शाकिल मोहम्मद। ई दौरान कई गो महत्वपूर्ण सुधार पर ही प्रकाश डलन। ई में योग्यता के खातिर आय सीमा के बढ़ाए के परिवार के देवल जाए होला सहायता के आर मजबूत बनाए के ये सब शामिल है। संगे संगे जस्ती सामाजिक आवास बनाए के उद्देश्य संगे विश्व बैंक के सहयोग से एगो नवा कार्य योजना तैयार करल जात बाटे। राष्ट्रीय बजट 2026-2027 के प्रस्तुति नजदीक बाटे। मंत्री अरविंद बुलेल प्रधानमंत्री बगल से प्रस्तावित आर्थिक नीति आदि प्राथमिकता पर आधारित एगो प्रेस सम्मेलन लगैलन। ऊ ई बात पर ही जोर देलन जा कि सरकार के जमीनी हकीकत के ध्यान में रखे के चाही आदि एक अनुसार वे फैसला ले के चाही। ओकर अनुसार राजकोष वास्तविक परिस्थिति पर आधारित हो के चाही। ऊ बोलन कि कई गो क्षेत्र खातिर प्रोत्साहन योजना आदि टिकाऊ विकास पर्यटन सेवा वित्तीय क्षेत्र संगे संगे कृषि क्षेत्र पर फेनो से गति आने खातिर सरकार के प्राथमिकता ई बनल बाटे। विदेश के खबर में वर्ल्ड कप 2026 खातिर क्वालिफिकेशंस जारी बाटे। आज फजर के सऊदी अरब के टीम के सामना उरुग्वे से होल। ई मैच ड्रॉ रहल 1-1। न्यूजीलैंड के टीम ईरान के संगे आज फजर के टकरैलक। स्कोर रहल ड्रॉ 2-2। आरी आज रात 11 बजे फ्रांस खेली सेनेगल के खिलाफ। कई रहल संक्षिप्त समाचार। तो हर ध्यान खातिर धन्यवाद। हमने की आज्ञा दिया। नमस्ते।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Shok samachar suna ja. Avenue coopérative, route bassin 4 Beaune, mais Barvan Bariske, second 2 Anke, Shri Sunil Persan, Jekotum, Nam Sejasi, Janel Jatalan Guzargal Hawan, Mati, Dinke Gara Habaje, Unkar Ghare, Avenue coopérative, route bassin 4 Beaune, Se Utake, Kedakaram Khatir, Gandhi Palma Kishmashan, Bhumile Javal Jai, Cremation Today at 11 a.m. C24 NHDC Henrietta Vaqua, Mayor Thalys Bariske, 48 Anke, Shrimati Chandni Matadin, Shrimati Chandni Matadin, Pedashinam Toku, Alje Pinky Nam Sejasti Danal Jatalan Guzargal Hawan, Mati, Pajirke Daspajun Karbeti, Ashwini Suraji Keghare, C24 NHDC Henrietta Vaqua Seutake, Kirakaram Khatir Sulfirino No. 5, Vaqua Keshmashan Bhumile Javal Jai, Cremation Today at 10 a.m. बाची घाँ गोब में 9 बरिस के निवंके कुमार अविनेश कृष्णा चंदू कुणाल कुमार अविनेश कृष्णा चंदू जे अविनेश नाम से जस्ती डानल जातलन गुजर कल हवन माटी 2 बजे उनकर पिता अतीश चंदू के घरे बाची घाँ गोब से उठा के केरा करम खातिर इलाका के श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन एट 2 p.m. लामारी अवाकवा में 72 बरिस के ससन 2 के श्री राजन गोहिया जे 10 गोहिया नाम से जस्ती जानल जाथलन गुजर गल हवन माती आज 2:15 बजे उनकर पत्नी कमला गोहिया के घरे लामारी वाकवा से उठा के केरा करम खातिर आले बहियों के श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 2:15 p.m. महात्मा गांधी रोड फोन जुसाख में 73 बरिस के 73 के श्रीमती रुकमीन पौगा

पास श्रीमती रुकमिन पौगास पैदाशी नाम राजवंती आर जे कुमारी नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरगल हवन माटी। आज 2 बजे उनकर पति धनेश्वर पौगास के घरे महात्मा गांधी रोड फौजी साक्षी उठा के किराकरम खातिर इलाका के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे 2 PM। कॉन्स्टेंटिन लेन कास्टेल में 75 बरिस के स्वसन कैजों के जनाब महमूद रेशाद बचू जे ऑरी मोशों बाजार नाम से जस्ती जानल जाथलन गुजर गल हवन। जनाजा फजर के 10 बजे उनकर घरे कॉन्स्टेंटिन लेन कास्टेल से उठा के सबसे आगे नमाजा जनाजा खातिर कास्टेल के मस्जिद आर दफनाए खातिर पाए के कब्रस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे 10 AM। शिवाला लेन कौजाबल में 69 बरिस के 69वां के श्री कौपानेन मोगेन जे चिनन नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरगल हवन माटी। दिन के 12 बजे उनकर पत्नी देवेगी कौपानेन के घरे शिवाला लेन कौजाबल से उठा के किराकरम खातिर इलाका के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे 8 PM। पिछी विलाज गुडलैंड्स में 21 बरिस के 92 के श्री विघ्नेश सुकन जे विगु नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरगल हवन माटी। दिन के 2 बजे उनकर पिता धर्मराज सुकन के घरे पिछी विलाज गुडलैंड से उठा के किराकरम खातिर बाहूश के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे 2 PM। किनू लेन कौन देस एम्बुवाद पेटी ट्रिविया में 70 बरिस के 70 के श्री नंदन किनू पैदाशी नाम साधु जे साधु नाम से जस्सी जानल जाथरन आरी टोबाको बोर्ड के पूर्व काम करवा रहलन उ गुजरगल हवन। उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर बेटा कुणाल किनू के घरे किनू लेन कौन देस एम्बुवाद पेची त्रिविया से उठा के किराकरम खातिर सैं जॉर्ज पेची त्रिविया के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे 2 PM। सैंकिया मिल बेलवेदिया बोबासे में 84 बरिस के 84 के श्रीमती केशवरी बोई हो जे शांता नाम से जस्ती जानल जाथलन आरी फ्लैक हॉस्पिटल में पूर्व लिनन अफसर रहलन उ गुजरगल हवन माटी। दिन के 1 बजे उनकर बेटी रागिनी लक्ष्मण के घरे सैंकिया मिल बेलवेदिया बोबासा से उठा के किराकरम खातिर शुबैल के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे 1 PM। मौसलमा ब्लू प्रिंट यूनियन पार्क में 19 बरिस के 19 के कुमारी नैनिका कायरा अकालू कुमारी नैनिका कायरा अकालू जे निका नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरगल हवन माटी। 2 बजे उनकर पिता विक्की अकालू के घरे मोसलमा ब्लू प्रिंट यूनियन पार्क से उठा के किराकरम खातिर मेबर्ग के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे 2 PM। डोडो स्ट्रीट बोवालो मेबर्ग में 84 बरिस के 84 के श्री मुतु मुतुकपेन जे गासेंसिया डॉ नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरगल हवन माटी। 3 बजे उनकर बेटा राजन मुतुकपेन के घरे डोडो स्ट्रीट बोवालो मेबर्ग से उठा के किराकरम खातिर यूनियन पार्क के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे 3 PM। रॉरोड वालिता में 54 बरिस के 74 के श्री विक्रम सिंह मंघा जे जेंजों नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरगल हवन माटी। दिन के 11 बजे उनकर घरे खुदख्याल वालिता से उठा के किराकरम खातिर सिया कॉन्स्टेंस के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे 11 AM। रामगुलाम रोड प्लेंडी पापाई में 78 बरिस के स्वसंजीवितों के श्रीमती सत्यावती ब्रिजमोहन पैदाशी नाम सुजीवन आर जे बहन जी ब्रिजमोहन नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरगल हवन माटी। दिन के 1 बजे उनकर पति धनेश्वर ब्रिजमोहन के घरे रामगुलाम रोड प्लेंडी पापाई से उठा के किराकरम खातिर इलाका के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन टुडे 1 PM। शिवसागर लेन एपास अशोका घोंबुआ में 65 बरिस के 65 के श्री अनंत अंचहास जे अशोक नाम से जस्सी जानल जाथरन आरी एस बी एम रोस

प्रेमी पूर्वक काम करवा रहलन जा ओ गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के एक बजे उनकर घर एसियो सागौले ने पासा शोका घोंबुआ से उठा के किरा करम खातिर घोंबुआ के श्मशान भूमि ले जावल जाए परमिशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड नोवेल फ्रांस में रॉयल गेट स्टोर लगे रॉयल रोड नोवेल फ्रांस में 77 बरिस के सुसन जी से तौके श्रीमती देविका सामल श्रीमती देविका सामल पैदाशी नाम बिहारी आरजे इंदिरा नाम से जस्ती जानल रातलन गुजरकल हवन माटी 9:00 परी उनकर बेटा कमल सामल के घरे रारो नोवेल फ्रांस से उठा के किरा करम खातिर बिगाह के श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे एट 9:30 AM। बोनेस्पोर रोड रिविया दे क्रियोल में 82 बरिस के 82 के श्री राजेंद्र लखन श्री राजेंद्र लखन जे लखन नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरकल हवन माती 12:00 उनकर बेटा मन लखन के घरे बोनेस्पोर रोड रिविया दे क्रियोल से उठा के किरा करम खातिर टोम्बोलिन में बग के श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे एट नून। कालीचरण लेन काहोलालियान वाकवा में 42 वर्ष के 42 के कुमारी रितिशा राम सहा कुमारी रितिशा राम सहा जी अनुषा नाम से जस्ती जानल जाथलन गुजरकल हवन माती दिन के 11:00 उनकर घरे कालीचरण लेन काहोलालियान वाकवा से उठा के किरा करम खातिर फिनिक्स के श्मशान भूमि ले जावल जाए परमिशन टुडे एट 11 AM। रॉ रोड पाल मऊ में 54 बरिस के 57 के श्री संजय बोधी जे मनोज नाम से जस्सी जानल जाथलन वो गुजरकल हवन माटी दिन के 12:00 उनकर पत्नी आशा देवी बोधी के घरे रॉ रोड पाल मऊ से उठा के किरा करम खातिर भूषों के श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे एट नून। फॉरेस्ट लेन लामारी वाकवा में 56 वरिस के 76 के श्री स्वराज अपादू जे संजीव मेकानिसिय नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरकल हवन माटी आज दिन के 3:00 उनकर घरे फॉरेस्ट लेन लामारी वाकवा से उठा के किरा करम खातिर थवा मामेल के श्मशान भूमि ले जावल जाए परमिशन टुडे 8:00 PM। नंबर 82 रूट बासें काथोबोन में 73 बरिस के 73 के श्री शाहनंद की होदौ जे सागा नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरकल हवन माती दिन के 10:00 उनकर घरे नंबर 82 खुदबासें काथोबोन से उठा के किरा करम खातिर थवा मामेल के श्मशान भूमि ले जावल जाए परमिशन टुडे एट 10 AM। एनएचटीसी कॉम्प्लेक्स मॉडल बेयर में 73 बरिस के 73 के श्री महावीर मानिक जे मानिक नाम से जस्ती जानल जाथलन गुजरकल हवन माती फजर के 10:00 उनकर बेटा विशाल मानिक के घरे एनएचटीसी कॉम्प्लेक्स मॉडल बेयर से उठा के क्रियाक्रम खातिर पिछी बेले अमेबर्ग के श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। सेंट अंतोन कॉन्फुक्रो में 75 बरिस के 75 के श्री नंद कुमार के दन जे कृष्णा साडो नाम से जस्ती जानल जाथलन गुजरकल हवन माती सांझ के 3:00 उनकर घरे सैतौतवान कौफुखो से उठा के किरा करम खातिर इलाका के श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। रेजिडेंस ओतेंसिया 606 मॉडल बेयामे 50 बरिस के 50 के श्रीमती मीतू देवी अजुदा जे प्रिया नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरकल हवन माती फजर के 10:00 उनकर पति रामलोल सूरज के घरे रेजिडेंस ओतेंसिया 606 मॉडल बेया से उठा के किरा करम खातिर मॉडल बेया के श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। शोक में डूबल इस परिवार संगे हमने की सहानुभूति है।

0: 819 kilohertz. This is
1: Radio Marches. Radio Marches.
2: 8:23 हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति पर आइए नजर डालते हैं। ये है आलबियों के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, खासकर मौसलमों आफ़े, मौसलमों बियाजी गाज, साथ ही साथ मौसलमों बेलव्यू, एवेन्यू ओगागन, एवेन्यू विक्टोरी, एवेन्यू सेंट जेरों, एवेन्यू शुबैक, एवेन्यू ब्रिक एम्पायर, एवेन्यू बाउंटी, एवेन्यू अल्बाट्रोस, एवेन्यू डालिया, एवेन्यू ट्यूलिप, एवेन्यू फ्रांजीपान, एवेन्यू रोज और एवेन्यू ओले के निवासियों को सूचित किया जाता है कि मंगलवार 16 जून यानी आज सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
3: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर। एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
2: आठ बजकर 24 मिनट और सुबह का नजराना कार्यक्रम के बीच रखा हुआ ये सेगमेंट डेडिकेटेड है हमारे एक ऐसे बॉलीवुड के अभिनेता को, और आज के एक सुप्रसिद्ध अभिनेता की हम बात कर रहे हैं जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जी हाँ, नसीरुद्दीन शाह। और चलिए इसी के साथ हम आपको ये भी बताते चले, नसीरुद्दीन शाह जिन्हें हिंदी फिल्म उद्योग में अदाकारी का एक पैमाना कहा जाए तो शायद किसी को एतराज़ नहीं होगा। और नसीरुद्दीन शाह की काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है सिनेमा की

दोनों धाराओं में उनकी कामयाबी। नसीर साहब का नाम अगर पैरेलल सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं की सूची में शामिल हुआ तो बॉलीवुड की मुख्य धारा या व्यापारिक फिल्मों में उन्होंने बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल की। भाई कहते हैं ना, लेजेंड ऐसे ही नहीं बनते, उनके पीछे जितनी मेहनत होती है, जितने उतार चढ़ाव, जिसमें उतार कम, भाई कहते हैं ना उतार ज्यादा चढ़ाव बहुत कम होते हैं, और ऐसा ही हुआ नसीर साहब के साथ। नसीर अपने शानदार अंदाज से मुख्य धारा के चहीते सितारे बने हुए हैं, और ऐसा सितारा जिसने हर तरह के किरदार को बेहतरीन अभिनय से जिंदा कर दिया। ये सितारा जब भी स्क्रीन पर आए हैं, देखने वाले के दिल में एक अलग ही यादगार छाप छोड़ चुके हैं, और उनकी कॉमेडी ने पब्लिक को खूब गुदगुदाया, तो एक्शन के साथ भी उन्होंने अलग अलग अंदाज निभाए हैं। और साथ ही साथ मुख्य धारा सिनेमा में नसीरुद्दीन शाह की बात करें तो उनके जिस सफर की शुरुआत हुई थी 1980s में आई फिल्म हम पांच के साथ, फिल्म भले ही व्यापारिक थी लेकिन इसमें नसीर साहब के अभिनय की गहराई समानांतर सिनेमा वाली फिल्मों में से कम नहीं। गुलामी को अपनी तकदीर मान चुके गांव में विद्रोह की आवाज बुलंद करते नौजवान के किरदार में नसीर साहब ने बिल्कुल जान फूंक दी थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी कामयाबी नहीं दिखा पाई थी, और एक व्यापारिक एक्टर के तौर पर सफलता साबित करने के लिए नसीर साहब को वो टिकट खिड़की पर की, जो कहते हैं ना कि उनको अपनी खुद की फिल्म की टिकट्स बेचनी पड़ी थी ताकि लोग आकर वो फिल्म देखें, और उनके लिए ये काम किया जाने भी दो यारों फिल्मों ने। बिल्कुल इस फिल्म में उन्होंने बॉलीवुड की ऑल टाइम बेस्ट कॉमेडी फिल्मों में शुमार जाने भी दो यारों में रवि वासवानी और नसीर की जोड़ी लोगों को बेहद पसंद आई थी, और उसकी जो कॉमिक थी, कॉमिक टाइमिंग दिखाई दी, और फिल्म बेहद कामयाब रही। और लेकिन कमर्शियल सिनेमा में नसीर साहब की सबसे बड़ी कामयाबी रही मासूम के साथ। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने मासूम का नाम लिया हो और अनूप घोषाल का ये गाना न चले।

बिल्कुल, मासूम फिल्म ने दिलाई नसीर साहब को एक बेहतरीन पहचान, और ये फिल्म काफ़ी सुपरहिट रही और नसीर साहब को एक स्टार का दर्जा मिला इस फिल्म के बाद। बिल्कुल, आज की छोटी सी मुलाकात हम करवा रहे हैं नसीर साहब के साथ। वैसे नसीर साहब के इस स्टार स्टेटस को और मजबूत किया 1986 की सुभाष घाई की मल्टी स्टारर मेगा बजट मूवी कर्मा ने, और फिल्म में नसीर साहब ने अपनी एक छाप छोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि ये फिल्म में भी उनकी जो अदाकारी थी वहाँ अभिनय सम्राट दिलीप कुमार के साथ उनको कंपेयर किया गया था, और इस दौर के लिए नए नवेले सितारे जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर इस फिल्म में नजर आए थे। जिस और इस फिल्म में सच कहें तो उनकी जो मैच्योरिटी थी वो दिखाई दे रही थी उनकी एक्टिंग में। चलिए इस फिल्म का एक छोटा सा मुखड़ा आपको सुनाते हैं।

0: बिल्कुल, फिल्म कर्मा में ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार नजर आए थे, जहां पर एक ओर लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार साहब थे, वहीं दूसरी ओर अनुपम खेर साहब और साथ ही साथ नसीरुद्दीन शाह और उभरते कलाकार जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर, श्रीदेवी और पूनम ढिल्लों। भैया ऐसे तो बहुत सारे कलाकार इस फिल्म में थे, पर क्या बताएं, क्या लाजवाब फिल्म रही। और चलिए इसी के साथ
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ
0: मुलाकात को जारी रखते हैं। और इस दौर में 1986 में आई थी फिल्म कर्मा, उसके बाद 1987 में आई फिल्म गुलजार साहब की इजाज़त, और इस फिल्म में भी नसीर साहब के लिए कामयाबी का एक और जरिया बन गई ये मूवी। और एक जज्बाती कहानी, बेहतरीन निर्देशन, शानदार अभिनय और यादगार संगीत, और इजाज़त ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और बतौर व्यापारिक एक्टर नसीर का रुतबा और भी बढ़ गया। और त्रिदेव जैसी सुपरहिट फिल्म देकर 90 का जो दशक था वो आते नसीर साहब ने व्यापारिक फिल्मों में भी अपनी एक अलग पहचान बना दी। वही जहां पर हमने बात करी है इजाजत की, तो चलिए एक छोटी सी, मतलब आपको इस गाने का भी एक छोटा सा मुकड़ा सुनाते हैं। इस फिल्म में नजर आए थे नसीर साहब विद एवरग्रीन रेखा, और इस फिल्म में शशि कपूर साहब भी नजर आए थे। बहुत ही लवली, बहुत ही सुपर्ब कहानी।

जिसने जिया है 90 का शतक वो ओए ओए को बहुत अच्छे से पहचानता होगा। बिल्कुल त्रिदेव का ये लाजवाब गाना।

0: बिल्कुल 90s के जमाने का ये एक और ऐसा धमाकेदार गाना था जो हर जवां जबां पर छाया हुआ था उस जमाने में। और बिल्कुल कहते ना कि हर एक इंसान का एक दौर होता है, तो ये दौर भी बड़ा ही लाजवाब रहा।
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
0: वैसे आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेंटलमैन की जो हर मूवीज के साथ अपनी छाप छोड़ चुके हैं। वैसे कई सारी फिल्में आई, 2003 में आई हॉलीवुड फिल्म द लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन में नसीरुद्दीन शाह साहब ने कैप्टन नीमो का किरदार निभाया था। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए में भी उन्होंने शानदार काम किया था और देश के लिए परदेश तक नसीरुद्दीन शाह ने अपनी अदाकारी का लोहा सारी दुनिया को मनवाया। और साथ ही साथ नसीर अपनी काबिलियत को खुशकिस्मती का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ और मुझे इतने मौके मिले हैं, लेकिन मैं व्यापारिक फिल्मों से अभी संतुष्ट नहीं। 2008 में आई अ वेडनेसडे और इस फिल्म में भी नसीर साहब की अदाकारी का एक और नजराना पेश किया गया। इश्किया, राजनीति, सात खून माफ और डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों ने भी नसीरुद्दीन शाह के बारे में बार बार यही साबित किया कि एक सच्चे कलाकार को उम्र बांध नहीं सकती। हाल ही में रिलीज एक फिल्म मैक्सिमम में भी नसीर साहब ने क्या जोरदार एक्टिंग की है और बहुत लोगों को उन्होंने मनोरंजित किया अपनी फिल्मों के साथ। और आज के नसीरुद्दीन शाह की बात करें तो शायद ही ऐसा कोई रोल होगा जो उन पर फिट ना हुआ हो। आखिर वो एक्टर ही ऐसे हैं कि हर रोल के मुताबिक खुद को ढाल देते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो एक कलाकार की यही तो पहचान होती है कि हर वो कला को वो प्रदर्शित करें। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब नसीर साहब को दो रोल करने की इच्छा थी जो उस समय उन्हें नहीं मिली। लेकिन बाद में मिर्जा गालिब दूरदर्शन धारावाहिक में भी उन्होंने दो रोल उनको मिले थे जिसमें उन्होंने गालिब का वास्तविक चित्र उभारने की कोशिश की थी।

0: आपको जानकर हैरानियत होगी ये कि गालिब बनने की नसीर की तमन्ना उनके दिल में एक अधूरे ख्वाब की तरह अटकी हुई थी। 1988 में सीरियल बनाने से सालों पहले गुलजार साहब गालिब पर एक फिल्म बनाना चाहते थे और उस फिल्म में गालिब के तौर पर उनकी दिली इच्छा संजीव कुमार को लेना पड़ा। वैसे हाल ही में एक फिल्म आई है, फिल्म तो नहीं कहेंगे पर वेब सीरीज मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरीज में भी उन्होंने JRD का रोल निभाया, जो भाई काबिले तारीफ है। हमने उसकी एक छोटी सी झलक देखी, आप भी अगर हो सके तो ये सीरीज को वॉच जरूर कीजिएगा। वैसे फिल्मों की बात करें तो भाई उनकी फिल्में लाजवाब रही है और उनके साथ स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, अमरीश पुरी, ओम पुरी जैसे कलाकारों ने भी काम किया और बिल्कुल आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला, भवनी भवाई, साथ ही साथ अर्धसत्य, मंडी, चक्र जैसी फिल्मों ने भी उनको एक अलग स्तर दिया और बिल्कुल एक नसीर साहब की असली पहचान समानांतर सिनेमा था। सिनेमा की वो धारा जिसमें एक स्टार के लिए कम और एक्टर के लिए गुंजाइश ज्यादा होती है और ये बात किसी से छुपी नहीं कि नसीर साहब एक एक्टर से पहले, एक्टर पहले और स्टार बाद में है।
1: मुलाकात एक कलाकार के साथ,
0: चलिए उन्हीं की फिल्म का ये आखिरी मशहूर सा गाना हम आपके नाम करते हैं। आखिरी इसीलिए क्योंकि समय बस बहुत कम रह गया है और यही हमें जोड़ेगा हमारी अगली कड़ी के साथ, यानी हमारी धरोहर जहां पर किरण जानकी हमारा साथ देंगी। फिल्म है विश्वात्मा। अगेन ये वाली फिल्म भी मल्टी स्टारर मूवी रही और इस फिल्म का ये गाना भी बहुत ही मशहूर हुआ था। बिल्कुल 90s में जब त्रिदेव की फिल्म ओए ओए छोड़ गए, फिर आई विश्वात्मा जहां पर ये वाला बहुत ही हिट हुआ था।

0: तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर हम समाप्त करेंगे। जी हाँ, इस कार्यक्रम का यानी सुबह का नजराना कार्यक्रम का आखिरी सेगमेंट है हमारी धरोहर। और चलिए इसी के साथ किरण जानकी उपस्थित हो चुकी है आज के इस अगले सेगमेंट को लेकर, आइए उनका स्वागत करते हैं।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, संयुक्त राष्ट्र महासभा के ओर से घोषित एगो अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाला दिन है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस हर बरी 16 जून के मनावल जाला। इ दिन आर्थिक असुरक्षा, प्राकृतिक और जलवायु संबंधी आपदा और एगो वैश्विक महामारी के सामना करे में प्रवासी श्रमिक के फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन पर प्रकाश डालेला। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत एगो सार्वभौम मान्यता प्राप्त कर लेबा। ये पूरा विश्व के 200 मिलियन से जस्ती प्रवासी कामगार, महिला और पुरुष के मान्यता देवेला, जे लोग 800 मिलियन से अधिक परिवार के सदस्य के घरे पैसा भेजलन सा। ये लक्ष्य के प्राप्त करे खातिर संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के स्थापना करा गल बा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस ऐसे ही प्रवासी मजदूर के महत्व के उजागर करे के एगो विशेष दिन है और एकर विभिन्न संगठन वैश्विक मान्यता प्रदान कर लेबा। और अंत में 16 जून 2015 के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के ओर से एगो प्रस्ताव पारित कर गलबा और 16 जून के आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस के रूप में घोषित कर गल। प्रेषित धन ऊ पैसा कहाला जोन कोनो दूसरा पार्टी के भेजल जाला। ई सामान्यतः एगो देश के दूसरा देश में भेजल जाला। प्रेषक एगो आप्रवासी कामकाजी है जे अपन परिवार के विदेश से पैसा भेजेला। विश्व में प्रेषित धन के सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बोलल जाला भारत है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, हर बरिस एगो विषय पर रहेला और प्रेषण के निवेश, ओकर समावेश और नवाचार खातिर एगो बेहतर भविष्य पर आजकल बातचीत हुआ था और निर्धारित करा गलबा कि चाहे हर एगो परिवार के जीवन में सुधार आने खातिर रेमिटेंस यानी प्रेषण के क्षमता पर प्रकाश डाले के। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ।
0: तो चला इसी के साथ किरण जानकी के बहुत बहुत धन्यवाद। और एगो बढ़िया गीत चंद्रदेव जीबोदन के आवाज में रखल है, हरे गीत के साथ हये गीत हमने के जोड़ी 9 बजे के समाचारों के साथ। आप सबको एक याद दिला दे बताए, बिल्कुल हम याद दिला देते हैं कि 9 बजे समाचारों के बाद आप जुड़ पाएंगे आज की चर्चा कार्यक्रम में, जहाँ पर वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे पर बात की जाएगी और इस कार्यक्रम का बिल्कुल प्रस्तुतिकरण किया जाएगा सुमिता के द्वारा और इस कार्यक्रम की अतिथि होंगी श्रीमती नवीनी रामनियाल। तो जरूर आप इस कार्यक्रम

सुनिए। और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस पर किया जाएगा, साथ ही साथ MBC के तीसरे चैनल पर आप इसे देख पाएंगे और फेसबुक पेज पर भी आप इसे फॉलो कर पाएंगे। याद रहें, इस कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। तो चलिए इसी के साथ छोड़े जाते हैं ये गाना आपके नाम, और हमारी और आपकी मुलाकात अब होगी ठीक 10 बजे के समाचारों के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम में। तब तक के लिए

0: सभी सुनने वालों को और हमें देखने वालों को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचार पेश हैं। मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के रेडियो चैनल RM1 यानी RM1 को आज एक साल पूरा हो गया है। कूल FM को रिब्रांड करके इसे RM1 का नाम और रूप दिया गया था। पूरे उत्साह के साथ आज इस रेडियो चैनल की टीम इस पहले साल की खुशियां मना रहा है। अपने प्रसारण की शुरुआत के एक साल बाद राष्ट्रीय रेडियो चैनल इस खास अवसर को पूरे दिन खास कार्यक्रमों के साथ मना रहा है। वित्तीय साल 2026-2027 का बजट पेश किए जाने में अब मात्र 3 दिन ही बाकी हैं। ऐसे में भूमि एवं आवास मंत्रालय ने समाप्त हो रहे वित्तीय साल का ब्यौरा पेश किया। मंत्री शकील मोहम्मद ने इस दौरान किए गए कई महत्वपूर्ण सुधारों पर प्रकाश डाला। इनमें योग्यता के लिए आय सीमा को बढ़ाना और परिवारों को दी जाने वाली सहायता को और मजबूत बनाना शामिल है। राष्ट्रीय बजट की प्रस्तुति नज़दीक। मंत्री अरविंद बुलेल ने प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं पर आधारित एक प्रेस सम्मेलन लगाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रख के आगे बढ़ना होगा। उनके अनुसार राजकोष और मौद्रिक नीतियाँ वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं और टिकाऊ विकास तथा पर्यटन, सेवा और वित्तीय क्षेत्रों के साथ साथ कृषि क्षेत्र को फिर से गति देना सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है। मॉरिशस में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। नेशनल लैंड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा 8 जून को एक ताज़ा आंकड़ा रिपोर्ट जारी की गई है। मई 2026 के दौरान 1101 नए वाहनों का पंजीकरण किया गया। आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष जनवरी से मई महीने के बीच वृद्धि हुई है। देश भर में कुल 7361 गाड़ियों का पंजीकरण किया गया, जिनमें नई और सेकंड हैंड दोनों प्रकार के वाहन शामिल हैं। मोटरसाइकिल की संख्या भी बढ़ रही है। इसी अवधि में 3206 मोटरसाइकिल्स का पंजीकरण हुआ। कुल मिलाकर सभी जनवरी से मई 2026 तक 12962 नए और पुराने वाहनों का पंजीकरण किया गया, जो देश के ऑटोमोबाइल बाजार की मजबूती को दर्शाता है। वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफिकेशंस जारी हैं। आज सुबह सऊदी अरब की टीम का सामना उरुग्वे के साथ हुआ। ये मैच ड्रॉ रहा 1-1। न्यूजीलैंड की टीम ईरान से आज सुबह टकराई, स्कोर रहा ड्रॉ 2-2 और रात 11 बजे फ्रांस खेलेगा सेनेगल के खिलाफ। और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर पहले से ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। उन्होंने ये संकेत दिया कि समझौते पर पूरी तरह जानकारी जल्द ही आम की जाएगी। इस बीच अमरीका के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी समझौते के कुछ प्रमुख पहलुओं की जानकारी दी है। शुक्रवार को जिनीवा में समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसी दिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: भी श्रोताओं और सभी दर्शकों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आज की चर्चा इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, आज की चर्चा इस कार्यक्रम को इस समय आप लाइव सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसका सीधा प्रसारण हो रहा है MBC के चैनल 3 पर, साथ ही इसे आप लाइव देख पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर भी। और आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो आज के समय के लिए या आज के समाज को जो है के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज तो 16 जून है, कल 15 जून था और कल एक बहुत ही विशेष दिन मनाया गया, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, यानी कि विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। और हम हमारे बुजुर्गों की बात करें तो हमारे समाज में बुज़ुर्गों की जो संख्या है वो काफ़ी है, और हमारे सोसाइटी में बुज़ुर्गों का मान सम्मान करना हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का एक हिस्सा रहा है। बुज़ुर्ग जो है सिर्फ हमें जो है हमें हमारी सभ्यता, हमारे संस्कारों के बारे में ही नहीं बताते हैं, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में जो है उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। आज जो भी खुशहाल जीवन हम कहीं ना कहीं व्यापन कर रहे हैं उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की देन है, क्योंकि जो संघर्ष उन्होंने किया उसी के चलते आज जो है हम इस खुशहाल जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और जब उनके हक की बात आती है तो कहीं ना कहीं इस दिन को बड़ा ही महत्व दिया जाता है। तो आज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे पर हम चर्चा करेंगे, और इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच मिसिज नाविनी रामनियाल जी जुड़ चुकी है। नमस्कार मिसेज रामनियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिसेज रामनियाल की बात करें तो वो एक सोशल वर्कर है, काफ़ी NGOs के साथ काम करती है, काफ़ी सोशल इश्यूज के बारे में जो है ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर देश के कोने कोने में जाते हैं, लोगों के बीच जागरूकता फैलाते हैं। और ख़ासकर बुज़ुर्गों की बात करें तो इनका अपना एक NGO भी है, बी अवेयर, जो ख़ासकर बुज़ुर्गों के हक के लिए कार्य करता है, जहां पर बुज़ुर्गों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है, बुज़ुर्गों के प्रोटेक्शन पर ध्यान दिया जाता है, उनके हक के बारे में उन्हें बताया जाता है, और कहीं अगर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो ये उनके लिए कार्य करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिसेज नाविनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज का विषय बहुत ही विशेष है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे बुज़ुर्ग कौन है।
1: ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। नमस्ते सभी दर्शकों के लिए। बुज़ुर्ग कौन है? आज जो हमारा अस्तित्व है, आज जो हम हैं, वो हमारे बुज़ुर्ग के सैक्रिफाइस से, उनके काम से, उनके संघर्ष से आज हमारा आज है जी। वो जो हमारे अपनेपन है इस देश में, हम मिल के रहते हैं, साथ में रहते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, ये सब किसने शुरू किया? ये तो हमारे बुज़ुर्ग ने शुरू किया। और जब हम बुज़ुर्ग कहते हैं तो वो हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी, सास ससुर, ये सब को लेके बुज़ुर्ग होता है। और जैसे कि एक गांची होती है, अगर मैं अच्छी तरह से प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो वो जरी हैं। अगर होता है अभी विंटर में, आप देखेंगे कि कभी कभी थोड़ा पेड़ वो सूख जाता है, सभी जो पत्ते झड़ने लगते हैं, फूल झड़ने लगते हैं, फ्रूट झड़ने लगते हैं, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि वो फिर से हरा भरा हो गया। क्या क्या किसने उनको सहायता दिया है? वो जड़ी है,
0: क्योंकि जड़ें मजबूत
1: हैं। तो हमारे बुजुर्ग क्या हैं? वो जड़ी है। अगर एक घर में बुजुर्ग चले जाते हैं तो वो घर बिखर जाते हैं, बच्चे एक बगल चले जाते हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होते हैं, तो वो बुज़ुर्ग हैं जो सब संभाल के रखते हैं। तो बुज़ुर्ग का जो, और इसी स्थान उनको देश में भी होता है। सिर्फ सोचिए कि अगर देश में बुज़ुर्ग नहीं होते तो हमारा देश क्या होता?
0: बिल्कुल आपने सही कहा, और ख़ासकर मॉरिशस जैसे देश की हम बात करें जहाँ पर जो है मज़दूरों को लाया गया था,

उन्होंने इतना संघर्ष झेला है, एक कठिन जीवन शैली थी उनकी, इतना संघर्ष करके इस देश, ये देश जो आज सोने जैसा चमक रहा है, कहीं ना कहीं उन बुज़ुर्गों की ही तो देन है। अगर वो मेहनत, वो परिश्रम नहीं करते तो आज उनकी ये जो पीढ़ियां है यहाँ पर, वो इस तरह का सफल जीवन नहीं व्यतीत कर पाते। तो कहीं ना कहीं हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। और आपने जैसे कहा, वो हमारी जड़ें हैं, वो हमारी नींव है, और अगर हमारी नींव ही कमज़ोर

0: नहीं कर सकते, है ना?
1: अवश्य, और यही समझाने के लिए हम यहाँ पर हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जब तक वो हैं, हमें उनका आभारी करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने कहा है, जितना सक्रिफाइस उन लोगों ने किया है, जो हमारा देश है भरा भरा है, उन्हीं के बदौलत हैं।
0: जी बिल्कुल। और बुज़ुर्गों की बात करें तो समय के साथ हमारे जो है बुज़ुर्गों की अहमियत को थोड़ा सा कम आका जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि चारों ओर ऐसा है, कभी कभार हम ऐसे केसेस देखते हैं, ऐसे सिनेरियोज हमारे सामने आते हैं, कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों का सिर्फ परिवार तक उनकी अहमियत नहीं है कि बच्चों का पालन पोषण करते हैं, फिर दादा दादी के रूप में अपने नाती पोतों को देखते हैं, वहीं पर समाज में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कभी कभार सामाजिक स्तर पर उनकी सलाह उनकी राय हमारे बहुत काम आती है। और यही सलाह यही राय सिर्फ सामाजिक स्तर पर सीमित नहीं है, बल्कि देश मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका योगदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि कभी कभार हमें कभी ऐसी चीज़ की जानकारी चाहिए होती है, कभी ऐसे चीज़ के बारे में जानना होता है जो हमारे समय का नहीं है, पहले का है, तो ऑब्वियसली हम अपने बुज़ुर्गों की ओर ही जाएंगे ना, तो इसलिए जो है बुज़ुर्गों का बड़ा ही जो है महत्व है। तो चलिए आपसे हम जानना चाहेंगे, बुज़ुर्गों के हक के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से पहलू जुड़ते हैं?
1: जी, हक से पहले हम आज की चर्चा जो है जो अवेयरनेस एल्डरली अब्यूज अवेयरनेस डे क्यों मनाते हैं, क्यों इसका अपकरण हुआ है, क्यों हम ये दिन है
0: जी।
1: देश में और इंटरनेशनली
0: इसे क्यों मनाया जाता है?
1: जी जी, 10 बुजुर्ग में एक बुजुर्ग के ऊपर अब्यूजर्स होते हैं, अत्याचार होते हैं, और हमारे देश में इनका संख्या 5 तक होता है,
0: यानी कि विश्व स्तर पर 10 में से एक बुजुर्ग पर जो है, और यहाँ पर हम अगर बात करें तो 10 में से 5
1: क्यों 5 होता है? ये अभी कल ही मैं रेडियो पर सुन रहा था, न्यूज बोल रहे थे कि मॉरिशस में जनवरी से अभी तक 600 से ज्यादा अब्यूजर्स पुलिस को
0: रजिस्टर
1: किया। इसका मतलब है कि हर महीने कम से कम 100 ऐसे अब्यूजर्स
0: केसेस
1: रजिस्टर्ड होते हैं हमारे बुजुर्गों पर। तो ये अलार्मिंग है, क्योंकि अभी जहां हम जी रहे हैं, जैसे जा रहे हैं, अगर ये ऐसे ही बढ़ता जाए हमारे देश, अभी हम एक एजिंग पॉपुलेशन में पहुंच गए हुए हैं, अगर हम ऐसे ही चलता जाए तो बहुत अब्यूजर्स और इंक्रीज हो जाएगा हमारे देश में। और इसका मतलब है कि जो अभी के नव युवक हैं उनको फिर से समझाना पड़ेगा कि आप अपने बुजुर्ग के पति कैसे व्यवहार करें।
0: कहीं ना कहीं बुजुर्गों के प्रति व्यवहार की बात करें तो हम देखते हैं आजकल समाज में इसको लेकर काफ़ी एक चिंताजनक जो है स्थिति पर हम पहुंच गए हैं। एक तो सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि आजकल जो है न्यूक्लियर फैमिलीज़ का चलन आ चुका है, मतलब कि बच्चे शादी कर लेते हैं तो अलग हो जाते हैं अपने माता पिता से, फिर जब उनके बच्चे होते हैं तो उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए जो है बुज़ुर्गों का साथ नहीं होता है, शायद वीकेंड में जाते होंगे अपने नाना नानी या दादा दादी के पास, तो ऐसे में जब छोटे बच्चे अपने बुज़ुर्गों के संरक्षण में नहीं हैं तो वो संस्कारों की कमी हमें नज़र आती है, वो व्यवहार में जो है वो सम्मान की कमी हमें नज़र आती है। और किसी भी बुज़ुर्ग की बात करें, अगर उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, एक समय 10-10 बच्चों को जब वो पालते थे, तो बदले में शायद वो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं कि हम उनसे उनका सम्मान करें, प्रेम से जो है उनके साथ रहे और अपनेपन का व्यवहार उनके प्रति रखें।
1: जी, हमारे बुजुर्ग, अभी के बुजुर्ग सिर्फ वक्त मांगते हैं हमसे, दो बोल, खुशी के बोल, प्यार के बोल बोल दीजिए, वो खुश हो जाएंगे। लेकिन यही प्रॉब्लम हो रहा है आज के दौर में, सभी को काम करना चाहिए, क्योंकि जो जिंदगी है वो आसान नहीं है, काम
0: पहले जैसे नहीं है,
1: लेकिन कम से कम आप अपने जिंदगी में, आप अपने प्लानिंग में 5 मिनट 10 मिनट अपने बुजुर्गों के लिए निकालिए, तो वो जो आपको आपको समझाएंगे, जो बोलेंगे, वो वो 10 मिनट के जो आपको विद्या देंगे, वो आपने दिन भर के

0: थकान दूर कर हो जाएगा।
1: जी जी, चलिए आप बता रहे थे कि आज के इस दिन को क्यों मनाया जाता है, उस पर हम चाहेंगे आप थोड़ी सी जानकारी दें।
0: जी हमारे जैसे हमने स्टैटिस्टिक के लिए कहा है कितने नंबर के बुज़ुर्ग को अब्यूज़र्स हो रहा है, वो क्या है कि हमारे बुज़ुर्ग ने कभी भी एक लिमिट नहीं रखा है, वो सिर्फ देना जानती हैं। बचपन से अपने परिवार को खुश रखने के लिए, फिर बाद में पति को, फिर पत्नी को, फिर बच्चे को, फिर बाद में जो बच्चे आते हैं बच्चे के बच्चे को देना आते हैं, वो सिर्फ प्यार देना
1: जानते
0: हैं, लेकिन उनके जो लिमिट हैं वो कभी भी नहीं डाला। इसीलिए हम नहीं सोचते हैं कि वो क्या क्या फील कर रहे हैं। ऐसे बात कर दिया कि तुम नहीं आ सकते हो, हम कभी भी सोचते नहीं हैं वो बातचीत जो हमने किया है उनसे, वो किधर कैसे उनको बुरा लगा, क्या असर हुआ, और हमें वो बात करना चाहिए था कि नहीं, लेकिन ऐसे हो जाता है।
1: जी, बिल्कुल।
0: और अब्यूज़र्स अभी वो जो हमारे एल्डर्स हैं वो वल्नरेबल है। तो अभी जो हमारे सोशल प्रॉब्लम है देश में, जो ड्रग का प्रॉब्लम है, हमारे एल्डर्स वो सबसे पहले स्थान में हैं और सबसे ज़्यादा वो सफ़र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनसे पैसे छीनना, उनको ठगना, उनसे वो पैसे लेना बहुत आसान हो गया है। कौन सी दादी, नानी, चाची, मौसी रहेगा कि अपने बच्चों को जैसे आप
1: मांगे
0: तो नहीं देंगी। ये डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए समझने को कि मैं ये कर रही हूँ तो ये बुरा रास्ता ले सकता है। वो कभी भी बुरा नहीं सोचते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमेशा यही सोचता है कि मैं अपने बच्चों को मदद करूं, वो
1: मतलब
0: आगे
1: उनकी जो सोच है वो हमेशा पॉजिटिव है। वो ये नहीं जानते कि बच्चा अगर आपसे पैसे मांग रहा है तो उसका कैसे इस्तेमाल
0: करेगा,
1: क्या वाकई में उसकी जरूरत है या अपने किसी बुरी आदत के लिए वो पैसे मांग रहा है, या अपने किसी बुरे शौक को पूरा करने के लिए पैसे मांग रहा है।
0: यही
1: और कभी कभार ऐसा भी होता है कि पैसे मांगने पर, न मिलने पर, हम देखा है कि उन पर अत्याचार होता है, पैसे छीन लिए जाते हैं, या उनको किसी कारणवश तरीके से जो है शारीरिक रूप से भी जो है उनको नुकसान पहुंचाया जाता है।
0: वैसे तो 6 अब्यूजर्स हैं एल्डरली पर। पहला है वर्बल, आप बुरा बात बोलेंगे, ये वर्बल फिजिकल मार खाते हैं, हाथ उठाते हैं अपने बुजुर्ग पर। फर्द है फाइनेंशियल, जो बुजुर्ग उसके पैसे ले लेते हैं, चोरी कर देते हैं, उसके कॉच लेके जाके पैसे निकाल देते हैं। और होता है जो नेग्लिजेंट हैं, बुजुर्गों की ध्यान नहीं देते हैं, उसे एक बगल में रख देते हैं, उनको हेल्थ प्रॉब्लम है तो उनका ध्यान नहीं देते हैं। और सबसे ज़रा इमोशनल, जैसे हम अपने माता जी से प्यार करते हैं तो हम बोलेंगे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो तो मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। इमोशनल ब्लैकमेल ये भी बहुत चलता है कि मैं तुम्हारा बेटी हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान देती हूँ तो मुझे ये चाहिए, तो आप क्या करेंगे? अगर तुम मुझे ये नहीं देंगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, तो वो डर जाते हैं अगर मैं अकेले पर जाऊँगी तो दे दो। तो ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल भी होता है। लेकिन मॉरिशस में अभी सबसे बड़ा अब्यूज़ है फाइनेंशियल। तो डिफरेंट तरीके हैं जैसे पैसे निकालने के लिए अपने बुजुर्ग से। और वैसे तो पैसे नहीं है हमारे बुजुर्ग के पास, जो पेंशन मिलते हैं अभी तो सब चीज
1: मतलब कि उन खर्च हो जाता है।
0: खर्च हो जाता है उनके जो मेडिसिन ही जो वो कीनते हैं वो बहुत अभी एक्सपेंसिव हो गया है, तो उससे पैसे रखने के लिए कितने तरह के जो नुस्खाने हम बोल सकते हैं
1: जी।
0: बच्चे अभी यूज कर रहे हैं ये आप सोच नहीं सकते हैं।
1: बिल्कुल। चलिए, हमारे जितने श्रोता और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें कि कल जो है 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा ये प्रोग्राम आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज खासकर हम वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे पर बात कर रहे हैं। और हमारे बुज़ुर्गों की बात करें तो समय के साथ जो है इनके प्रति जो व्यवहार है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। समय के साथ उनके प्रति जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। और बुज़ुर्गों की बात करें तो वे हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे देश का एक अनमोल हिस्सा है। उनके अनुभव, उनका ज्ञान जो है हमें, हमारे जीवन को दिशा प्रदान करता है। लेकिन अभी समय के साथ हम देख रहे हैं कि उनमें अकेलापन बढ़ता जा रहा है, वो अब्यूज़ का शिकार हो रहे हैं, वो नेग्लिजेंस का शिकार हो रहे हैं। जो हक उन्हें कभी कभार मिलना चाहिए, मतलब कि निजी तौर पर, हम राष्ट्रीय स्तर पर या समाज के स्तर पर नहीं कह रहे, निजी स्तर पर जो हक कभी कभार उन्हें मिलना चाहिए अपने परिवार से, जो प्रेम उन्हें मिलना चाहिए, जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, उसमें देखते हैं कि काफ़ी कमी आ रही है। रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन की काफ़ी कमी आ रही है। तो नाविनी जी, आप ऐसे एनजीओ से जुड़ी हुई है, खासकर बुज़ुर्गों के लिए कार्य करती है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे, जब भी आप फील्ड पर जाती हैं तो मॉरिशस में किस प्रकार के केसेस आपको ज़्यादा नज़र आते हैं बुज़ुर्गों के पर जो हो रहे हैं अत्याचार, उस पर अगर हम बात करें तो?
2: ये हमने ये एनजीओ ही इसीलिए शुरू किया क्योंकि हम जब फील्ड में जाते हैं तो हम देख रहे थे कि जो बुज़ुर्ग हैं वो खुद के अंदर ही सफ़र करके जी रहे हैं। तो हमने कहा, आप ऐसे क्यों जी रहे हैं? वो आपसे ऐसे बर्ताव कर रहा है, आप पुलिस की पास क्यों नहीं जाते हैं? आप अपने दुख को ऐसे ही सफर कर झेल रहे हैं, और कभी कभी वो इतना झेलते हैं कि उनकी मौत तक हो जाती है,
1: बीमार पड़ जाते हैं,
2: स्ट्रेस पड़ जाते हैं। और मैं सोचती हूँ कि जो आदमी शुरू से इतने तकलीफ करके, इतने सैक्रिफाइस करके, इतने हार्ड वर्क करके अपने बच्चों को इधर तक लाया, और आज जब वो उनका जब बुरा वक्त आ रहा है तो बच्चे उसके करीब रहना चाहिए, तो वो ऐसे दौर पर गुजर रहे हैं। तो हमने कहा, नहीं, हम थोड़ा अवेयरनेस करेंगे, उन लोगों को बोलेंगे कि अगर आप 5 बच्चे 10 बच्चे को पाल सके तो आप खुद का ख्याल क्यों नहीं रख सकते हैं? कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम बोलते हैं नहीं, हमको बच्चे चाहिए बुरा वक्त में, जब हम बुरा हो जाएंगे तो हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारे पास हैं। हम क्यों नहीं सोचते हैं कि हो सकता है कल हमारे बच्चे देश में नहीं हैं तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये तैयारी हमारे बुज़ुर्ग नहीं करते।

0: है।
1: हाँ, ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही। कभी कभार ऐसा होता है कि चलो बच्चे यहाँ हैं, नहीं देख रहे, वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन कभी कभार ऐसे होते हैं कि बच्चे अपने बेहतर भविष्य के लिए
0: जी
1: देश के बाहर जाते हैं कामकाज करने के लिए, क्योंकि उनको भी जीवन आगे ले जाना
0: आगे
1: है
0: ले
1: ना।
0: जाना है।
1: क्योंकि तो ऐसे में बुजुर्गों को मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये कि हम बैठ कर उम्मीद करें कि कोई आएगा, हमें देखेगा, हमारा ख्याल रखेगा, उससे अच्छा ऐसा करें कि हम खुद ही अपना ख्याल रखना सीख लें। क्योंकि ये तो हम हमेशा से करते ही आए
0: जी
1: हैं ना।
0: जी जी
1: तो फिर एक उम्र में हो आकर हमें वाकई में लगता है, देखो
0: लगता
1: ना,
0: है।
1: ये तो आम सी बात है, एक ह्यूमन इमोशन कहे या साइकोलॉजिकली हर कोई ऐसा है कि हम थोड़े से कमज़ोर होते हैं, बीमार होते हैं, तो लगता है कि कोई हमारा ध्यान रखे, कोई हमारे लिए कुछ करे, खाने पीने का हमें पूछे। ये मानसिक तौर पर हर व्यक्ति करता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर अपने आप को स्ट्रांग रखना भी ज़रूरी है। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे सामने कैसे हालात आ जाएंगे। कल को हम अकेले पड़ गए तो हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है, यानी कि कुछ ज़रूरी फ़ोन नंबर्स है जो हम अपने पास रखें, कुछ ऐसे ज़रूरी कॉन्टैक्ट्स है जिसके नंबर हमारे पास होने चाहिए, या चलो घर में बच्चे नहीं हैं लेकिन आसपास कोई पड़ोसी है जिसे किसी ने बोल कर रखा है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहना, अगर आपको लगे कुछ ठीक नहीं है तो उनके परिवार को थोड़ा सा बता दे। तो इन सब बातों के अलावा क्या क्या और जो है आप और केसेस देखते, जैसे आपने कहा वो घुट कर जीते हैं, नहीं कहते हैं, इसके अलावा?
0: इसके अलावा जैसे मैंने कहा है, जो अगर आपके आपके पड़ोसी में, गांव में, या आप जहाँ रहते हैं, एक ड्रग एडिक्ट हैं उधर, जो बच्चे हैं, आपको डबल प्रिकॉशन लेना पड़ेगा,
1: जी
0: क्योंकि वो उन्हें खुद अपने तकलीफ से गुजर रहा है वो आदमी,
1: जी
0: तो
1: जी
0: आप उसमें मत इन्वॉल्व मत होइए।
1: जी
0: जब
1: बिल्कुल
0: तक आप सके आप दूर रहिए, क्योंकि आपको, और एक बात मैं स्पर्श करना चाहती हूँ, ये क्या होता है, हमारा बुजुर्ग समझते नहीं हैं कि वो अभी उम्र में हो गए हैं, उनका जो शक्ति है वो थोड़ा कम हो रहा है, उनका जो देखने का, उनका जो सोचने का, जो बातचीत
1: मतलब
0: करने का,
1: फिजिकली वो उतने फिट
0: फिजिकली
1: नहीं हैं
0: फिट
1: उम्र के
0: नहीं
1: हिसाब
0: है,
1: से।
0: और ये कभी कभी वो समझते नहीं हैं, और वो जाके आगे बढ़ जाते हैं
1: मदद के लिए
0: मदद के लिए।
1: जी
0: तो वो क्या है, जब वो आगे बढ़ जाते हैं मदद के लिए, कभी कभी वो खुद
1: मुसीबत में पड़
0: मुसीबत में
1: जाते
0: पड़
1: हैं
0: जाते हैं।
1: जी
0: इसीलिए हम ये शुरू किया है अवेयरनेस करने के
1: जी
0: लिए, समझाते हैं हमारे बुजुर्ग को कि आप क्या हैं, क्या थे, क्या हो गए और क्या होने वाले हैं। तो पहली
1: जी
0: चीज ये है कि आप खुद खुद को अपने आप को देखिए, आप खुद को खुशी रखिए,
1: जी
0: खुश रखिए अपने आप को। हम पूछते हैं उनसे, आपके बड़ा दोस्त कौन है, आपसे सबसे ज़्यादा दोस्त आप किससे
1: सबसे
0: सबसे
1: ज्यादा
0: ज़्यादा
1: करीब है
0: चाहते हैं,
1: जी
0: करीब हैं। कभी कभी वो कहते हैं पत्नी या बच्चे या छोटे बच्चे, तो हम उन्हें समझाते हैं
1: जी
0: कि आप अपने आप के सबसे बड़ा दोस्त हैं।
1: बिल्कुल
0: तो जब आप खुद को खुशी कर रखेंगे,
1: जी
0: खुश रहेंगे, तो बहुत चीज हो
1: बहुत,
0: सकता
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल। और आपने एक दो पॉइंट्स जो जोड़े वो भी वाकई में सोचने जाए, मतलब कि आप जहाँ रहते हैं आपके आसपास का माहौल कैसा
0: कैसा
1: है।
0: है?
1: अगर आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि आए दिन ड्रग के केसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, या कोई ड्रग एडिक्ट आसपास घूम रहा है, या आपको नहीं पता, तो ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान
0: सुरक्षा
1: रखना चाहिए, अनजान लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि बुज़ुर्गों के पास कोई भी मदद के लिए चला जाता है तो वो तो साफ दिल से आपकी मदद के लिए आ जाते हैं, तो पर लेकिन नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति किस नियत से आपकी ओर आ रहा है और किस तरह से आपको हानि या नुकसान पहुंचाता है, पहुंचा सकता है। तो इसलिए खासकर अनजान व्यक्तियों से आप बचकर रहे, जिनको नहीं जानते हैं, मतलब कि उनको खुलकर मिले नहीं या दूरी बनाए रखे। क्योंकि कभी कभार होता है ना कि कुछ लोग कुछ जानकारी लेने के बहाने से आ जाते हैं आपसे, कुछ पूछने या मांगने या बोलने, और वो किस तरह से फिर आप पर कुछ कर दे या कोई आपको नुकसान पहुंचा दे, आपको नहीं पता। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और हम एक और बात मानते हैं कि आजकल बड़े बुजुर्गों की बात करें तो उनके बच्चे तो काम करने जा रहे, छोटे बच्चे तो स्कूल में जा रहे, तो ज़्यादा समय उन्हें अपनों के साथ नहीं मिलता है। लेकिन जैसे आपने कहा वो खुद से दोस्ती कर ले, उसके अलावा वो अपने जैसे लोगों से, जैसे अपने हम उम्र के लोगों से, क्योंकि उनकी कोई सहेली है जो घर के पास रहती है या अन्य घर के परिवार के जो सदस्य है, हम उम्र है तो क्या हुआ, दिन में थोड़ा सा मिल लिए, बात कर लिए, तो आपका समय भी बीत जाता है, आपको अकेलेपन का एहसास नहीं होता है। ये भी बहुत ज़रूरी है।

0: जी अवश्य, आपको खुद को जैसे कनेक्ट करना चाहिए।
1: जी
0: जैसे अभी तो सभी गांव में शहरों में भी एल्डरली के लिए एक एसोसिएशन है, आप जाइए उधर, आप भेंट कीजिए, मैं उधर वो बातचीत करते हैं,
1: एक्टिविटीज
0: होती हैं, और आप अपने आप को जिंदा रखिए,
1: खुश रखिए।
0: ये नहीं कि आप बुजुर्ग हो गए हैं तो हम सिर्फ अब मौत के इंतजार कर रहे हैं, जब मौत आएगा वो आएगा, लेकिन जब तक आप जिंदा हैं आप अपने आप को खुश रखिए, ढूंढिए वो क्या हॉबी है। मैं प्लांटिंग करना चाहती हूँ, मुझे कुत्तों बिल्ली से प्यार है, या आप ढूंढिए वो क्या है कि मैं अपनी टीवी से प्यार करती हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ। मैं अभी एमबीसी को थैंक यू करना चाहती हूँ कि वो इतने डिफरेंट प्रोग्राम आप देते हैं दिन भर में, तो हमारे जो सासू माँ हैं वो उसके टीवी का वक्त होता है, और वो उस वक्त हमें जब हम जाते हैं तो वो बोल देते हैं अभी मत आओ क्योंकि अभी मेरा प्रोग्राम का वक्त होता है। तो मैं जो बोलना चाहती हूँ कि आप वो ढूंढिए, वो
1: मतलब कुछ ऐसा कीजिए जो आपको खुशी देता है ना।
0: हाँ।
1: इससे क्या होता है, आपका अकेलापन दूर होता है। बहुत से लोग हमने ऐसे भी देखे हैं अपने आसपास जो रिटायर होने के बाद या एक उम्र में आने के बाद जहाँ पर अकेलेपन का शिकार हो, उससे अच्छा कुछ सीखने चले जाते हैं ना, क्योंकि हमारे आसपास मॉरिशस में काफी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर लोग जाकर म्यूजिक सीख रहे हैं, योगा क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, वो जो रीजनल सेंटर्स है वहाँ पर बहुत कुछ सिखाया जाता है, बुजुर्गों के लिए काफी एक्टिविटीज होते हैं, योगा वगैरह होता है, हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाते हैं इससे। और उसके अलावा उससे बड़ी बात है कि आप लोगों से मिल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, जब आप बात करते तो आपका मन हल्का होता है, और जब आप अलग अलग जैसे कि लोगों से मिलते हैं तो अलग अलग नई नई बातें सीखने और जानने का मौका मिलता है, तो इससे हमारे मन में जो स्ट्रेस है वो कम होता है ना, डिप्रेशन कम होता है।
0: जी डेफिनेटली, और जैसे मैंने कहा आप अपने आप को खुश रखिए, जब आप अपने आप को खुश रखेंगे तो आप अपने आप जो वक्त है मेडिसिन लेने के लिए, अभी मैं ये दवाई लेती हूँ तो मैं लूँगी, ये नहीं कि मैं वेट करूँगी मेरी बहू आके देगी, मेरे बेटे आके देगी, नहीं, ये मेरा सेहत के लिए है तो मैं खुद लूँगी। अभी डॉक्टर जी ने कहा है सवेरे को ये लेना चाहिए तो लीजिए, वक्त पर खाइए, आप अपने आप को खुश रखिए, नहाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, और जैसे मैं बोल रही हूँ अपने हॉबी को जिए, क्योंकि वक्त कम है आपके पास, जब वक्त कम होता है आपके पास तो ज़्यादा जीना चाहिए। और हम और मोस्ट इम्पोर्टेंट इज प्रिकॉशन, जहाँ आप रह रहे हैं आपकी उस सिक्योरिटी क्या है, आपके घर बंद हैं, जैसे कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं, तो आप बीमार हैं, अभी तो एम्बुलेंस घर पर आते हैं वो आपको लेके जा सकते हैं, आप बीमार हैं फ़ोन कीजिए, फ़ोन नहीं कर सकेंगे तो अभी एक एप्लीकेशन है सिक्योरिटी जो है, आप उसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, वो उससे एक बटन आप बजाएंगे
1: तो हेल्प
0: मिल जाएगा। तो ये सब हैं इस देश में।
1: हम अपने बुजुर्गों की बात करें तो ज्यादातर बुजुर्ग जो है टेक्नोलॉजी से बड़े ही आसानी से जुड़े हैं, तो इस टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करके अपने फोन में ऐसी जरूरी जानकारियां रखें कि अगर आप किसी मुसीबत में पड़ जा रही तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको किसे कॉल करना है या सबसे पहले किससे मदद मांगनी है, तो ये सारी चीजें बहुत आवश्यक होती है। एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे नावीनी जी, कि अगर हम पुरुषों और महिलाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे समाज में किन पर ज्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि आप इतना फील्ड वर्क करती है, उनके साथ कार्य करती है, तो पुरुषों पर महिलाओं पर किस तरह से आप देखती हैं?
0: आप हंसेंगे, हम महिला सब में आगे ही है, तो इसमें भी महिला आगे ही है। जब आप देखेंगे तो पुरुष थोड़ा कम लेकिन महिला ज्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि महिला के जो दिल है वो हम बोलते हैं ना माँ के दिल, तो वो आसानी से इन सब में पड़ जाती है।
1: एग्जैक्टली, और जल्दी ही जो है
0: शिकार हो जाती है।
1: तो चलिए यहाँ पर आज की चर्चा, ये कार्यक्रम आज बुज़ुर्गों पर आधारित है, बुज़ुर्गों पर होने वाले दुर्व्यवहार पर हम चर्चा कर रहे हैं,

0: आज की चर्चा इस प्रोग्राम में आप अभी तक हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाविनी रामनियाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक सोशल वर्कर है और समाज में हो रहे विभिन्न इश्यूज पर वो कार्य करती है और ख़ासकर बुज़ुर्गों को लेकर इनका जो है काफ़ी कार्य होता है और बुज़ुर्गों के ही पर जो है आज हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम बुज़ुर्गों के बारे में बात करें तो किस तरह के कानूनी प्रावधान हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हक के लिए?
1: जी, मैंने अभी बोली थी वो सिक्योरिटी है, एक आप है आप पे फोन डालने के लिए
0: जी।
1: तो आप अगर वो नहीं कर सकते हैं तो 999 नंबर आप पुलिस को फोन कर सकेंगे
0: जी।
1: तो वो आपका मदद करेंगे
0: जी।
1: फिर ये भी जानना चाहिए कि पुलिस में एक ऑफिसर डेडिकेटेड हैं जो एल्डरली के लिए हैं
0: okay.
1: तो वो जो भी उस जगह में, उस विलेज में या गांव में या जहां आप रहते हैं,
0: अगर पुलिस स्टेशन में,
1: हाँ, अगर आप अकेले रहते हैं तो आपका नाम उधर दर्ज कर देना तो वो आपको फोन करेंगे या विजिट करेंगे, कम से कम महीने में एक बार
0: okay.
1: वो विजिट करते हैं, सब चीज ठीक है, आप अच्छे हैं
0: okay,
1: एक सर्वे जैसे करते हैं
0: है।
1: उसका काम है, डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर है, उसका काम है, वो आते हैं आपको देखते हैं। और

0: हम हमेशा कहते हैं आप कनेक्ट रहना चाहिए, आप अकेले मत रहिए, फोन यूज कीजिए और जो एसोसिएशन है उन लोगों से भेंट कीजिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स आप पर भी निर्भर होता है। ये नहीं है कि जब आप अभी बुजुर्ग हो गए हैं तो आपके कोई भी राइट्स नहीं है, नहीं, जो भी राइट हमारा है आपका भी उतना ही हक है, सबका समान है इस देश में। और जो और आप चुप मत रहिए, अगर आप पर बुरा व्यवहार हो रहा है तो बोलिए, आगे बढ़िए, बोलिए, क्योंकि जो कानून है वो वो बोलता है कि अगर आप पर बुरा
1: अत्याचार
0: हो रहा है उस व्यक्ति को 2 साल कैद
1: जो कर रहा है,
0: जो कर रहा है, और 25,000 जुर्माना
1: पे
0: करना पड़ता है। तो ये सब लॉ है इस देश में, इसीलिए हम आपको एनकरेज करते हैं, आप गुद गुद के मत मरिए, आप आइए बोलिए।
1: पर कभी कभार ऐसा होता है ना, जब हम खासकर अपने बुजुर्गों की बात करते हैं, जैसे कि अगर उन पर कोई अत्याचार हो रहा है खासकर उनके बच्चों द्वारा या उनके अपनों द्वारा, तो वो अपनों के बारे में सोचकर चुप रह जाते हैं और सहते रहते हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपको अपने हक के लिए खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपकी ओर से बोलने वाला कोई नहीं है ना। अगर क्योंकि देखिए ना, सरकारी स्तर पर बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, संस्थाओं की बात करें, तो हर कोई यहाँ पर आपकी मदद के लिए है, आपकी सहायता के लिए है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप नहीं बोलेंगे तो उनको नहीं पता चलेगा, वो आपकी और मदद के लिए नहीं आएंगे। तो इसलिए अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको अपने हक के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है,
0: क्योंकि जब आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा?
1: कौन लड़ेगा? बिल्कुल सही कहा।
0: इसलिए मैं शुरुआत से बोल रही हूँ, आप अपने आप को खुश रहना सीखिए, कैसे मैं अपने आप को खुश रखना कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रिकॉशन ले सकता हूँ, अपनी सिक्योरिटी, अपने हक क्या हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा है, अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, अथॉरिटी इवन पुलिस या कोई कुछ आपका मदद नहीं कर सकेगा। ये बात होता है।
1: एक प्रश्न मेरा आपसे है कि आप तो ऐसे एनजीओ से साथ काम करते हैं, तो जितने सारे केसेस आपके पास आते हैं, क्या वो निजी व्यक्ति ही आपको कॉल करते हैं या किसी और द्वारा आपको बताया जाता है कि कोई परेशानी में है या कोई दुविधा में है? आपको कैसे पता चलता है?
0: दोनों
1: तरीके से।
0: जब हम अवेयरनेस करते हैं जो हो सकता है कि उधर वो हमारे अप्रोच करते हैं और बोलते हैं बेटी मेरा ये तकलीफ है, आप देखिए थोड़ा बहुत, और मैं फ़ोन नंबर भी छोड़ती हूँ, तो बाद में हो सकता है वो फ़ोन नहीं करेंगे लेकिन उनके जो पड़ोसी हैं वो फ़ोन करें, वो बताएंगे। ऐसे कॉल मिलता है, और भी कॉल मिलता है, जैसे उन लोगों ने सुना है कि हम मदद कर रहे हैं, हम मदद क्या मदद कर सकते हैं, हम उन लोगों को अथॉरिटी के जो जो उनका मदद कर सकेंगे उनसे कनेक्ट करते हैं।
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल, मतलब कि हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। किस तरह से एक व्यक्ति अगर मुसीबत में है या उसके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, तो किस तरह से सब एक साथ आकर उसकी मदद कर पाए, उसका हक जो है उसे दिला पाए। तो चलिए, इसी के साथ हम कार्यक्रम के लगभग अंत तक आ गए हैं। और बुजुर्गों की बात करें तो हमारे आज के चर्चा कार्यक्रम से काफ़ी बड़े बुजुर्ग जुड़ते हैं। आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आप अवश्य अपने लाभ उठाया होगा, और आपसे यही हम कहेंगे कि अपने हक के लिए ज़रूर आवाज़ उठाइए। अगर आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके बारे में बोलिए। पहले तो चलिए परिवार से बात करने का प्रयास करें कि ये ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपको आपका हक नहीं दिया जा रहा है, तब आपके लिए आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे नाविनी जी, क्या संदेश आप हमारे बुज़ुर्गों को देना चाहेंगे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं?
0: मेरा संदेश रहेगा कि आप चुप मत रहिए, आगे बढ़िए, अपने हक के लिए आप बोलिए, अगर आप पर कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो बोलिए, खुश रहिए, अपने आप की मदद कीजिए, पहले अपने आप की मदद करेंगे तो बाद में आप
1: और
0: की मदद कर सकते हैं। ये और हम आपके आभारी हैं, जहाँ पर हैं जैसे हैं हम आभारी हैं। अगर आपने इतने सैक्रिफाइस नहीं किया था, आप हमारे लिए नहीं सोचते, तो

0: हम अभी तक
1: हम यहाँ नहीं,
0: नहीं होती.
1: बिल्कुल.
0: तो आप अपने आप को प्राउड फील कीजिए कि आप किधर इस देश को ले जा रहे हैं, कैसे कैसे इस देश को तरक्की करा रहे हैं. तो इसलिए ये ठीक नहीं रहता है कि आप दुख में हैं. आप हमें बुरा लगता है कि हम सोचते हैं कि हमारे जो जो जो नीम है वो हिल रहा है,
1: कमज़ोर
0: हो रहा है. तो हम आपको बहुत पसंद करते हैं. आप आगे बढ़िए, हमारा हिम्मत बढ़ाइए और आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ सकते हैं.
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिसेज नाविनी रामनियाल जी. आप हमारे साथ जुड़ी और आज के इस विषय को लेकर आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी. जो कार्य कर रही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपको हम ढेर सारी शुभकामनाएँ देंगे. और यहाँ पर जाते जाते हमारे सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद. बुज़ुर्ग जो है, जैसे इन्होंने कहा, हमारे समाज की नींव है, तो उनकी रक्षा करना, उनका सम्मान करना, उनसे प्रेम करना, ये कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य है. तो इस कर्तव्य का पालन हम सबको करना चाहिए. और जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी प्रोडक्शन टीम को, हमारी टेक्निकल टीम को, जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम को आप देख पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं. रितेश महाबिया जी का धन्यवाद, कादिया और हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुषा को भी हम धन्यवाद देंगे. आज के लिए बस इतना ही. जल्द आप सभी से फिर मुलाकात होगी. हमें आज्ञा दीजिए. नमस्कार आप सभी को.

0: समाचार लेकर आगे स्टूडियो में यश राणा। नमस्कार
1: सभी को। नमस्कार, सुनिए संक्षिप्त समाचार। राष्ट्रीय बजट 2026-2027 की प्रस्तुति नजदीक है। मंत्री अरविंद बुलेल ने प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं पर आधारित एक प्रेस सम्मेलन लगाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने चाहिए। उनके अनुसार राजकोष और मुद्रा नीतियां वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं और टिकाऊ विकास तथा पर्यटन, सेवा और वित्तीय

0: क्षेत्रों के साथ साथ कृषि क्षेत्र को फिर से गति देना सरकार की कुछ प्राथमिकताओं में शामिल है। मॉरिशस में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। नेशनल लैंड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा 8 जून को जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मई 2026 के दौरान 1,101 नए वाहनों का पंजीकरण किया गया। आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष जनवरी से मई के बीच देश भर में कुल 7,361 गाड़ियों को पंजीकृत किया गया, जिनमें नई और सेकंड हैंड दोनों प्रकार के वाहन शामिल हैं। मोटरसाइकिल की संख्या भी बढ़ रही है। इसी अवधि में 3,206 मोटरसाइकिल्स का पंजीकरण भी किया गया है। कुल मिलाकर सभी जनवरी से मई 2026 तक 12,962 नए और पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन पूरा किया गया, जो देश के ऑटोमोबाइल बाजार की मजबूती को दर्शाता है। मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के रेडियो चैनल RMA को आज एक साल पूरा हो गया है। कूल FM को रिब्रांड करके इसे RMA का नया नाम और रूप दिया गया। पूरे उत्साह के साथ आज इस रेडियो चैनल की टीम इस पहले साल की खुशियां मना रही है। अपने प्रसारण की शुरुआत के एक साल बाद राष्ट्रीय रेडियो चैनल इस खास अवसर को पूरे दिन खास कार्यक्रमों के साथ मना रहा है। विदेश समाचारों में वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफिकेशंस जारी हैं। आज सुबह सऊदी अरब की टीम का सामना उरुग्वे के साथ हुआ। ये मैच ड्रॉ रहा 1-1। न्यूजीलैंड की टीम ईरान से आज सुबह टकराई और स्कोर रहा ड्रॉ 2-2। और रात 11 बजे आप देख पाएंगे फ्रांस की टीम को, जो खेलेगा सेनेगल के खिलाफ। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: नमस्कार श्रोताओं, ये रेडियो मॉरिशस का प्रसारण है। AM 2 प्रसारण पर हमारा ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। मीडियम अवार्ड 19 किलोहर्ट्ज़ पर आप हमें सुन पा रहे हैं। पुनः रत्ना का सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें कर जोड़ अभिवादन है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 10:04। आइए आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। भक्ति धारा कार्यक्रम के अंतर्गत ठीक 10:15 आप सुन पाएंगे वेद सुधा का कार्यक्रम आचार्य सुदेश बद्री जी द्वारा। मंगलवार का दिन है, मंगलमय वातावरण को बनाते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं इस प्रथम गणेश भजन के साथ।

0: वेदों पर आधारित कार्यक्रम, आइए सुनिए वेद सुधा।
1: वेद सुधा कार्यक्रम के समस्त आदरणीय श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार निर्धारित की गई है। सर्वप्रथम हम वेद पाठ एवं उसका भावार्थ सुनेंगे, तत्पश्चात एक मधुर भजन का आनंद लेंगे और अंत में एक वैदिक मंत्र की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। तो आइए आरंभ करते हैं वेद पाठ से। ॐ एनावो अग्निं नमसोर्जो न पातमाहुवे प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं विश्वस्य दूतमं मृतम्।

हे ज्योति स्वरूप प्रभु, मैं इसलिए श्रद्धा भक्ति से तेरे प्रेम में मग्न हुआ तुझे अपने हृदय मंदिर में बुलाता हूँ, जिससे तेरी अपार कृपा से मेरी शक्तियाँ मेरे भीतर ही वर्तमान रहती हुई मुझे बलवान

उपोषु जातमर्त्यस्य वर्धनप्निम् नक्षन्तु नो गिरः। जिस प्रभु की चाहना हृदय में लिए हुए उपासक सहज भाव से ब्रह्मचर्य आदि कठोर व्रतों का पालन करते हैं, उन सब पथों के जानने वाले पथ प्रदर्शक व भीतर बाहर की सर्वविध चेष्टाओं को जानने वाले सर्वज्ञ प्रभु को हमने पा लिया है। वह अब हमें इतना समीप लगता है कि उतना निकट अब हमें कोई और भासता नहीं होता। ओम प्रयतु ब्रह्मणस्पति प्रदिव्येतु सुन्द्रिता अच्छा वीरं नर्यं पक्तिराधसं देवायज्ञं नयन्तु नः। संसार को हम बहुत देख चुके हैं, वेद भी हम बहुत पढ़ चुके हैं, प्रवचन भी हम बहुत सुन चुके हैं, बस अब तो हृदय में यही अभिलाषा है कि वेदपति एवं जगतपति प्रभु ही हमें प्राप्त हो, उसी का दर्शन हो। ओम सखायस्त्वा वव्रिमहे देवं मर्ता स ऊतये अपाम नपातं सुभगं सुदंदसं सुप्रतुर्मिमनेहसं। हमें चाहिए कि हम अपने को मरण धर्मा समझें, संसार से जाने वाला समझें, ऐसा समझकर अपने गुण कर्म स्वभावों के अनुकूल साधकों का ही हम संग करें, अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने को गतिमान अर्थात ज्ञान आचरण और सत्प्राप्ति से युक्त करने के लिए उनके साथ मिलकर हम उस प्रभु का वरण करें जो हमारी शक्तियों को पतनोन्मुख होने से बचाता है। ओम शांति शांति शांति।

श्रोताओं, भारतीय वैदिक संस्कृति में मंत्रों का स्थान अत्यंत उच्च माना गया है। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, आचार विचार और आध्यात्मिक उन्नति के मूल स्रोत हैं। वेद मंत्र मानव जीवन को प्रकाश प्रदान करते हैं तथा मनुष्य के अंतःकरण को शुद्ध बनाकर उसे ज्ञान, सत्य, सदाचार के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। प्रत्येक मंत्र के भीतर गहन दार्शनिक, नैतिक तथा व्यावहारिक रहस्य निहित होते हैं। इन्हीं महान मंत्रों में एक मेधावर्धक मंत्र अत्यंत प्रसिद्ध है। ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्नि मेधाविनम कुरु स्वाहा। श्रुताओ, यह मंत्र विशेष रूप से बुद्धि, स्मरण शक्ति, विवेक, ज्ञान तथा मानसिक सामर्थ्य की वृद्धि के लिए प्रार्थना करता है। यह मंत्र मनुष्य को केवल सांसारिक विद्या ही नहीं बल्कि आत्मिक प्रकाश और चरित्र निर्माण की प्रेरणा भी देता है। आज के युग में जब विद्यार्थी, शिक्षक, वैज्ञानिक, शोधकर्ता तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग मानसिक तनाव, अस्थिरता तथा स्मरण शक्ति की कमजोरी से जूझ रहे हैं, तब यह वैदिक मंत्र अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। इस मंत्र का चिंतन और उसके भावों का जीवन में पालन करने से मनुष्य के भीतर मेधा, प्रतिभा, धैर्य, एकाग्रता तथा आध्यात्म विश्वास का विकास होता है। यह मंत्र हमें बताता है कि वास्तविक ज्ञान केवल पुस्तकीय जानकारी नहीं है बल्कि ऐसा विवेक है जो मनुष्य को सत्य और असत्य में भेद करना सिखाए। मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, जिस श्रेष्ठ मेधा अर्थात प्रखर बुद्धि, स्मरण शक्ति और विवेक की उपासना विद्वान पुरुष तथा महान ऋषि मुनि करते हैं, उसी मेधा से मुझे आज ही संपन्न कीजिए। हे ज्ञानदाता, मुझे मेधावी, विवेकी, ज्ञानवान तथा सत्य का अनुसरण करने वाला बनाइए। श्रोताओ, सामान्य रूप से लोग मेधा का अर्थ केवल बुद्धि या स्मरण शक्ति समझते हैं, किंतु वैदिक दृष्टि में मेधा का अर्थ बहुत व्यापक है। मेधा वह शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य किसी विषय को समझता है, उसे धारण करता है, उचित समय पर स्मरण करता है तथा जीवन में उसका सदुपयोग करता है। जिस व्यक्ति के पास केवल जानकारी हो परंतु विवेक न हो, उसे वास्तविक मेधावी नहीं कहा जा सकता। वैदिक संस्कृति में मेधा का संबंध नैतिकता, चरित्र, सत्यवादिता तथा आध्यात्मिक उन्नति से भी है। मेधा के मुख्य स्वरूप इस प्रकार समझे जा सकते हैं, जैसे ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता, सुनी हुई बात को स्मरण रखने की शक्ति, सत्य और असत्य का विवेक, समस्या का उचित समाधान करने की क्षमता, धैर्य और मानसिक स्थिरता, उच्च नैतिक विचार, आध्यात्मिक चेतना। अतः यह मंत्र केवल परीक्षा में सफलता का मंत्र नहीं है बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का मंत्र है। श्रोताओ, मंत्र में कहा गया है कि जिस मेधा की उपासना देवगण और पितर करते हैं, यहां देव शब्द का अर्थ प्रकाशमान, विद्वान, श्रेष्ठ और गुणवान व्यक्तियों से है। वे लोग जो समाज को ज्ञान, सत्य और सदाचार का मार्ग दिखाते हैं, वे लोग देवता कहलाते हैं। इसी प्रकार पितर शब्द केवल मृत पूर्वजों के लिए नहीं है। वैदिक साहित्य में पितर उन महान ऋषियों, आचार्यों और पूर्वज विद्वानों को कहा गया है
जिन्होंने मानवता को ज्ञान प्रदान किया है। इस प्रकार मंत्र यह बताता है कि महान विद्वानों और ऋषियों ने भी मेधा को अत्यंत महत्व दिया। यदि वे भी मेधा की उपासना करते थे तो सामान्य मनुष्य को तो और अधिक प्रयत्न करना चाहिए। श्रोताओ, यह अग्नि का अर्थ उस दिव्य ज्ञान शक्ति से है जो ज्ञान के अंधकार को दूर करती है। जैसे अग्नि अंधकार हटाती है, वैसे ही ज्ञान मनुष्य के जीवन से मूर्खता और ब्रह्म को समाप्त करता है। श्रोताओ, मानव जीवन में केवल शारीरिक शक्ति पर्याप्त नहीं होती। यदि बुद्धि शुद्ध न हो तो मनुष्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां ज्ञान का दुरुपयोग होने से विनाश हुआ है। श्रोताओ, इसी कारण प्राचीन भारत में ऐसे महान विद्वान उत्पन्न हुए जिन्होंने गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, दर्शन, व्याकरण और विज्ञान में अद्भुत कार्य किए। उनकी मेधा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं थी, बल्कि जीवन उपयोगी विवेक थे। वैदिक संस्कृति में ज्ञान और मेधा की प्रार्थना करना सिखाता है, जो उसे आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाए। जब मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है तब वह अहंकार से दूर रहता है, लोभ और क्रोध को नियंत्रित करता है, सत्य का अनुसरण करता है, परमात्मा में श्रद्धा रखता है, समाज सेवा करता है। इस प्रकार यह मंत्र मनुष्य को दिव्य जीवन की ओर प्रेरित करता है। यह मंत्र केवल धार्मिक अनुष्ठान के लिए नहीं है, इसका उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जा सकता है। अध्ययन से पहले, यज्ञ के समय, विद्यालयों में प्रार्थना के रूप में, ध्यान और योगाभ्यास के समय, महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, मानसिक तनाव के समय, प्रतिदिन प्रातःकाल, सायंकाल, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन शांत मन से इसका जप करे तो उसके मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। यह वैदिक मंत्रों के उच्चारण में ध्वनि विज्ञान का भी महत्व है। संस्कृत भाषा की ध्वनियों वैज्ञानिक मानी गई है। जब मनुष्य शुद्ध उच्चारण के साथ मंत्र बोलता है तब उसका प्रभाव मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। ओम का उच्चारण मन को शांत करता है। मेधा शब्द बुद्धि की प्रेरणा देता है। अग्नि शब्द भीतर उत्साह और ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस प्रकार मंत्र का जाप मानसिक संतुलन स्थापित करता है। श्रोताओ, यह महान वैदिक मंत्र मानव के लिए अमूल्य प्रेरणा प्रदान करता है। यह मंत्र केवल बुद्धि की वृद्धि की प्रार्थना नहीं है, बल्कि संपूर्ण व्यक्ति अर्थात व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। इसमें ज्ञान, विवेक, चरित्र, आत्मिक उन्नति तथा समाज सेवा की भावना समाहित है। आज के युग में जब मानवता

मानसिक अशांति, नैतिक पतन और तनाव से जूझ रही है, तब यह मंत्र प्रकाश स्तंभ के समान मार्गदर्शन करता है। यह हमें सिखाता है कि वास्तविक उन्नति केवल भौतिक साधनों से नहीं बल्कि शुद्ध बुद्धि और सदाचार से होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह इस मंत्र का श्रद्धा, समझ और नियमितता के साथ जप करें तथा उसके आदर्शों को जीवन में उतारे। यही इस मंत्र की वास्तविक उपासना है और यही मानव जीवन की सच्ची सफलता भी है। आदरणीय श्रोताओं, आज का कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर है। हमें विश्वास है कि वेद मंत्र की व्याख्या ने आपके जीवन में सकारात्मक प्रेरणा प्रदान की होगी। इस कार्यक्रम को सजाने हेतु श्रीमती अंजू जी का विशेष धन्यवाद। आप सभी का स्नेह और श्रवण हमारे लिए अमूल्य है। पुनः एक विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।

तो श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम में पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं और वेद सुधा कार्यक्रम के लिए आचार्य सुदेश बद्री जी को हृदय की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं उनके विचारों के लिए, उनके मधुर भजनों के लिए। और पुनः आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है मनुष्य की प्रसन्नता। जिस मनुष्य ने प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया, उनका जीवन सार्थक हो गया। और प्रसन्नता कहीं बाहर पाई नहीं जाती, ये हमारे मन में, हमारे मन की एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्थिति है जो केवल नेत्रों को बंद करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं। मन की संतुष्टि ही आपको जीवन में प्रसन्नता प्राप्त करवा सकती है।

श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। अर्थात जब तक मनुष्य के

उनमें काम, क्रोध, अहंकार और लालच ये भरा हुआ है, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अधिक अंतर नहीं होता, दोनों ही एक समान। मनुष्य को जीवन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को ही त्याग करना है, तब जाकर हमें सही रूप में ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। जब तक हम इस माया जाल में, इस जंजाल में फंसे रहेंगे और इस नकारात्मक भावनाओं का चश्मा हमारे आंखों पर चढ़ा रहेगा, हमें ईश्वर के दर्शन कभी प्राप्त नहीं हो सकते।

राम बढ़ाए सौ बढ़े, बल से बढ़े न कोई। कोई व्यक्ति अपने बल से नहीं बढ़ सकता। जब राम बढ़ाते हैं तो झोपड़ी भी महल बन जाती है। जानकी नाथ जिसकी सहायता करते हैं उस पर कभी किसी की कुदृष्टि नहीं पड़ सकती। जब ईश्वर है आपकी सहायता करने के लिए तो आपको किसका डर है।

मन सचा तो बस ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो ही जाते हैं। हम तो यही कहेंगे जाते जाते कि राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान, वह सुंदर महल किस काम का जहां भक्ति नहीं भगवान। बस अर्थात यही है कि वो महल किस काम का जहां भगवान का नाम ना हो, उससे तो झोपड़ी भली जहां भगवान का नाम दिन रात मनुष्य लेता है। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे हनुमान जी की इस आरती के साथ। 11 बजे के समाचारों के बाद आप विविध भाषाओं के कार्यक्रमों का आनंद उठा पाएंगे। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति, फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट संक्षिप्त समाचार के साथ स्टूडियो में आ गए आशनाओं से मिलते हैं। नमस्कार
1: सभी को। नमस्कार, सुनिए संक्षिप्त समाचार। मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के रेडियो चैनल RM1 को आज एक साल पूरा हो गया। कूल FM को रिब्रांड करके इसे RM1 का नया नाम और रूप दिया गया था। पूरे उत्साह के साथ आज इस रेडियो चैनल की टीम इस पहले साल की खुशियां मना रही हैं। अपने प्रसारण की शुरुआत के एक साल बाद राष्ट्रीय रेडियो चैनल इस खास अवसर को पूरे दिन खास कार्यक्रमों के साथ मना रहा है। वित्तीय साल 2026-2027 का बजट पेश किए जाने में अब केवल 3 दिन बचे हैं। ऐसे में भूमि एवं आवास मंत्रालय ने समाप्त हो रहे वित्तीय साल का ब्यौरा पेश किया। मंत्री शकील मोहम्मद ने इस दौरान किए गए कई महत्वपूर्ण सुधारों पर प्रकाश डाला। इनमें योग्यता के लिए आय सीमा को बढ़ाना, परिवारों को दी जाने वाली सहायता को और मजबूत बनाना आदि शामिल हैं। मॉरिशस में वाहनों की संख्या बढ़ रही है। नेशनल लैंड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा 8 जून को ताज़ा आंकड़ा जारी किया गया। इस

0: के अनुसार मई 2026 के दौरान 1101 नए वाहनों का पंजीकरण किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से मई के बीच देश भर में कुल 7361 गाड़ियों का पंजीकरण हुआ और 3206 मोटरसाइकिल्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है। कुल मिलाकर जनवरी से मई 2026 तक 12962 नए और पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। विदेश की खबरों में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि इस समझौते पर पूरी जानकारी जल्द ही आम की जाएगी। इस बीच अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी समझौते के कुछ प्रमुख पहलुओं की जानकारी दी है। शुक्रवार को जिनीवा में समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसी दिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को फिर से खोल दिया जाएगा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: घड़ी मिला लीजिए। इस समय दिन के ठीक 11:03 हुए हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति पर नज़र डालते हैं। ये विज्ञप्ति है जुकमा यूनियन सेंचुबैन और स्टाफ क्वार्टर्स यूनियन सेंचुबैन के निवासियों के लिए। गुरुवार 18 जून को सुबह 9 से लेकर दिन के 3 के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आपने ध्यान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम उर्दू भाषा में। पेशकश है सैयदा सुबाई की।
3: शम्मे फरोज़ा।

आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ान रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समात फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, बयान, हम्द, नातो सलाम और आपके पैगामात। ताखिर ना करते हुए आइए सुकून कल्ब के लिए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

है दीन, खिदमत का नाम है दीन, एहसान का नाम है दीन, दूसरों को खूबियां बांटने का नाम है, दूसरों की मुश्किलात में साथ देने का नाम है दीन, गिरे हुए को उठाने का नाम है दीन, इंसानियत फैलाने का नाम है दीन, एक राहत का नाम है। मैंने करबला की इस पैगाम को सुनाने के लिए जो ज़रिया बनाया है सूरह दहर 76 सूरा नंबर है, और वैसे इसका एक नाम सूरह इंसान भी है। इसकी आयत नंबर 9 जिसकी मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया है, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की खुशनूदी के लिए, इससे पहले वाली जो आयत का हिस्सा है वो है वो युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। क्या मतलब है? अल्लाह के मोहब्बत में और वो अल्लाह की मोहब्बत में, युतइमून अत्ताम और वो अल्लाह की मोहब्बत में गरीब यतीम और खैदी को खाना खिलाते हैं। मिस्कीनों गरीब यतीमों यतीम असीरों कैदी को खाना खिलाते हैं। ये किस ग्रोह का तस्करा हो रहा है? वो कौन अफराद हैं, वो कौन शख्सियतें हैं जो यतीम पर दस्त शफ़क़त, असीर पर रहम व करम, गरीबों का साथ देने वाली ज़वात मुक़द्दसा कौन है? ये वो हस्तियां हैं कि जो कायनात के लिए नमूना हैं, ये वो हस्तियां हैं कि जिनके यादें, जिनके तस्करे महफिल को नूरानी नूर अता करते हैं, इनकी मोहब्बत गुनाहों का खात्मा है, इनसे वाबस्तगी राहत का नाम है। दुनिया की मोहब्बतों में इंसान गुनहगार होता है, दुनियावी लोगों के साथ जो ज़िंदगी गुजारते हैं वहाँ से ख़ताओं का इम्कान है, लेकिन ये वो हस्तियाँ हैं जिनका तवस्सुल, जिनकी वाबस्तगी इंसान को सुकून अता करती है, अच्छी ज़िंदगी अता करती है। ये वो हैं कि जो गरीब के करीब होते हैं, ये वो हैं जो यतीम पे दस्त शफ़क़त फेरते हैं, ये वो हैं जो किसी कैदी को उसकी मुश्किलात से नजात देते हैं। मैं एक वाक़या तबर्रुक के तौर पे आपकी ख़िदमत पे पेश करना चाहता हूँ ताकि इन हस्तियों की पहले मारिफत हो, फिर मैं करबला की तरफ आपको लेके चलूँ। तारीख़ बताती है कि हज़रत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वो जो यतीम परवर थे, वो जो गरीबों का ख्याल रखना, कहते हैं कि आपकी शहादत के बाद आपके दोनों फर्जंदान आ रहे थे अपने घर की तरफ, बैतुशरफ की तरफ, रास्ते में किसी खंडर में एक गरीब के मुफलिस के कराहने की आवाज़ आई, तो आप उसके करीब गए उस खंडर के, तो देखा एक बहुत परेशान हाल मुसीबत ज़दा वहाँ करहा रहा है, परेशान है, भूखा लग रहा है। उसके करीब गए, बैठ गए और पूछा कि भाई खैरियत तो है? जैसे ही सलाम हुआ तो सलाम और कलाम के बाद खैरियत होने लगी, तो उसने शिकायत की कि आका आप 3 दिन से कहाँ चले गए थे और आपने मुझे मेरा ख्याल नहीं किया, मैं कितना मुंतज़िर था। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने कहा हम तो अभी आए हैं, पहली बार तेरे सामने आए हैं और 3 दिन की तो बात कर रहा है, समझ गए किसके लिए कह रहा है। उसने कहा कि नहीं, आप तो रोज़ आते थे, 3 दिन से नहीं आए। कहा वो हम नहीं थे, वो ज़ाती गिरामी कोई और थी। अच्छा ये बता कभी उनसे तूने पूछा नाम? तो उस गरीब ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप ही थे। कहा नहीं हम नहीं थे, वो और थे। तुमने उसका तारुफ पूछा? तो इसने कहा हाँ, वो रोज़ जब मुझे रोटी ला के देते तो मैं उनसे पूछता कि आप कौन हैं, तो वो मुस्कुरा के कहते कि मैं एक गरीब हूँ, अना गरीब हूँ जालसा गरीबिन, मैं ये गरीब हूँ जो गरीब के पास बैठा हुआ हूँ। उन्होंने हमेशा ये कह के टाल दिया मैं ये गरीब हूँ,

करीब के पास बैठा हुआ हूँ। हजरत ये कौन सी ज़ात थी? इमाम हसन हुसैन ने कहा, वो कोई और नहीं, वो बाबा अली मुर्तज़ा थे जो शहीद हो गए 3 दिन पहले। उनके सर पे ज़रबत लगाई गई और आज उन्हें ले जाके सिपर्द खाक किया गया। वो बेहोश हो गया, रो के कहने लगा कि आका अब इस दुनिया में जी के क्या फ़ायदा, मुझे पता ही नहीं था वो अली की ज़ात थी। मैं तो समझा कोई एक मेहरबान कोई शख्स है, लेकिन ये तो वो मेहरबान शख्स हैं जो वक्त के इमाम भी थे और इतना ख्याल रखते थे। ये वो शख्सियतें हैं कि जिन्होंने कभी किसी गरीब के लिए ये नहीं कहा कि तुम गरीब हो और हम तुम्हारे अमीर हैं। इस तरह से गरीबों के साथ, मुफलिसों के साथ ज़िंदगी करने वाले ज़वात मुक़दसा को मोहम्मद व आले मोहम्मद और अहले बैत अतहार कहा जाता है। और अज़ीज़ान गिरामी, मैं क्या अर्ज़ करूँ कि इस वाक़े में जहाँ आप इस क़ुरान की इस आयत को आप पढ़ रहे हैं, ये वाक़िया क्या है? हसनैन अलैहिमुस्सलाम मरीज़, यानी ये भी एक इल्लत होती है, इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं कि जो किसी मर्ज की शिफा बख्शने वाली, अल्लाह ने जिनके हाथ और निगाहों में वो कमाल पैदा किया कि जिसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दें और रख दें और शफ़क़त करें तो वो उसका मर्ज़ दूर हो जाए, लेकिन उनके लिए ये अमराज यानि अलील होना। तो उस वक़्त जनाब फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम ने मन्नत मानी कि अगर मेरे बच्चे सेहतमंद हो जाएं तो मैं रोज़ा रखूँगी, 3 दिन का रोज़ा। और तारीख़ ने लिखा कि आपको जब सेहत मिली तो रोज़े को रखा गया। जनाब ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा ने और अली मुर्तज़ा और हसनैन अलैहिस्सलाम जनाब फिज़ा ने, और उस वक़्त ये आयत नाजिल हुई थी। कब? कि जब आपके इफ्तार का वक्त आया तो पहले दिन आप इफ्तार करने बैठे तो वो मिस्कीन आया, आपने रोटियाँ दी तो आपके देते हुए देख कर पूरे घर वालों ने दिया। फिर पानी से और दीगर चीज़ों से आपने इफ्तार किया। फिर दूसरा रोज़ा था तो फिर यही हुआ कि जब इफ्तार पे बैठे तो यतीम ने आवाज़ लगाई, तो फिर आप ज़हरा बीबी ने दिया सलवातुल्लाह अलैहिस्सलाम, तो सब ने देना शुरू किया। फिर तीसरा दिन आया तो फिर वही रोज़े का आखिरी मन्नत वाला रोज़ा, इफ्तार करना चाहते हैं कि फिर यतीम असीर ने आवाज़ लगाई तो आपने कनीज से कहा खोलो पूछो क्या है, देखा रिस्क के लिए, तो आपने अपनी रोटी क्या दी, सब ने दिया। अब यहाँ एक नसीहत हमें मिलता है, वो ये है कि जब ये ज़हरा बीबी ने दिया और फिर जब पीछे अली मुर्तज़ा और इमाम हसनैन की रोटी जा रही थी तो आपको रोकना चाहिए था, मैंने दे दिया है और आपको देने की ज़रूरत नहीं है, अब हम बकिया रोटी को बैठ के खाते हैं या कनीज की रोटी को रोक लेते। लेकिन यहाँ ये वो घराना है जो हमें दर्स देता है कि जब तुम अपने लिए नेकी करो और दूसरा भी अपने लिए नेकी कर रहा तो उसे रोको नहीं, नेकी हर एक को करना चाहिए, हर एक को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि नेकी से ये कह के मैंने दे दिया तुम्हें देने की ज़रूरत है, नहीं नहीं, जो देगा उसे अल्लाह ताला जज़ा देगा। और जब ये तीनों दिन मिस्किन और यतीम और असीर को ये दे चुके तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की। क्या नाज़िल की? व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। बावजूद ये है कि उस ग़िज़ा की उन्हें ज़रूरत है, वो खाना चाहते हैं, वो अब इस वक्त ये ग़िज़ा, ज़ाहिर सी बात है इफ्तार की ग़िज़ा बहुत मुहिम होती है, आदमी सब दे देगा वो इस वक्त का वो इफ्तार नहीं देगा, लेकिन ये वो हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने अपने मन्नत की पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन उन्होंने अपनी ग़िज़ा दे दी। और साथ में इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, कि हम तुम्हें सिर्फ़ अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए खिलाते हैं, हम तो तुमसे ना तो कोई बदला चाहते हैं और ना शुक्र चाहते हैं, कहाँ ढूंढ के लाओगे? आज की दुनिया अगर खिलाने के बाद अगर आप शुक्र भेजे बग़ैर चले जाएं तो आइंदा आपकी दावत नहीं होगी। और दूसरे के आप थैंक्स कहें उसके बाद फिर जब मिलें तो कहें, अगर ये सब कुछ नहीं रखते तो समझेंगे कि यह एहसान फरामोश है। लेकिन ये वो
फ़खराना है कि जो देने के बाद शुक्रिया भी नहीं चाहता और ना ही जज़ा चाहता है। जज़ा का मतलब क्या है? यह है कि हमने आपको दिया तो आप हमें दीजिए और साथ में शुक्रिया भी अदा कीजिए। अरे शुक्रिया भी अदा कीजिए और बदला भी दीजिए। लेकिन ये वो घराना है

जो ये कहकर अपनी बात को तमाम कर रहा है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, अल्लाह के लिए हम ये सब करते हैं, ला नुरीदु मिनकुम, अरे हम तुमसे कोई जजा नहीं चाहते, ये नहीं कि आज हमने खिलाया तो कल तुमसे खाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, हमने खिलाया अल्लाह के लिए, तुम्हारे दावत के हम मोहताज नहीं, वला शुक्र, हम शुक्र भी नहीं चाहते, इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं खुदा का कि जिसने हमें यह सआदत बख्शी है। ये थी कुरान मजीद की वो आयत कि जिससे मैंने खानवादे मोहम्मद व आले मोहम्मद का मैंने मख्तसर सा आपकी खिदमत में तारुफ रखा। आज़ादारान सैयदुश्शुहदा, ये वो घराना कि जिसने अपनी ज़िंदगी दीन के खातिर सर्फ कर दी, दीन पे कुर्बान कर दी, अपने लम्हे वक्फ कर दिए दीन के खातिर, और अजीज़ व वक्त भी आया कि जब ज़रूरत पड़ी दीन को, हर चीज़ की कुर्बानी दी, जब ख़ुद उनकी ज़रूरत पड़ी दीन को, तो आपने मदीना छोड़ा। किस तरह से छोड़ा? अरे नाना के रोज़े पे गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहने लगे, नाना मैं आपका रोज़ा छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आपकी मुजावेरी से ना हटता, आपके रोज़े से मैं दूर ना होता, लेकिन उम्मत की इस्लाह के लिए मुझे मदीना छोड़ना है, मुझे करबला बसाना है। अज़ीज़ाने गिरामी, जब आप आगे बढ़ने लगे, वह वक्त भी आया कि तारीख़ ने लिखा कि आप जब जाने लगे तो जनाब उम्मल बनीन आप आईं और कहा कि हुसैन मुझे थोड़ी देर के लिए अब्बास को मैं ले जाना चाहती हूँ वसीयत के लिए, और अब्बास अलैहिस्सलाम को लेकर रोज़े रसूल पर आईं, हाथ आपका लेकर दाहना हाथ रोज़े रसूल पे रखा, एक हाथ आप अपने सर पे माँ ने रखा, पूछा दाहना हाथ कहाँ है रोज़े रसूल पर, तो बीबी ने कहा कि बेटा, माँ ने कहा बेटे से, बेटा रोज़े रसूल पर हाथ रख कर कसम खा कि मेरे सर पे हाथ रख कर कसम खा कि जब तक तेरे दोनों हाथ सलामत रहेंगे ज़ैनब की चादर नहीं छिनेगी। अज़ीज़, मदीने से जाने वालों ने जंग का प्लान नहीं किया, पर्देदारी का अहतमाम किया, पर्देदारी की वसीयतें की, और दीन को फैलाने के लिए अगर जा रहे थे, ये जंग के लिए नहीं ले जा रहे थे, अगर जंग के लिए जाते तो मोमिनात मुकद्दरात साथ में ना ले जाते, ज़ैनब को साथ ना ले जाते, सकीना साथ ना ले जाते, और अज़ीज़ाने गिरामी नन्हे नन्हे बच्चे यानि अली असगर हों, आनो मोहम्मद हों, इमाम बाकिर जो छोटे थे, ये सब का काफिला करबला ना जाता। करबला जंग के लिए नहीं, करबला इस्लाह के लिए यह सफ़र था। वह वक्त भी आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आप दाखिल हुए हैं, यानि आप मदीने से मक्के और मक्के से करबला की तरफ जब आज़िम सफ़र हुए, तो करबला पहुंचने से पहले पहले आपने एक काफ़िले को पीछे आता हुआ देखा, वह कोई और नहीं था, वह हुर का काफ़िला था कि जिसने लजा में फ़र्श पर हाथ डाला था, और अज़ीज़ाने गिरामी उसी हुर के लश्कर को इमाम हुसैन ने जब देखा कि ये हमारे तरफ आगे बढ़ रहा है, वह वक्त भी आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास से कहा काफ़िले को ठहराया जाए और इन आने वालों के मुश्किलात को दूर किया जाए, ये घराना मिस्कीनों यतीमों असीर का ख्याल रखने वाला, मुश्किलों में मुश्किल कुशाई करने वाला काफ़िला आया। इमाम ने महसूस किया कि ये भी प्यासे हैं, जानवर भी प्यासे हैं, करबला की तरफ मोड़ के लाने वाला हुर, आज उस हुर के लिए इमाम हुसैन खुद भी उतरे हैं। आपने कहा मशकीज़ों के दहाने खोल दिए जाएं और इन्हें पानी से सैराब किया जाए, और ख़ुद हुसैन अलैहिस्सलाम भी जानवरों को सैराब कर रहे थे। वो वक्त भी आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि पानी पिलाने वाले, इमाम ने कहा सवारों को भी और सवारियों को भी, यानी लोगों को भी और वो जिन पे बैठ के ये घोड़े और ऊँट थे उनको भी पानी पिलाया जाए। ये सब काम हो रहा था, इसी असना में आपकी निगाह एक पानी पिलाने वाले शख्स पर पड़ी कि जो एक जानवर के सामने पानी का कूज़ा रखा था, मशकी यानी बर्तन, और वो जब जानवर पी करके सर उठाता तो ये वहाँ से हटा लेता। आपने आवाज़ दी मत हटाओ, इसने जो चेहरा उठाया है, मुंह बुलंद किया है, ये सैराब होने की अलामत नहीं है, इसने जो पहले पीते पीते अपना सर बुलंद किया है सांस लेने के लिए, जब दूसरी मर्तबा पानी पी करके उठाए तब

0: समझना ये सैराब हुआ है। अजीज़ाने गिरामी, जो हुसैन जानवर के सैराब होने तक का ख्याल जिसने रखा हो और जिसने जालिम के सवार और सवारियों को भी पानी पिलाया हो, उस हुसैन के बच्चे करबला में अल आतश कहते रह गए, दरिया बहती रही, लेकिन ये कतरे आब आले मोहम्मद को पेश नहीं किया गया। आइए मैं आपको करबला की याद में यहाँ तक ले आऊँ कि जब इमाम हुसैन करबला में दाखिल हो रहे थे तो आप करबला में जैसे ही पहुँचे तो सवारी आगे नहीं बढ़ी। इमाम ने उस सवारी को बहुत कोशिश की, उतरे, दूसरे पे सवार हुए वो भी नहीं, तीसरे पे सवार हुए वो भी नहीं। तारीख ने 7 सवारियां लिखी हैं कि कोई आगे बढ़ नहीं रही थी। इमाम नीचे उतरने से पहले ये बुला कर के वहाँ ज़मीन वालों से पूछा, इस ज़मीन का नाम क्या है? उन्होंने कहा, इस ज़मीन को करबला कहते हैं। और इमाम ने कहा, मुझे ये तुम्हारी ज़मीन बहुत पसंद है, मैं ख़रीदना चाहता हूँ। उन्होंने मना किया और आखिर में इमाम हुसैन ने 60,000 दिरहम में इस ज़मीन को ख़रीदा और तारीख़ में 61 भी है। मख्तसर ये है कि इमाम ने 4 माइल की ज़मीन ख़रीदी और उसके बाद जब उस ज़मीन पे उतरे, जब इमाम ने पूछा इसका नाम क्या है तो ज़मीन वालों ने कहा, बताना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन इसरार करने पे कहा कि ये ज़मीन को नैनवा कहते हैं। फिर पूछा क्या नाम है दूसरा, नैनवा कहते हैं। फिर पूछा क्या है शत्त-ए-फ़रात, फिर पूछा क्या है करबला, तो इमाम उस ज़मीन पे उतर गए और फिर ज़मीन को ख़रीदा और ज़मीन वालों को फिर वसीयत की और फिर उन्हीं को ये देते हुए ये इरशाद फरमाया था कि ये ज़मीन तुम्हारे लिए है, मगर एक वसीयत ये है कि इस ज़मीन पर अगर हमें कत्ल कर दिया जाता है तो यहाँ पे हमें दफन करना, और अगर ये मुमकिन ना हो सके तुमसे तो तुम्हारे औरतों के ज़रिए से। तारीख़ में ये भी लिखा है कि इमाम ने बुलाया उनके औरतों को, कहा ये देखो मेरी बहनें, ये मेरी माएँ, अगर तुम्हारे शोहर हमें दफना कर सके तुम पानी के बहाने आके दफन करना। फिर उन्हें भेज के बच्चों को बुलाया, अरे बच्चों देखो हमारे साथ भी ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं, तुम्हारे माँ बाप ज़ालिमों के डर से अगर हमें दफना कर सके तो कोशिश ये करना कि हमें खेलने के बहाने आके खाक डाल देना। अज़ादारा ने सैयद शोदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसी खाक को उठाया, सूंघ के कहा, बहन ज़ैनब ये हमारा मख्तल है।
1: मौज़ सामीन, अभी आप समाअत फरमा रहे थे खोजा शिया जामे मस्जिद के मौलाना अली अकबर साहब की ज़ुबानी एक बयान। इसी के साथ आइए समाअत फरमाइए चंद ऐलानात। कल बुध 17 जून सुबह 10:15 बजे अबू बकर सिद्दीक मस्जिद वाले पितो में दावत इस्लामी की जानिब से सुन्नतों भरे इज्तमा का अहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। और मुस्लिम सीनियर लेडीज़ एसोसिएशन वाले पितो की जानिब से बुध 17 जून से 26 जून तक रोज़ाना बाद नमाज शाह माह मुहर्रम के मौके पर नेफ बिस लिकलेजियो वाले पीतो पोर्ट लुइस में नूरानी महफिल का अहतमाम किया जा रहा है। जी हाँ, तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है।

हे संगीत रसिकुलारा दुर्भाग्यंगाई नाट्य सौंदर्य लहरी कार्यक्रमं पूर्ति चेयडानिकि समयं सूचिस्तुन्नदि इंटटितो मी कृतिका की सिलवु इव्वंडि इंको कार्यक्रमं दाका नमस्कारं अंडि शुभदिनं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

您所收听的是毛里求斯广播电台819频道。

आपकी पसंद। चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समय हुआ है आपकी पसंद का। इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। तो चलिए, आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे हमारा लाइव प्रसारण होने वाला है। जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं, हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं, आप एकदम मस्त है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और हमारे साथ जो है एक बहुत ही प्यारा सफ़र जो है तय करने वाली है। पुराने गीत हो या नए गीत हो, हर तरह के गाने इस कार्यक्रम के दौरान हम चलाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत जो है हम करने वाले हैं। मेरी तरफ से सभी सुनने वालों के नाम जो है ये बहुत ही

0: खूबसूरत सा नजाना।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
0: श्रोताओं, हम आपको ये भी इशारा कर दें कि हमारा जो फ़ोन नंबर है वो है 4028085, हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो है 5251700। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत जो है हम आप सभी सुनने वालों के नाम हम कर रहे हैं।

चलिए श्रोताओं, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद से आगे बढ़ाते हुए ये बहुत ही प्यारा सा गीत जाने वाला है हमारे साथ इस समय। गीत आज है पोंफिया की रहने वाली, उनके पति है बालदेव जी और साथ में है, वैसे उनके पति है रोहित जी, साथ में आदित्य अरब जानवी, उनकी बहन है मीरा न्यूकोव की रहने वाले, उनके सभी बच्चों के लिए साथ में है प्यारा सा जो है तनिष्क हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ तनिष्क जो है हमारे साथ जुड़े हुए, तो उनके नाम भी ये बहुत ही प्यारा सा गीत हम चला रही है।

हैं आप और आपका ये मनपसंद गीत है जो है जाएगा आपकी सभी बहनों के लिए। इंदिरा है, शारदा है, साथ में आपकी सहेलियां हैं नीला, प्रतिभा, शोभा, साथ में है गीता गजाधर। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत जो है हम चलाने वाले हैं आपके सभी परिवारों के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही प्यार के साथ आप निभाती हैं। तो चलिए मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद रेडियो मॉरिशस पे हम चला रहे हैं। श्रोताओं एक से बढ़कर एक गीत आप सभी सुनने वालों के नाम हम कर रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा सा गीत, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। फिल्म जो है बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही प्यारा सा गीत है, लोकप्रिय गीत जो है हम चला रहे हैं आप सभी सुनने वालों के नाम भी। तो खूबसूरत सा गीत आप सुन सकेंगे किशोर कुमार की आवाज़ में, बहुत ही इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रही है।

चलिए श्रोताओं, 2:45 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। मैन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद, इसे हम आगे बढ़ाएंगे। और अगला गीत जो है हमारे साथ इस समय समस्त पेंताया परिवार है, और आप जो है एक्वायो के रहने वाले हैं सेलू जी। तो चलिए सेलू जी की पसंद पे ये अगला गीत जो है हम चलाने वाले हैं। आप सभी लोगों के नाम भी हम ये गीत कर रहे हैं, और फिल्म का नाम है पवित्र पापी। और ये प्यारा सा गीत जो है, जी हाँ, सेलू जी की मांग पे हम चला रहे हैं। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे। तो श्रोताओं, हम आपको इशारा कर दें कि दोपहर के 3 बजने वाले हैं, और आप समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखेंगे इसी चैनल पे।

चलिए श्रोताओं, हमारे साथ इस समय इब्राहिम जी हैं, पोर्टिस के रहने वाले, वो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो चलिए उनका ये मनपसंद गीत आप सुन सकेंगे, फिल्म पतिता से लिया गया। तलत महमूद की आवाज़ में ये गीत हम सुन पाएंगे।

चलिए श्रोताओ अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। अगला गीत हम चलाएंगे, इस समय हमारे साथ भाई हरीश जी है, वो बासर के रहने वाले हैं। आप तो सभी लिसनर्स के लिए ये अगला गीत हम चलाएंगे।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य खतरों के चलते मॉरिशस अपनी निगरानी और मजबूत कर रहा है। सर शिव सागर रामगुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाई अड्डे के जिम्मेदारानों के साथ इबोला के एक शकी मामले के चलते एक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया। तीन तरह की हालत का तस्वीर किया गया। मंत्री अनिल बिच्चू ने इस कार्रवाई पर तसल्ली जताते हुए बताया कि मॉरिशस अब इबोला के संदर्भ में किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। सरकार मॉरिशस में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के सिलसिले में एक ढांचा कायम करने का मकसद रखती है ताकि ऑनलाइन जुर्मों से बचा जा सके। बहुत जल्द सलाह मशवरों का सत्र शुरू किया जाएगा और यूजरों की पहचान के लिए एक वेरिफिकेशन प्रणाली स्थापित की जाएगी। कैबिनेट में इस परियोजना के लिए मंजूरी दी गई है। पुराने वित्त मंत्री रंगाना देन पर्याची और पुराने श्रम मंत्री सुदेश कालीचरण से FCC में पूछताछ की जा रही है। ये तहकीकात पेट्रोली पैदावारों को लेकर 30 बिलियन रुपए के सिलसिले में की जा रही है। विदेश में ईरान और अमेरिका के बीच तय समझौते के संदर्भ में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसके बावजूद ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिलेगा। वो फ्रांस के G7 शिखर वार्ता में बात कर रहे थे। और फुटबॉल की बात करें तो आपको बता दें कि ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मैच ड्रो रहा है जो कि 2-2 रहा और सऊदी अरब ने यूरुग्वे के साथ खेला और ये मैच भी ड्रो रहा, 1-1 स्कोर है। और आज रात 11 बजे फ्रांस और सेनेगल के बीच मुकाबला होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। मोसिर मोहोय बेलेर रिवियर सेश में 79 साल की 79 years old श्रीमती तारामती मुखलाल। श्रीमती तारामती मुखलाल पैदाइशी नाम रामलोचन जो बिंदोई के नाम बिंदु के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल एक बजे इनके बेटे धनराज मुखलाल के घर मोसिर मोहोय बेलेर रिवियर सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालूसी बिल्डिंग बेलेर रिवियर सेश की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। सिनिवासन रोड डर्निंगाम त्रियोले में 64 साल के 64 years old श्री उमानंद लक्ष्मण जो मानंद पेप्सी के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम चार बजे इनकी पत्नी अमृता लक्ष्मण के घर सिनिवासन रोड डर्निंगाम त्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनुस त्रियोले की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 4 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
4: आपकी पसंद।

चलिए श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्यक्रम है आपकी पसंद, और आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। फ़ोन नंबर वही है 4008085। हमारा व्हाट्सएप नंबर वो है 5251700005। तो चलिए, सपहर के 3:04 हो चुके हैं, स्टूडियो की घड़ी में आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, और एक सालगिरह गीत इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई है सरिता जी, कतरबोन से हैं आप, और आपने हमें याद किया है। आज आपकी नातिन अदिति की सालगिरह है, तो इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं जो है, प्यार आशीर्वाद है पापा आकाश की तरफ से, मामा है करिश्मा, साथ में है मामू कविश, दादी है ललिता, चाचा है प्रीतम, और समस्त परिवारों की तरफ से ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं आई हैं समस्त सगे संबंधियों की तरफ से भी, और सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं जो है अदिति के नाम, जो है बहुत ही प्यारा सा गीत, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो उनके साथ आज अपना जन्मदिन जो है वो मना रही है, तो अपनों के साथ जो है ढेर सारी खुशियों के साथ वो अपना जन्मदिन मनाए, हमारी यही कामना है। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत, पॉपुलर गीत जो है उनके नाम हम कर रही है, अदिति के नाम हम कर रही है, अदिति को हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे। तो चलिए श्रोताओं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर जितने भी लोग जो है अपना जन्मदिन मना रहे हैं आज, तो एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।

चलिए, बहुत ही प्यारा संगीत अभी आपने सुना। मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद से हम आगे बढ़ाएंगे अगले गाने की ओर। हम बढ़ रहे हैं, हमारे साथ इस समय अनिता जी है, त्रियोले की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो उनका ये मनपसंद गीत है, फिल्म संगम से लिया गया, और ये प्यारा संगीत जाएगा उनकी बेटी अंजू के लिए। दामाद है वेद, उनका बेटा है सचिन, उनकी बहू है पूजा, साथ में कियान, शफिया और उनके समस्त परिवारों के लिए। तो चलिए, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद, इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक गीत आपके लिए। इस समय आप हमें सुन रहे हैं, ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। इस समय 4028085 पे बहुत ही प्यार के साथ आप निभा रहे हैं, और आपके व्हाट्सएप मैसेज

इसके लिए भी हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे। वैसे बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म संगम से लिया गया, इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। और फिल्म संगम के सभी गाने जो हैं बहुत ही पॉपुलर हुए हैं, फिल्म भी बहुत ही पॉपुलर जो है हुई है। तो इसे फिल्म से लिया गया एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो है हम चलाने वाले हैं। और फरमाइश जो है अनीता जी है, अनीता जी है त्रियोले की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए अनीता जी, आपकी पसंद पे ये प्यारा सा गीत हम चला रही है।

जो है हम समस्त बंधु परिवार के लिए चला रहे हैं और आप लोग जो है त्रियोले के रहने वाले हैं, तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे साथ इस समय माला सुमारो जी है, कथोबोन की रहने वाली, साथ में है उनके पति है सूर्यदेव जी, उनके सभी बच्चों के लिए भी कुछ मॉरिशस में है, कुछ कनाडा में है। तो ये गीत जाने वाला है माँ गायत्री जी है नुवेल फ्रांस की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, उनके बेटे हैं अजय और उनके सभी परिवारों के लिए। साथ में है केश जी, कथोबोन की रहने वाली है और वो किशोर कुमार को बेहद ही पसंद करती है। तो ये अगला गीत जाएगा उनकी दो बेटियों के लिए, नेहा नितिशा, उनके दामाद है एल्विन और उनके पति हैं आनंद जी। गुडलैंड्स की रहने वाली त्रिवेणी जी हमारे साथ जुड़ी रहती है। ये अगला गीत उनके पति अनिल जी के लिए, समस्त मोहन परिवार के लिए। साथ में है राधा जी, पिछवेजे सैंपियर की रहने वाली है और विद्या जी है न्यूनपा की रहने वाली, उनकी बहन है सती, साथ में है उनकी चाची है कुमारी, उनके सभी परिवारों के लिए। साथ में ये गीत जाने वाला है हमारे साथ इस समय अनिता जी है जुड़ी हुई है, आप पिछवेजे सैंपियर की रहने वाली है, आपके पति है बालदेव जी, आपके सभी बच्चों के लिए, काजल शीतल दीक्षा, दामाद है वितिश, आपके सभी परिवारों के लिए। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे, बदलते रिश्ते फिल्म का ये सदाबहार गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम चला रहे हैं। समय एक से बढ़कर एक गीत है जो है आप ही के अनुरोध पे हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो चलिए गीतों का एक खूबसूरत कारवा इसे जारी रखेंगे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये अगला गीत, फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल, और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना जो है जाएगा थ्रियोले के रहने वाले इन सभी श्रोताओं के लिए। दीदी ललिता है, कुशल परिवार है, दीदी सुनीता है, शोभा है, देविना मालंगा के, अनुषा, किरण, केशनी, कृषय, प्रणीता, वंश, वैभव, वीर, निया, राम जतन परिवार है, राम गुलाम परिवार है, कुआगू परिवार है,

तो चलिए श्रोताओं, सपहर के 3:32 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और गीतों का एक खूबसूरत सफ़र इसे हम जारी रखेंगे। एक और सालगिरह गीत हम चलाने वाले हैं। हमारे साथ जो है इस समय लीला जी है, बाशकी की रहने वाली, और उन्होंने अक्षी के जन्मदिन के मौके पर एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो है इसकी मांग की है। और अक्षी जो है लामाग की रहने वाली है और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए पढ़ाई करने गई है, और उनके जन्मदिन के मौके पर ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद है मामा प्रीति की तरफ से पापा है ऋषि।

साथ में शुभकामनाएं भाई अक्षय की तरफ से, विकी है, करण और समस्त बापू परिवार है, लोचन परिवार है, साथ में है आजा और आजी, तो इन सभी लोगों की तरफ से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है। हमारे साथ इस समय इंद्राणी जी है वाकवा की रहने वाली, तो इंद्राणी जी को हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे, उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त परिवारों की तरफ से। उनके पति है राजवेन चटारू, साथ में उनकी बेटी है नीरू, नीता भी है, बहू है पद्मिनी, साथ में है अंकुश, कीर्ति, मोक्षदा, सभी चटारू परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए गाने की ओर हम बढ़ेंगे।

तो चलिए श्रोताओं, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम से जारी रखते हुए अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। वैसे काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे। वैसे इस समय हमारे साथ इस समय अनीता जी है, फिकाफ्ला की रहने वाली, उन्होंने हमें याद किया है। उनके व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज हमें अभी प्राप्त हुआ है, तो चलिए गाने की फरमाइश कर रही है अनीता जी। तो प्यारा सा गीत फिल्म खानदान से लिया गया, इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं, और प्यारा सा गीत जो है उनके समस्त परिवारों के लिए। उनके पति है राज जी, उनके बेटे हैं अंतिश, साथ में है अंकुश, उनकी बहू है मनीषा, साथ में है आशिमा, उनकी पोती है हिमेशा आधिया, पोते हैं अंश, और सभी एमबीसी टीम के लिए भी ये गीत की फरमाइश कर रही है। तो चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म खानदान से लिया गया, इस कार्यक्रम में हम चला रहे हैं। खास ये गीत अनीता जी के लिए, फिकाफ्ला की रहने वाली।

चलिए श्रोताओ, गीतों का ये सफ़र जारी है। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान, और इस फिल्म से लिया गया गीत जो है जाएगा खास शोभा जी के लिए, जो कि पोम्पियो मिसेज की रहने वाली है और इस गीत का इंतज़ार वो कर रही है। तो चलिए गीत को हम चलाएंगे उनके नाम।

चलिए श्रोताओ, 3:50 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। गीतों का ये सफ़र जो है हम जारी रखेंगे, अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। और अगला गीत जो है जाने वाला है अमीना जी के लिए। पोपाले की रहने वाली हैं आप, और आपका ये मनपसंद गीत जाएगा आपके सभी रिश्तेदारों के लिए और आपके सभी दोस्तों के लिए।

तो चलिए श्रोताओ, 3:55 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। आइए जाने से पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले विलाज डे रिविया जुपस और जोलीबुआ के रहने वाले निवासियों को गुरुवार 18 जून 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में है कॉमर्सले और कतकुको के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है NSLD, NHDC, चर्च लेन, डसन स्ट्रीट, अवेन्यू अजेलिया, हाई स्ट्रीट, बिलॉय स्ट्रीट और कमेलिया अवेन्यू के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 17 जून 2026 को सुबह 8:45 से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही प्यारा सा गीत है, फिल्म जूली से लिया गया, बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक गीत है। ये गीत है जाएगा स्वीति सेजल वेदिका के लिए।

चलिए श्रोताओं, साथ निभाने के लिए धन्यवाद। सभी लोगों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपकी फ़ोन कॉल्स के लिए, व्हाट्सअप मैसेजेस के लिए। बहुत ही प्यारा सा गीत समय आप सुन रहे हैं। तो इसी गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम का समय पूरा हो चला। साथ देने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे कल रेडियो मनोरंजन पर भक्ति में शक्ति कार्यक्रम को लेकर हम उपस्थित होंगे। आप सभी को हम कहेंगे शुभ संध्या। शाम के 4 बजते ही आप तमिल भाषा में कार्यक्रम कलावाणी के साथ सुन पाएंगे।

0: भूले बिसरे गीत रेडियो मॉरिशस पर भूले बिसरे गीत
1: भूले बिसरे गीत। जी हाँ दोस्तों, शुरू हो चुका है आपके और हमारे बीच में ऑन रेडियो मॉरिशस। तो नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो भूले बिसरे गीत। और वैसे चलिए जी, हम तो चाहते हैं कि सभी जो हैं हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं लौट चलते हैं उन खूबसूरत दिनों में जब बॉलीवुड के गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे, बिल्कुल जब सुने नहीं जाते थे बल्कि दिल में बसा लिए जाते थे। अगले एक घंटे के सफ़र में गिनीश आपका हम सफ़र बनने आ गए हैं, तो साथ रहिए और महसूस कीजिए पुरानी यादों का जादू जो हम लेकर आए हैं इन खूबसूरत गीत के ज़रिए। आराम से आप बैठ जाइए और बस अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए, और अगर आप ड्राइव कर रहे हो और इन खूबसूरत पुराने गानों का आनंद लेना चाहते हो तो बस प्यार से सुन लीजिए हमें।

0: सच है क्या सब सच है।
1: भूले बिसरे गीत रेडियो मॉरिशस पर भूले बिसरे गीत।
2: बिल्कुल जी, लेकर आए हैं आप लोगों के लिए भूले बिसरे गीत। एक ऐसा सफ़र जहाँ पे हम आपको लेके जाते हैं उन वादियों में जहाँ पे आपकी खूबसूरत यादों को आपने बड़े प्यार से सजा के रखा है। याद आना वो गीत जो आपके बचपन की सहेली की जो कहानी की थी उसी के साथ जुड़ी हुई हैं। बस सुनते ही आपको वही फिर कहानी याद आ गई और आप मुस्कुराने लग गई। आपको तो पता है कि हमारी तो यही कोशिश है कि हम आपके ज़िंदगी में प्यार बरसाएं और ऐसे गाने लेकर आए जो बस आपकी होंठों पर मुस्कुराहट लेकर आए। तो चलिए जी, अगला नगमा खासकर हम आपके लिए पेश करना चाहेंगे भूले बिसरे गीत में रेडियो मॉरिशस पर।

अपने जमाले है मेरा सुरमा बनाकर आंख में अपनी लगा ले मुझे साबुन समझकर आंग पर अपने जमाले तुझे सौगंध भगवान की खुदा का वास्ता तुझको कि मुझसे दूर मत जाना कि मैं हूँ तेरा दीवाना आ आ आ मेरे जंगली कबूतर मेरा दिल एक मंदिर मेरे जंगली कबूतर मेरा दिल एक मंदिर

जंगली कबूतर, मेरा दिल एक मंदिर बसी है जिसके अंदर तेरी तस्वीर, जाना ना कि मैं हूँ तेरा दीवाना।

प्यास तुझको खून मैं अपना पिला दूं, लगे जो भूख तुझको दिल का मैं सीमा खिला दूं, लगे जो प्यास तुझको खून मैं अपना पिला दूं, लगे जो भूख तुझको दिल का मैं सीमा खिला दूं, तेरी खातिर जो मर जाऊं बड़ा ही काम कर जाऊं, यही है मेरा अफसाना कि मैं हूं तेरा दीवाना। मेरे जंगली कबूतर मेरा दिल एक मंदिर, मेरे जंगली कबूतर मेरा दिल एक मंदिर।

0: हाथ मार दिया, किले की दीवारें टूट रही।
1: दारान और शाहजमान,
2: वजीर बहर, दुश्मनों के हमले का मुंह तोड़ जवाब दो।

0: भोले बिसरे गीत रेडियो मॉरिशस पर भोले बिसरे गीत।
1: ये है आपका भोले बिसरे गीत। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे गिने चुने नगमे जो सीधे जाकर दिल पर लग जाते हैं। टाइम बीता चला जा रहा है, 5:32 हो चुके हैं और आज के लिए जो हैं 16 जून, हमारे जितने भी लिसनर्स, अगर आज आप मना रहे हो अपना जन्मदिन तो हमारे पूरे रेडियो मॉरिशस टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप रफीदा का बहुत ही बड़े फ़ैन हो तो ये अगला नगमा आके ना।

वैसे तो देखा जाए हर गीत एक कहानी है, हर सुर एक याद है। रेडियो मॉरिशस पर आपका ये खास कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। जी हाँ दोस्तों, चलिए मिलकर जो है यादों के इस सफ़र का आनंद लेते हैं। और अगर आप घर पर आराम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हो या सफ़र पर हैं, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए पुराने बॉलीवुड संगीत का खजाना। ये है आपका भूले बिसरे गीत सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। और जितने भी लोग फ़िलहाल अगर आप हमें सुन रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, तो आराम से गाड़ी चलाना, धीरे धीरे, हौले हौले, और ये नगमा आपके नाम।

अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मैं

0: भोले बिसरे गीत रेडियो मॉरिशस पर भोले बिसरे गीत।
1: तो चलिए जी, टाइम टू बीटा चला जा रहा है और एक के बाद एक इस खूबसूरत से सफ़र में हम आपके लिए पेश करते चले गए खूबसूरत प्यारे प्यारे गाने, बिल्कुल एवरग्रीन बॉलीवुड गाने। और अभी के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स, हम फिर आएंगे नेक्स्ट टाइम आपके एक और खूबसूरत से शो में जिसका नाम है भूले बिसरे गीत। और उम्मीद करते हैं कि इन खूबसूरत गीतों में अगर आपको आपकी ये खूबसूरत यादें फिर से आपने जी लिया तो वेल एंड गुड, इट्स वेरी गुड। हमें अच्छा लगा कि ये चलिए मुस्कुराहट तो हम लेकर ही आए आपके होंठों पर। और फिलहाल के लिए कि निशा को आप इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच, बस यूँ ही साथ देते रहिए ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: नमस्कार आदाब, 6 बज रहे हैं। पेश है समाचार बुलेटिन, खुशामदीद। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। मॉरिशस अब एबोला के संदर्भ में किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं, कहा मंत्री अनिल बिचू ने। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य खतरों के चलते मॉरिशस अपनी निगरानी और मजबूत कर रहा है, इसीलिए हवाई अड्डे पर एक कार्रवाई चलाई गई। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने ऐलान किया कि कॉन्डस के विक्टोरिया अस्पताल में एक नर्स को सस्पेंड किया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो के आम होने के बाद फौरन मंत्रालय ने ये फैसला लिया है, एक जांच

0: शुरू। आज सुबह से पुराने वित्त मंत्री रंगानंदन परयाची और पुराने श्रम मंत्री सुदेश कालीचरण रिजवी के ट्रायंगल स्क्वायर में हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की तहकीकात के सिलसिले में उनसे पूछताछ की जा रही है। और ईरान तथा अमेरिका के बीच सुलह 109 दिनों की जंग के बाद आखिरकार दुनियावी भलाई और आपसी अमन की खातिर दोनों मुल्कों ने जंग बंदी पर मंजूरी जताई है। समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दस्तखत किए गए। नमस्कार और आदाब सभी को। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य खतरों के चलते मॉरीशस अपनी निगरानी और मजबूत कर रहा है। सर शिव सागर राम गुलाम हवाई अड्डे पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाई अड्डे के जिम्मेदारानों के साथ एबोला के एक शक्की मामले के चलते एक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया। तीन तरह की हालतों का तस्वीर किया गया। मंत्री अनिल बिजू ने इस कार्रवाई पर तसल्ली जताते हुए बताया कि मॉरीशस अब एबोला के सिलसिले में किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। क्लूडर जोफागा देवादू रजनी बेकर।
1: एक पहला सिनेरियो, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य से आने वाले एक यात्री, इन पर विमान में ही एबोला महामारी के लक्षण पाए गए। क्रू सदस्यों की ओर से विमान के उतरने से पहले सैनिटरी अधिकारियों को सचेत किया गया। मामले को संभालने से संबंधित प्रोटोकॉल चालू। विमान के नजदीक आने पर मरीज और उसके आसपास बैठे यात्रियों को अलग रखा जाता है, आइसोलेट किया जाता है। मरीज को इलाज के लिए सुल्याक अस्पताल ले जाया गया और बाकी के लोगों को रियोबेल क्वारंटीन केंद्र की ओर। एक दूसरा सिनेरियो, हवाई अड्डे में सैनिटरी कंट्रोल के दौरान एक अन्य खतरे वाले देश से एक यात्री में बुखार के लक्षण। उन्हें शीघ्रतापूर्वक एक अनुकूल स्थल की ओर रवाना कर दिया गया, जबकि अधिकारियों की तरफ से महामारी विज्ञान संबंधी जांच के लिए जरूरी जानकारियां एकत्र की जा रही है। एक तीसरे मामले का सिनेरियो, यात्री को पहचाना गया जो हाल में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य से ट्रांजिट होकर आया। लक्षणों की अनुपस्थिति के बावजूद सैनिटरी टीमों ने खतरों का मूल्यांकन किया और फॉलोअप के कदम लागू किए गए। मॉरीशस में एबोला का कोई भी मामला नहीं है, फिर भी अधिकारियों की तरफ से ये याद दिलाया जाता है कि देश की सैनिटरी सुरक्षा में तैयारी अहम मुद्दा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिजू ने कहा, ये तीन सिनेरियो रहे हैं, ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो भी बन पड़े कर सके, ताकि मॉरीशस में ये बीमारी न हो। जनता को आश्वासन देना चाहेंगे कि स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होगी। जैसे ही इस तरह के मामले पेश आए, शीघ्रतापूर्वक कदम उठाने चाहिए। नर्स हो, अफसर हो, चाहे मामले न भी हो, फिर भी वे स्टैंड बाय पर हैं, तैयार है।
2: Infirmier, officier, même que ben la case là, nous finis mettez stand by. Nous pas pour entendre que quand il y a un case là, nous vous galopez, non.
1: इस कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य सेवाओं, हवाई अड्डे के अधिकारियों, आपातकालीन टीमों और अन्य संबंधित पार्टनरों को भी तैनात किया गया।
0: और रेडक्रॉस के मुताबिक कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एबोला महामारी एक साल तक जारी रह सकती है, क्योंकि अभी तक बीमारी पीक पर नहीं चढ़ी है। स्क्रीनिंग की कमी की वजह से ये साफ नहीं है किसका फैलाव कितना हो रहा है। अब तक 800 से ज्यादा मामले पाए जा चुके हैं और 192 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। रजनी बेकर।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एबोला महामारी उत्तर पूर्व में कुछ नए इलाकों में फैल रही है। अभी तक जिस तरह का अनुमान लगाया गया था, ये इससे भी ज्यादा है। WHO के मुताबिक इस वायरस को अधिक फैलने से रोकने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। कोंगो अधिकारियों ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं जिनसे पता चलता है कि अब तक 808 मामले दर्ज किए गए हैं और 192 लोगों की मौत हुई है। लेकिन मेडिसिन सान फ्रांसिस्को के अनुसार ये औपचारिक आंकड़े हकीकत बयान नहीं करते। रेडक्रॉस के अनुसार महामारी और एक वर्ष तक बरकरार रह सकती है और इसे नियंत्रित करने के वास्ते सैनिटरी कार्रवाई में निवेश करना होगा और साथ में लोगों में तथा स्थानीय स्वयंसेवकों में भी भरोसा लाने में। चाहे अभी के लिए मौजूदा महामारी के स्रोत के बारे में किसी तरह का इलाज नहीं मिला है या फिर टीका नहीं मिला है, फिर भी युगांडा के वैज्ञानिक टीके को विकसित करने और इससे संबंधित अनुसंधान में तेजी ला रहे हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ मिलकर काम

0: रही है ताकि एक कारगर वैक्सीन विकसित कर सके।
1: मकामी स्तर पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिजू ने ऐलान किया कि कौंडस के विक्टोरिया अस्पताल में एक नर्स को सस्पेंड किया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो के आम होने के बाद फौरन मंत्रालय ने यह फैसला लिया। वीडियो में मेडिकल स्टाफ को एक गैर मुनासिब हालत में दिखाया जा रहा है। फेसबुक पर एक पोस्ट में मंत्री बिजू ने बताया कि उन्होंने फौरी तौर पर एक जाँच शुरू करने का हुक्म दिया। मुख्तलिफ टकों के स्टाफ से भी तहकीकात जारी है। मंत्री अनिल बिजू के मुताबिक जो ही जरूरी सबूत मिले डिसिप्लिनरी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जांच में देरी ना करने का आदेश दिया। किसी भी गलती को माफ नहीं किया जाएगा, उन्होंने ऐसा कहा। दूसरी खबरों में हमारी सरहदों के परे काबिलियतों की तलाश में आज हमारी मोशन कंपनियों को इनकी बड़ी ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी, अनुसंधान, विकास और चिकित्सक टेक्नोलॉजियों के सेक्टरों में काबिल संसाधनों की आवश्यकता है। लेकिन क्या देश में काबिल नौजवानों की ट्रेनिंग कम है? क्या काबिल पेशेवर काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं या उभरते सेक्टरों को तरक्की की राह पर गामजन करते करते चुनौतियाँ प्राप्त हो रही हैं? शहजाद जुर्मान ने पता लगाया। अशिता रघु का विवरण पेश है।
2: एबेन में स्थित अस्टेक मॉरिशस लिमिटेड में डेवलपर्स, डेटा विशेषज्ञों और सॉफ्टवेयर इंजीनियरों समेत कई पेशेवर कार्यरत हैं। कंपनी के लिए आवश्यक कौशल वाले कर्मचारियों की उपलब्धता उसके विकास के लिए एक अहम शर्त है। एआई में हो रही विकास के मद्देनजर हमें डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, AI इंजीनियरों, AI ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट इत्यादि को भर्ती करने की आवश्यकता है और इन स्थानीय कौशलों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। जो भी कंपनियां जल्द विकास करना चाहती हैं उन्हें शुरुआत में विदेशी विशेषज्ञताओं पर निर्भर होना पड़ता है।
3: Donc il faut dépendre dans un premier temps sur certaines expertises étrangères.
2: लेकिन विशेष कौशल की मांग केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र तक सीमित नहीं, मेडिकल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी इसकी चुनौती महसूस हो रही है। हम विकास अनुसंधान क्षेत्र में लोगों को भर्ती करते हैं जिनमें क्वालिटी इंजीनियर्स, रेगुलेटरी इंजीनियर्स इत्यादि शामिल हैं और ये हम बाहर देशों से करते हैं जहाँ उच्च कौशल वाले उम्मीदवार होते हैं। उदाहरण के लिए विकास अनुसंधान के लिए हम उन इंजीनियरों की तलाश करते हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अधिक अनुभव है, जो यहाँ कर स्थानीय इंजीनियरों के साथ आदान प्रदान कर सके।
4: Qu'on puisse faire venir ici et ils font des échanges, on va dire, avec nos ingénieurs locaux.
2: विशेषज्ञों के अनुसार ये स्थिति काफी जटिल है। कई क्षेत्रों में कुछ विशेष कौशलों की मांग उपलब्ध मानव संसाधन से कहीं अधिक है। इसके साथ ही प्रतिभाशाली कर्मचारियों को बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। हर साल हम 800 से 1000 नौकरियों के लिए लोगों को भर्ती करते हैं जिनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी इत्यादि शामिल है। ये मांग बढ़ती जा रही है पर मुश्किल ये है कि स्थानीय स्तर पर कौशल की कमी या फिर यहाँ से कौशल बाहर जा रहे हैं।
5: Il y en a deux. C'est le manque de talent local. C'est le brain drain. Donc les talents locaux aussi s'exportent. Donc du coup les entreprises ont deux solutions. Soit elles font venir des talents à l'étranger, soit pire, elles s'exportent.
2: अपनी विकास यात्रा को जारी रखने के लिए कई कंपनियों के लिए अब देश की सीमाओं से बाहर प्रतिभाओं की तलाश करना एक आवश्यकता बन गया है। ये स्थिति तब तक बनी रहने की संभावना है जब तक नियोक्ताओं द्वारा मांगे जा रहे कौशलों में स्थानीय स्तर पर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित पेशेवर उपलब्ध नहीं हो जाते।
1: आज सुबह से पुराने वित्त मंत्री रंगना देन पर्याची और पुराने श्रम मंत्री सुरेश कालीचरण रिजवी के ट्राइंगल स्क्वायर में हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की तहकीकात के सिलसिले में उनसे पूछताछ की जा रही है। सन 2023 में मैरिटाइम मर्केंटाइल इंटरनेशनल सोसाइटी से ईंधन की खरीद के ठेके के सिलसिले में दोनों से जांच की जा रही है। वकील रऊफ गुलबुल, रोशन संतोखी और वकील नीलकांत दलू दोनों पूर्व मंत्रियों की वकालत कर रहे हैं। सरकार मॉरिशस में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के सिलसिले में एक ढांचा कायम करने का मकसद रखती है ताकि ऑनलाइन जुर्मों से बचा जा सके। बहुत जल्द सलाह मशवरे किए जाएंगे और यूजरों की पहचान के लिए एक वेरिफिकेशन प्रणाली स्थापित की जाएगी। कैबिनेट में इस परियोजना के लिए मंजूरी भी दी गई है। ईरान और अमेरिका के बीच सुलह 109 दिनों की जंग के बाद आखिरकार दुनियावी भलाई और आपसी अमन की खातिर दोनों मुल्कों ने जंगबंदी पर मंजूरी जताई।

0: आई हैं। इस शुक्रवार से आबी रह गुजर आबनाए हुरमूज को दोबारा खोला जाएगा, जहां से सभी कश्तियां गुजर सकेंगी। समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दस्तखत किए जाएंगे। उधर ग्रेट ब्रिटेन ने 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया है। ये सुरक्षा के तौर पर यानी ये कदम उठाया गया है। उधर अमेरिका एयरफोर्स बम्ब दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है। इनमें बोइंग के 2 कर्मचारी भी शामिल थे। स्कूल के वक्त से ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी बरतने की अच्छी आदतें अपनाना, ये नेशनल वेस्ट पेपर कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग परियोजना का मकसद है। आज सुबह पर्यावरण मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से एसके कान्हाई सरकारी स्कूल में पहल की लॉन्चिंग की। करीब 2.5 स्कूलों और कॉलेजों में ये परियोजना चलाई जाएगी। तलबा को कागजात अलग रख कर रिसाइकलिंग के लिए भेजना पड़ेगा। नगर पालिकाओं के नए मुंतखब मेयरों और डिप्टी मेयरों के साथ आज मकामी इंतजामिया मंत्री रंजीव उचित ने एक खास मुलाकात की। शहरों के हालात, शहरियों की सहूलतों और दीगर परियोजनाओं पर गौर किया गया। नए जिम्मेदारानों ने अपने अपने मकसदों और कामों पर रोशनी डाली, साथ में संचालन में पेश मुश्किलात का मुद्दा भी उठाया। अफ्रीकी बाल के संदर्भ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में कई गतिविधियों की लॉन्चिंग भी की जा रही है। अशिता रघु की रिपोर्ट पेश है।
1: इस अवसर पर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों ने स्वयं एक प्रदर्शनी प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम में उन्हें जल और जल का दैनिक जीवन में उसके महत्व को समझाने का अवसर दिया। इस दिवस का महत्व ये है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ है हमारे लिए, जो बहुत खूबसूरत है। बारिश का पानी जमा करके घरेलू काम के लिए उपयोग करना चाहिए। हमारे इस परियोजना का लक्ष्य है कि जिन लोगों का स्वच्छ पानी तक पहुंच है, वे कौन से कदम उठा सकते हैं उन लोगों के लिए जिनकी पहुंच पानी तक नहीं है। संदेश स्पष्ट है, पानी हर किसी से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक संसाधन से कहीं बढ़कर ये बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये पहल बच्चों को कम उम्र से ही पर्यावरणीय चुनौतियों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक एवं सहभागी बनाने का प्रयास है। बच्चों के लिए जरूरी है कि उनकी पहुँच पानी तक हो, वरना वे वंचित हो जाते हैं। यदि मॉरिशस में स्थिति को सही से संभाला जाए तो कोई मुश्किल नहीं होगी। ये संदेश सरकारी अधिकारियों द्वारा भी साझा किया गया। लैंगिक समानता मंत्रालय ने भी दोहराया कि स्वच्छ जल तक हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार है। यदि पानी से बच्चों को वंचित रखा जाए तो इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। जब खराब मौसम के कारण स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे में बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रदर्शनी और अपने विचारों के माध्यम से इन बच्चों ने एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण संदेश दिया। जल संरक्षण हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। ये जागरूकता अफ्रीकी बाल विकास की भावना को पूर्ण रूप से दर्शाती है और नई पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण तथा बेहतर भविष्य के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है।
0: आपको बता दें कि अभी जुमा मस्जिद की तरफ से एक ऐलान है, मॉरिशस और रोड्रिग्स में नया चांद नज़र आ गया है। इसलिए कल 17 जून को मुहर्रम 1448 की पहली तारीख होगी, यानी नया इस्लामी साल शुरू होगा। और यौम आशुरा जुम्मा 26 जून को होगा। ये कम्युनिके, ये विज्ञप्ति मॉरिशस और रोड्रिग्स के लिए है। मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन की नई प्रशासनिक परिषद ने प्रेस को संबोधित किया। इस पेशकश के दौरान नए मेंबरानों ने आने वाले 2 सालों के लिए अपने अपने लक्ष्य आम किए। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहली बार स्लोवाकिया के दौरे पर गए। फ्रांस में फलदार मुलाकातों के बाद उन्होंने भारत और स्लोवाकिया के रिश्तों को उरोज देने के लिए द्विपक्षीय सहयोग की दिशा में ये विशेष दौरा शुरू किया। स्लोवाकियन राज्य की तरफ से उन्हें वहां का सबसे इम्तियाज एजाज यानी सर्वोच्च

0: उपाधि ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा गया। और अब फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की मैचों की बात करते हैं। कल इजिप्ट और बेल्जियम के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ, मैच ड्रॉ रहा और स्कोर एक एक रहा है। अरविंद बिसेसा से ज्यादा जानकारी।
1: यूरोप की चैंपियन टीम को रोका पहली बार वर्ल्ड कप में खेल रही केप वर्दे की टीम ने। ला गोरा यानी स्पेन की टीम ने खेल की शुरुआती मिनटों में ही अपना दबदबा बना लिया था और लगातार हमले किए, लेकिन केप वर्दे की टीम की रक्षा पंक्ति यानी डिफेंस को तोड़ने में नाकाम रही। गोलकीपर वो जिन्हा ने शानदार खेल दिखाया। वो जिन्हा ने लामिन यमाल और पेद्री की कई कोशिशों को नाकाम करते हुए बेहतरीन बचाव किए, उसे मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। आखिरी 15 मिनटों में स्पेन के भारी दबाव के बावजूद स्कोर में कोई बदलाव नहीं हुआ। स्पेन की टीम अब भारी दबाव के साथ अपने अगले मैच में उतरेगी। स्पेन का मुकाबला आने वाले 21 जून को सऊदी अरब से होगा। दूसरी ओर केप वर्दे विश्व कप में अपने ऐतिहासिक सफर को जारी रखते हुए अगले दिन यूरुग्वे से भिड़ेगा। बेल्जियम और इजिप्ट के बीच मैच में भी ऐसा ही मुकाबला देखने को मिला जो 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। इजिप्ट ने 19वें मिनट में ही बढ़त बना ली जब इमाम अशूर को पेनाल्टी बॉक्स के अंदर एक बेहतरीन पास मिला और उसने बिना कोई गलती किए गोल दाग दिया। बेल्जियम ने धीरे धीरे मैच पर अपनी पकड़ बनाई और दूसरे हाफ में इसका फायदा मिला जब रोमेलू लुकाकू के दबाव में इजिप्ट के मोहम्मद हानी ने आत्मघाती गोल यानी ऑन गोल कर दिया। मैच का आखिरी समय काफी रोमांचक रहा जिसमें दोनों ही टीमों को गोल करने के कई अच्छे मौके मिले, पर फाइनल बेल्जियम 1 इजिप्ट 1।
0: राज ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मैच रहा, दोनों का स्कोर 2-2 रहा यानी मैच ड्रॉ गया, जबकि सऊदी अरब और यूरुग्वे के बीच भी मैच ड्रॉ रहा और स्कोर 1-1 रहा। आज रात फ्रांस और सेनेगल के बीच जबरदस्त मुकाबला होने वाला है रात के 11 बजे। अरविंद बिसेसा।
1: पिछले वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट फ्रांस की टीम अपने रुतबे को बचाने और मैच की रफ्तार को काबू में रखने के इरादे से सेनेगल के खिलाफ मैदान में उतर रही हैं। ले ब्लू एक बेहतरीन तालमेल वाले खिलाड़ियों का समूह है और गेंद वापस मिलते ही बहुत तेजी से आगे बढ़ने की काबिलियत के साथ आ रही हैं, लेकिन यह मुकाबला लाजमी तौर पर एक पुरानी और यादगार याद को ताज़ा कर देता है। साल 2002 के विश्व कप में सेनेगल ने इतिहास रचते हुए विश्व चैंपियन फ्रांस को हराया था। तब से अब तक खेल के तौर तरीके बदल चुके हैं, लेकिन हालात अब भी चुनौतीपूर्ण हैं। सेनेगल के पास आज भी वही शारीरिक ताकत, खेल में तेजी, आमने सामने के मुकाबलों में आक्रामकता और जवाबी हमले यानी काउंटर अटैक में खतरनाक होने की खूबी मौजूद है। ग्रुप जे में अर्जेंटीना का सामना अल्जीरिया से होने जा रहा है जो कि एक बेहद तकनीकी लेकिन उतनी ही कड़ी टक्कर वाला मुकाबला है। आल्बी सेलेस्ते की टीम अपने तजुर्बे, खेल के कमजोर पलों में संभालने और समझ और विरोधी टीम के गोल पोस्ट के पास बेजोर फिनिश के साथ आगे बढ़ती हैं। दूसरी तरफ डिफेनेक्स यानी अल्जीरिया की टीम रफ्तार, खेल की तेजी और गेंद मिलते ही फौरन हमला करने की अपनी ताकत पर भरोसा कर रही है। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती पूरे 90 मिनट तक अपना ध्यान बनाए रखने की होगी ताकि अर्जेंटीना जैसी टीम को थोड़ा भी खाली मौका न मिले, क्योंकि अर्जेंटीना हर छोटी सी गलती की बड़ी सजा देती है। आखिरकार डिफेंडिंग चैंपियन जो है।
0: आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है और आज रात से कुछ बादल घिर आएंगे जो स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज रात के दौरान घने बादल होंगे, पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू में बारिश होगी। कल बादल घिराएंगे, पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू में बारिश होगी, हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कल बारिश की वजह से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं और लगुनों के उस पार समुद्र

और खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुन्द्र में न जाने की दरखास्त है, खासतौर पर पश्चिम और दक्षिण वाले लगूनों में। तापमान सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 23 से 25, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:43 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:38 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो ये थी अब तक की खबरें आप तक की बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारी तकनीकी साथी शिवनाग्या की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आदाब। शोक समाचार सुनिए।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। जम्बो रोड शिमा ग्रोनी में, जम्बो रोड शिमा ग्रोनी में 77 साल के 77 years old श्री सित्यानंद येरिया, श्री सित्यानंद येरिया जो आत्मानंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल एक बजे इनकी पत्नी सरस येरिया के घर जम्बोरोड शिमैग्रोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपाल शिमैग्रोनी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। रॉयल रोड बुबासैमी 65 साल के 65 years old श्री हेमराज जोगू, श्री हेमराज जोगू जो बाबू कॉन्ट्रैक्टर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, और नंबर 27 डॉक्टर पेपिन स्ट्रीट बुबासैमी के रहने वाले थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सवा बारह बजे एलियनसन बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:15 PM। मुसलमान रॉय बेले रिवेर सेश में 79 years old श्रीमती तारामती मुखलाल पैदाइशी नाम रामलोचन जो बिंदु के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल एक बजे इनके बेटे धनराज मुखलाल के घर मोसेल माहौल बेले रिविया सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालूसी बिल्डिंग बेले रिविया सेश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। कैथकारो ओकुले में 59 साल की 59 years old श्रीमती कुमारी सलोनी हनु नियोन पैदाइशी नाम बुधन जो सलोनी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल सुबह साढ़े नौ बजे इनके घर कथकारो ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगागा की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। बासा रोड कथबोन में 71 साल की 71 years old श्रीमती लक्ष्मी पारियानेन पैदाइशी नाम गोइंदन जो राधा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दो बजे इनके घर बासा रोड कथबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। NHDC ग्रांबोआ में 74 साल की 74 years old मोहतरमा अफरोजा लुत्फन जो जुबेद के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा कल दोपहर बाद एक बजे इनके घर NHDC ग्रांबोआ से उठाकर दफनाने के लिए तुम्बू मीबग का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

इन इलाकों में बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। चुकू मेयर यूनियन सेंट-ओबेन तथा स्टाफ क्वार्टर्स यूनियन सेंट-ओबेन में सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक और रिविया डू पुस्ट तथा जोली बॉ और आसपास के इलाकों में सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। मरम्मत कार्यों के बाद बिना पूर्व सूचित के बिजली की आपूर्ति पुनः जारी की जाएगी। इस कटौती के कारण सीबी क्षमा प्रार्थी है।

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में सूचित किया जा रहा है कि 18 जून 2026 को, यानी कि गुरुवार 18 जून 2026 को मरम्मत कार्यों के कारण

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस बुधवार 17 जून को पिचिगाफे आर्य समाज में शाम के 5:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बजले प्रभु का नाम, रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।

रेडियो मॉरिशस के इस पावन भक्ति कार्यक्रम भजते प्रभु का नाम में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, हम सभी प्रभु की भक्ति, श्रद्धा तथा आध्यात्मिक चिंतन के अमृत में अवगाहन करेंगे। माइक पर है देविना, आपका साथ देने के लिए हमारा सप्रेम नमन स्वीकार कीजिए। वैसे जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं तथा व्यवस्थाएं में पड़कर

हम दुखी होते हैं। ऐसे समय में ईश्वर का स्मरण हमारे मन को शांति, शक्ति तथा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। आइए आज की इस मंगलमयी रात्रि में हम सब मिलकर प्रभु का गुणगान करें तथा उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा तथा विश्वास होता है श्रोताओं, उसके जीवन में अंधकार अधिक समय तक नहीं ठहरता। प्रभु का नाम ही वह दीपक है जो जीवन पथ को प्रकाशित करता है। प्रस्तुत करते हैं पहला।

श्रोताओं, भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है। भक्ति वह भावना है जिसमें मनुष्य अपना अहंकार त्याग कर ईश्वर की शरण स्वीकार करता है। जब हम सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करते हैं, तब वे हमारे जीवन की कठिन राहों को भी सरल बना देते हैं। वैसे कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा धन संतोष है श्रोताओं, सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है, तथा सबसे बड़ा सहारा ईश्वर का नाम है। आइए अब सुनते हैं अगली भक्तिमय प्रस्तुति, अगला भजन।

श्रोताओं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में प्रभु प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग नाम स्मरण है। जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जपता है, उसके मन में धीरे धीरे शांति, करुणा तथा सद्भाव का विकास होता है। एक संत ने किसी से पूछा, उससे पूछा, भगवान कहाँ मिलते हैं? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहाँ अहंकार समाप्त होता है तथा प्रेम प्रारंभ होता है, वही भगवान का निवास होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में विनम्रता, सेवा तथा प्रेम को स्थान देना चाहिए। अब समय है अगले भजन का। रेडियो मॉरिशस पर कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम।

प्रिय श्रोताओं, जीवन में सुख तथा दुख दोनों आते जाते रहते हैं ना, परंतु जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है वह हर परिस्थिति में संतुलित तथा शांत रहता है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय की सच्चाई से होती है। ईश्वर हमारी वाणी नहीं, हमारी भावना को सुनते हैं। आइए अब प्रभु के चरणों में समर्पित एक और सुंदर भजन सुनते हैं।

भक्ति मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है श्रोताओं। जब हम दूसरों के प्रति दया करुणा तथा सद्भाव रखते हैं तब वही सच्ची पूजा बन जाती है। मंदिर में जलाया गया दीपक कुछ समय के लिए प्रकाश देता है, परंतु हृदय में जलाया गया प्रेम तथा भक्ति का दीपक जीवन भर उजाला फैलाता है। प्रिशोताओ, देखते ही देखते आज का हमारा भक्ति संगम यही समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अनुमति लेने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वे हम सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य तथा सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारे परिवारों में प्रेम बना रहे, समाज में सद्भाव बढ़े तथा मानवता का प्रकाश निरंतर फैलता रहे। ईश्वर पर विश्वास रखना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा श्रोताओं। जब सभी मार्ग बंद दिखाई दे तब भी प्रभु कृपा का एक नया द्वार खोल देते हैं। इसी मंगल कामना के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।

माह मुहर्रम उल हराम साया फिगन होगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें इस माह मुकद्दस के फ्यूज़ व बरकात से माला माल फरमाए, आमीन। आइए सामीन, महफिल शब का आगाज़ इस खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। मुलायजा फरमाइए।

0: On the hour, every hour.
1: Radio Marches.
2: भोजपुरी तड़का
3: रात के 9:06 हो गल बा। सभी प्यारे साथी लोगन के उषा के सप्रेम नमस्ते स्वीकार करे जा। रात्रि के 11 बजे ले हम अभी ले 11 के रात के 11 बजे ले हम साथ देवब जा और उस समय चल तो हर मन पसंद कार्यक्रम भोजपुरी तड़का के कई दोस्त लोगन त बोलेलन कि 9 बजे त मानला ओ लोग के दिल में भोजपुरी तड़का बज गल। इतना ही प्रोग्राम के शौकीन हवन जा तो चला नंबर वा मिला ल कत सौदे कत हो वै सैक और जी भर के गीतवन के मांग कर जा।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: साठे लोगन टोहरा पता बाते कि सब

सबसे बढ़िया चीज़ का है जीवन में तोहर प्रति सब कोई अच्छा सोचिया, तोहर आधार करिया, ऐसन में इज्जत बड़ी और एकर से बड़ा दौलत तो कोनो नहीं बाती। तोह लोग भी सम्मान देवा जा, तभी तोहरा सम्मान मिली। कृषि के गावल गीत चला जलसा करे के, और तू भी साथ दिया।

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 9:26 हो गल बा भोजपुरी तड़का तय धमाकेदार प्रोग्राम हुआ के नाम है तड़का यानी स्पाइस जोन खाना के एकदम मज़ेदार बना देवेला। वैसे ही प्यारे श्रोतागण बरिया बरिया गीतवन से सचमुच भोजपुरी हमनी के जिंदगी में तड़का भर देवेलन सा तो चला भोजपुरी तड़का कार्यक्रम तुहर नाम और यहाँ पर ही भवेश के लिए अगला गीत जकर जन्मदिन गत सप्ताह बाते और ढेर सारी शुभकामनाएं पापा विशाल और मामा रीना की ओर से और पूरे परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद तो भवेश।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:42 श्रोतागण, अभी तब फुटबॉल की लहर खूबे उठा था। वर्ल्ड कप के समाता सगरो छा गल बा जके देखबा तब फुटबॉल के बारे में अपन पसंदीदा टीम पर बात करत हवन जा। काहे नहीं संगतिया लोग, हर 4 बरिस में ये वर्ल्ड कप जे आयोजन होला। इस साल तक 3 देश में एकर आयोजन होल बा, कनाडा, मेक्सिको और यूएसए में। आज भुला या नहीं फ्रांस वीएस सेनेगाल के मैच देखे के 11 बजे तैयार हो जाइया। और ये गाना अमृत जी खातिर जोन हमने के सुनता मेबग से, एकर खातिर और उनकी प्यारी पत्नी सुजाता के नाम।

छोटागन भोजपुरी भाषा ले ऐसन ऐसन शब्द बा जौन सच्चे तोहर मन के प्रसन्न कर दे वलन सा। जलसा गमत गीत गवाय तरका मजेदार धमाकेदार धमाल आदि आदि शब्द त हमेशा सुने के मिलेला। बात करे में त बढ़िया अच्छा लगेगा अच्छा लगेला। और यहाँ पर ही संतोष जी जो रहिला फ्लक और इ बखत हमने के सुना था एकर खातिर गाना चलावब जा और गाना खास कर मांगत अवन जा अपन बेटे रूनल खातिर और बेटी ऐशा।

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 10:06 हो गल बा श्रोतागण भाई बहन लोगन तोहरा याद बाते जैसे ही जून महीना आरंभ होल त हम सूचित करले रही कि ई महीना के बोली ला सा संगीत मास आर्य समाज त सत्यार्थ प्रकाश मास मनावला 21 जून के योगा दिवस भी हा वही दिन 21 जून के पूरे विश्व में संगीत दिवस बड़ी जोर शोर से मनावल जाला। आप लोग भी याद रखिया ये रविवार के म्यूजिक डे बा। तो चला अगला गीत इंद्राणी जी खातिर जोन रहिला बोबास और ये बखत हमने के सुना था। तो चला नीरज गुप्त माडू के गावल गीत तो हर खातिर।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का में अच्छा अच्छा बात करे के खूबे मन करेला। तो लोग अपन हवा जा कुछ अच्छा बातें के हमने के कर्तव्य है हमेशा अच्छा सोचा, अच्छा बोला और अच्छा सुना जा। रात के 10:26 और अगला गीत सुनानो यान के गावल गीत खासकर देव जी खातिर जो रही ला क्यू पिप और बखत हमने के सुनाता। धन्यवाद।

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो कुआं में डुबकी लगा।

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौखट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या?

श्रोता लोग, जितना संगीत के बारे में बात करब जा उतना ही कम बा। वैसे तो संगीत गीत कला तो एगो पूजा है, भक्ति है, ईश्वर के देन है। ढेर कोई सोचेला कि गीत गाए के आसान है, पर गीत के पीछे जितना मेहनत लगेला एकर वर्णन नहीं सकब सा करे। बड़ा बड़ा गायक कलाकार लोगन बोलेलन कि अभी तक ओ लोग बहुत कुछ बा सीखे के, एगो पूरी जिंदगी बीत जाला सीखते सीखते। संगीत एगो दरिया है, ओकर गहराई नापे के एकदम कठिन बा। 10:45 बज गल बा और यहाँ पर ही अंजू जी हैं जो रहेला रोजिल और ई भक्त हमनी के सुनाता। तो चला एकर खातिर अगला गीत ललिता पुनीत के गावल।

पता चला प्यारे दोस्त लोगन, तो हर सुविधा ले के समय आगे बढ़ते इस सब पल के अपन खुशगवार बनावा, संगीत में ध्यान देवा, भरोसा रखिया तो हर जीवन स्वर्ग जैसन सुंदर हो जाए। तो लोग आसपास के लोगन तोहरा खूबे सारा सराही और तचला संगीत ही जीवन है। शुभ रात्रि।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रेडियो मॉरिशस के प्यारे प्यारे श्रोताओं को नीतूषा का करजोर प्रणाम। इस समय आप सुनहरे पल कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर यादों की दुनिया में आपको आज ले चले हैं। एक ऐसे कलाकार, एक नहीं दो हैं, वे भाई रह चुके हैं और उनका जो संगीत रहा आज भी दिलों को सहला देते हैं, सुकून दिलाते हैं। वो रहे कल्याण जी आनंद जी। जी हाँ, आज क्योंकि उनके अनगिनत गाने हैं, इतने सारे ड्यूएट्स हैं, तो आज जो बेस्ट ड्यूएट्स हैं वो हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। साथ निभाते रहिएगा।

सो कल्याण जी आनंद जी बॉलीवुड के उन महान संगीतकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी मधुर धुनों से हिंदी सिनेमा को अनमोल गीतों का खजाना दिया। जब भी उनके बनाए हुए डुएट सॉन्ग्स की बात होती है तो दिल खुद ब खुद उन सुरीली यादों की दुनिया में खो जाता है जहां प्यार एहसास और संगीत का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।

कल्याण जी आनंद जी के डुएट गाने सिर्फ दो आवाजों का संगम नहीं थे, बल्कि दो दिलों की कहानी बयां करने वाले संगीतमय सफर हुआ करते थे। उन्होंने मोहम्मद रफी, लता जी, किशोर कुमार, आशा भोसले, मुकेश जैसे महान गायकों की आवाजों को अपनी धुनों में इस तरह पिरोया कि हर गीत एक अमर नगमा बन गया।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: यूं ही तुम

फिल्म सफर हो या फिर मुकद्दर का सिकंदर, कल्याण जी आनंद जी ने हर भावना को सुरों में ढलने का हुनर रखा। उनके सबसे लोकप्रिय जुवत्स में वादा कर ले साजना, हाथ की सफाई, बेखुदी में सनम, हसीना मान जाएगी, हम सफर मेरे हम सफर, पूर्णिमा और तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, जैसे गीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा है।

0: वैसे वादा कर ले साजना में लता जी और रफी साहब की आवाजों का जादू ऐसा था कि ये गीत वफादारी और प्रेम का प्रतीक बन गया। वहीं बेखुदी में सनम एक ऐसा रोमांटिक डुएट था जिसमें इश्क की मासूमियत और खुशबू महसूस की जा सकती थी। इन गीतों की खासियत यही थी कि इनमें शोर नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली मिठास थी।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। कल्याण जी आनंद जी की धुनों में भारतीय संगीत की परंपरा और पश्चिमी वाद्य यंत्रों का सुंदर मेल नजर आता था। इसी वजह से उनके ड्यूएट सॉन्ग्स हर उम्र के लोगों को पसंद आते थे और आज भी हैं। उन्होंने कभी गीतों को सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने जज्बातों की जुबान बना दिया।

0: आज भी जब रेडियो पर कल्याण जी आनंद जी के डुएट गीत बजते हैं तो लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो। उनकी धुनों में एक ऐसी रूहानी मिठास है जो दिल को सुकून देती है, पुरानी यादों को ताजा करती है और प्यार के खूबसूरत एहसास को फिर से जिंदा करती है।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

कल्याण जी आनंद जी के डुएट सॉन्ग्स हिंदी फिल्म संगीत की वो अनमोल विरासत है जो समय के साथ और भी कीमती होती जा रही है। उनके सुरों की जादू, गायकों की मधुर आवाज और गीतकारों के खूबसूरत बोल मिलकर ऐसे अमर नगमे पैदा कर गए जो आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल की धड़कन बने हुए हैं। उनके डुएट्स हमें याद दिलाते हैं कि असली संगीत वो ही है जो सालों बाद

0: भी दिल को उतनी ही गहराई से छू सके जितना पहली बार सुनते वक्त छू गया था। प्रणाम, शुभ रात्रि।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

मेरू खाएगा। मिठू मिया मिर्ची खाएगा। बड़ा नटखट है, बहुत सताता है।